ट्यून इन है आप एफएम रेनबो कानपुर के साथ 102.2 एफएम पर और ये प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों, किसी को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश करना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन उससे भी अच्छा है अगर हम सबसे पहले अपने आप को हर सुबह एक मीठी सी स्माइल और थॉट ऑफ द डे के साथ गुड मॉर्निंग विश करें। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का मॉर्निंग मंत्र। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती चोटें हथौड़े की, पत्थर कभी भी भगवान नहीं होता। सही बात है दोस्तों, पूरे जीवन के संघर्षों का, अपनी हर छोटी बड़ी मेहनत का फल हमें मिल जाता है जब हम जिंदगी में अपना एक एक सपना संघर्ष करके पूरा करते चले जाते हैं। तो आज इसी मॉर्निंग मंत्र को बनाइए अपनी प्रेरणा और निकल पड़िए अपने लक्ष्य को पा लेने की राह पर। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस वक्त दोस्तों 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, यानी एफएम रेनबो कानपुर पर।

102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी एक चर्चा एक्स पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को 50% कम करने वाली खबर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है। इसके साथ लोग बॉलीवुड और साउथ के बड़े बड़े सितारों के काफिलों की तुलना भी कर रहे हैं। और मुंबई के एक बड़े इवेंट यूनाइटेड इन ट्रंप 2026 की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर दिखाई दिए एक साथ। और साथियों इस वक्त सचिन तेंदुलकर के पुराने सामाजिक अभियानों और देश हित से जुड़े पोस्ट फिर से शेयर किए जा रहे हैं, खास तौर पर स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े वीडियोज़।

और इसी के साथ राजनीति और देशभक्ति से जुड़े कुछ पोस्ट भी आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। और लोग लिख रहे हैं, देश बदल रहा है, अब नेता भी ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं और जनता भी जिम्मेदारी समझ रही है। तो दोस्तों, ये तो बात थी आज के वायरल पोस्ट की। और अब फिलहाल आपको बता दे, चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, एफएम रेनबो कानपुर के साथ इसे आप सुन रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस प्यारे से गीत के साथ।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे TV एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा TV चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
3: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
4: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
3: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
5: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
4: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat।
3: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
4: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
6: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है

0: 31 जुलाई 2026 सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त FM 102.2 रेनबो कानपुर पर सुन रहे हैं आप दोस्तों। दोस्तों आज है 17 मई तो इस तारीख के साथ क्या क्या इंसिडेंट्स जुड़े हुए हैं आइए जानने के लिए चलते हैं और झांकते हैं अतीत के आईने में। भारतीय दूर संचार क्षेत्र के विकास के संदर्भ में 17 मई बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आज ही विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों 1865 में पहली इंटरनेशनल टेलीग्राफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी जो आगे चलकर बनी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU। और इसी कारण विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है जिसका एम है दुनिया में संचार तकनीक इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज के महत्व को बढ़ावा देना।

और साथियों आज ही विश्व स्तर पर मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसका एम है लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के प्रति सचेत करना। और साथियों इसी के साथ 17 मई साल 1975 को जापान की महिला पर्वतारोही जुनको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी।

0: साथियों, इतिहास में दर्ज 17 मई सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संचार विज्ञान, सफलता, मानवाधिकार और स्वास्थ्य की भी कई कहानियों का संगम है। तो दोस्तों, अब चलिए एंजॉय करते हैं इस नेक्स्ट सॉन्ग को, मॉर्निंग मूड को हैप्पी करता हुआ ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी युवा। सुनते रहिए एफएम रेनबो कानपुर, जहां से इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।
1: हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा

गुड मॉर्निंग कानपुर। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि HBTU यानी हार्डकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आगामी शैक्षणिक सत्र से एक साथ कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने PhD डिग्री के प्रारूप में संशोधन करते हुए अब विभाग की जगह शोध विषय का उल्लेख करने का फैसला लिया है। यानी अब आपको विभाग की जगह बताना होगा कि आप शोध में किस विषय को आपने लिया है। साथ ही BTech AI, ML और MSc फॉरेंसिक बायो एनालिटिक्स जैसे नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही मिड सेमेस्टर परीक्षाओं में छात्रों को विशेष परिस्थितियों में राहत देने का भी निर्णय लिया गया है। साथियों, और साथ ही आपको बताते चले कि केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी CBSE के तहत आने वाले स्कूलों में अब 9वीं-10वीं कक्षा में 3 भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य होगा। 3 भाषाओं में कम से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और साथियों, ये खबर भी कम नहीं है कि वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका को देखते हुए प्रदेश में बड़े संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही कार्यालयों के समय को अलग अलग शिफ्टों में विभाजित करने और सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार इसी तरह अलर्ट मोड में आ गई है।

समय को अलग अलग शिफ्टों में विभाजित करने और सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार इसी तरह अलर्ट मोड में आ गई है।

और साथ ही आपको बताते चले कि माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना में आवेदन शुरू हो चुके हैं। सत्र 2026-27 के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे इस योजना में और योजना के पात्र विद्यार्थियों को 3600 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 मई 2026। FM 102.2 रेनबो कानपुर के संग इस वक्त जुड़े हुए हैं आप और सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे वंदना।

एफएम रेनबो के प्यारे प्यारे दोस्तों, सुबह के 7:50 और 52 सेकंड का हुआ है समय। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं वंदना के संग। देश दुनिया की अगर बात करें तो बीते शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीदरलैंड्स की हेग सिटी में प्रवासी समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के 4 बड़े लक्ष्यों की बात करी। उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करके लोगों का ध्यान खींचा। UPI ट्रांजैक्शंस की बात करी, भारत के ओलंपिक होस्ट करने की बात करी और भारत के ग्रोथ इंजन बनने की भी बात करी। और ये बात करते हुए नीदरलैंड्स की जनता का प्रवासी समुदाय के साथ खुशनुमा रिश्ते बनाए रखने के लिए आभार भी व्यक्त किया। साथ ही आपको बता दें कि इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि हम पेट्रोल डीजल की खपत कम या फिर संयम से करें, कुछ समय गोल्ड परचेजिंग बंद करें और विदेश यात्रा भी अधिक जरूरी ना हो तो ना करें। साथ ही पीएम मोदी ने विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबर को भी खारिज किया। तो साथियों, इस सेगमेंट में थी ये हम सबके लिए जरूरी बात और अब जरूरी है कि हम आगे बढ़ें एक ब्यूटीफुल से सॉन्ग के साथ।

और दोस्तों अब चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। तो साथियों आज भीषण गर्मी रहने की संभावना है। मौसम विभाग और विभिन्न वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार दिन काफ़ी गर्म और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान आज के दिन का रहेगा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका है। और तेज़ धूप और लू चलने के भी आसार हैं। गर्म हवाएं काफ़ी परेशान करेंगी और इसी वजह से हम भी आपसे यही सलाह देते हैं कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप से बचिए, पानी खूब पीते रहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए और बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखिए। फिलहाल वक्त हो रहा है आपको सुनवा दें इस प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग और इस सॉन्ग के बाद मैं आपसे करूंगी टाटा बाय बाय, लेकिन पहले सुनते हैं ये गाना।

सो डियर लिसनर्स, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो दीजिए इजाजत वंदना को, मिलते हैं आपसे 8:30 पर सुरों की पुरानी महफिल में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी

0: उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम

0: से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच

0: विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
2: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नेदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
1: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
2: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
1: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European

FM 102.2 रेनबो कानपुर के साथ जुड़े हुए हैं आप दोस्तों। सुबह के 8:30 का समय हो चुका है और ये वक्त है कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल का। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में।

सुरों की पुरानी महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 102.2 रेनबो कानपुर के संग। दोस्तों, आंधी फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, आरडी बर्मन का गीत और संगीत था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना।

आए दिन बहार के इस फिल्म से ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज थी आशा भोसले की। और ये गीत है फिल्म बेमिसाल से।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट एफएम 102.2 रेनबो कानपुर। मैं हूं वंदना, लेकर बिल्कुल तैयार वो प्रोग्राम जिसका नाम है रसबहार। आज के रसबहार कार्यक्रम में बातें जीवन की किताब के सबसे स्याह पन्ने की, जो पल पल में उथल पुथल मचाकर करीने से सजी सोच समझ को भी बिखेर कर रख देता है और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ें गहरी जमा लेता है हमारी जिंदगी पर। खुशियों को कम करके धीरे धीरे हमें उदासी की दहलीज पर ला खड़ा करता है। लेकिन दोस्तों, घबराने का नहीं, ये विषय है जिस पर गंभीरता से विचार करना है हमें। दोस्तों आज बात करेंगे हाइपरटेंशन की, जिस पर आज संपूर्ण विश्व में विचार हो रहा है। लेकिन भाई, हम इस विषय पर बात करेंगे थोड़ा अलग अंदाज में, हंसते गाते।
1: अरे

दोस्तों, ज़िंदगी की चाल भी मस्तानी हवा के जैसी ही होनी चाहिए, गाती बलखाती चलती चले जाने वाली। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने दिल और दिमाग में न जाने कितना तनाव लिए घूमते हैं, और जब हम अपने दिमाग को अत्यधिक सोचने के दबाव में उलझा देते हैं, तब हमारा शरीर ये रिएक्शन देता है कि हमारी धमनियों में खून का दबाव नॉर्मल से कहीं अधिक होने लगता है। दिल को अपनी सामान्य गति से तेज दौड़ना पड़ता है और वो वक्त से पहले ही थकने लगता है। और सदियों इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन, और इसके लंबे समय तक यूं ही बने रहने से हमें घेरते हैं हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डिजीजेज और आंखों की समस्याएं। और ये सब कुछ शुरू होता है जरूरत से ज्यादा सोचने से। तो भाई, हम उलझनों की जगह उसका हल क्यों ना तलाशें? परेशान

करने वाली इस सोच के बदले हम क्यों ना ये सोचें कि आखिर हमारे सोचने से जब कुछ होने वाला नहीं तो हम क्यों ना सब कुछ वक्त पर और ईश्वर पर छोड़ दें और दिल को अपनी नॉर्मल स्पीड से धड़कने दें।

साथियों, दुनिया अब पैदल नहीं चल रही बल्कि हम बुलेट ट्रेन पर सवार हैं। हर पल हर क्षण शरीर तो फिर भी आराम पा ही लेता है, मगर दिमाग की उलझने कभी नहीं सोती। और ऐसे में नींद भी आधी अधूरी लेते हैं हम। खाने पीने का, आराम करने का, घर परिवार के साथ खुश रहने का, ये सारा समय हमने दे दिया है अपने कामों को। इसी जल्दी या हड़बड़ में जब जो मिला सो खा लिया, थोड़ा थोड़ा सो लिए, होता है ना साथियों ऐसा आपके भी साथ? लेकिन ये नॉर्मल बन चुका रवैया जब लंबे समय से साथ होता है हमारे, तब बढ़ने लगता है कभी बीपी तो कभी टेंशन।

लेकिन घबराने का नहीं, गहरे चिंतन का विषय है ये दोस्तों। हमारी थोड़ी सी सावधानी सब कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। और मैं तो कहूंगी कि सबसे पहली सावधानी ये करनी होगी हमें कि हमारी मुस्कान कोई चुराने ना पाए।

जी हाँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हमारे चेहरे का असली सिंगार है दोस्तों। लेकिन हम ये बात याद कहाँ रखते हैं? हम तो चाहतों, इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाते निभाते माथे पर लगातार सिलवटे बनाए रखते हैं। हमें फुर्सत कहाँ है कि एक नियमित टाइम पीरियड पर सब काम की चिंताओं को एक अलमारी में बंद करके थोड़ा सा सैर करने निकल लें। हम तो समझते हैं कि सब कुछ हम ही करने वाले हैं, जबकि दोस्तों सच ये है कि होता वो है जो ईश्वर चाहते हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस बहार, जिसमें आज बात हो रही है तनाव की। वही तनाव जो जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी को धीरे धीरे यूं खत्म कर देता है कि हमें कभी कभी ये भी याद नहीं आता कि हम पिछली बार खुलकर कब हंसे थे। दोस्तों हाइपरटेंशन दिल दिमाग को और शरीर को बीमार बनाती है। आज के दिन हम इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं, बिना एक भी पल गंवाए।

आए अपना चेकअप कराते रहिए दोस्तों, और ब्लड प्रेशर ना बढ़े इसके भी उपाय ढूंढिए। जीवन में नियमों का पालन करके हम हर बीमारी से हमेशा हमेशा दूर रह सकते हैं। तभी तो कहती हूँ मैं कि बीमारी से दूर रहना कोई चिंता की बात नहीं, घबराने का नहीं, ये गहन चिंतन करने का विषय है। खुशियों को किसी तनाव की नज़र मत लगने दीजिएगा।

दोस्तों, सेहत से जुड़ी बातों पर अधूरा ज्ञान बेहद घातक साबित हो सकता है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, क्योंकि ये किसी घात लगाकर सटीक वार करने वाले दुश्मन की तरह होता है। चिकित्सकीय मापों में हमारा सामान्य रक्तचाप 120 और 80 होता है, और इससे अधिक होने की हालत में हमें चाहिए कि हम लगातार इस पर नजर बनाए रखें, ताकि यदि ये बढ़े रक्तचाप यानी बीपी की स्थिति लगातार यूं ही रहने लगी हो, तब आपको एक्शन में आ जाना चाहिए। दरअसल बढ़ते बीपी के जो कारण हैं, वो हमारी जीवनचर्या में घुल मिल से गए हैं, जैसे अनियमित जीवन शैली, नमक या फैट का अधिक इंटेक करना, काम का लगातार तनाव लिए रहना, और मोटापा, जो कि अधिकतर बाहर का खाना खाने से आता है, और अनुवांशिकी यानी कुछ लोगों को ये अपनी फैमिली से भी मिलता है। तो हमारा खान पान हेल्दी हो, हम रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, और सबसे अच्छी दवा है खुशी। खुश रहिए, और इसका तो कोई कारण हो या ना हो, खुश तो रहना ही है।

तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक दौड़े।

लो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

दोस्तों, हर चिंता की दवा है खुश रहना। हम जब खुश रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति एक अलग ही पॉजिटिव स्टेट में होती है, जो हमें तनाव से दूर रखती है। तनाव से दूर होकर हम हाई ब्लड प्रेशर से भी दूर हो जाते हैं। और व्यवहारिक जीवन में सुबह से शाम तक ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिन्हें देख सुनकर हम गुस्सा करते हैं या तनाव में आते हैं, लेकिन मेडिटेशन करके, ध्यान लगाकर हम खुद को शांत रखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। तो ज़िंदगी के हर पल की कीमत को समझते हुए हमें हर पल को खुशियों से जीना होगा।

दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा, मकान, हजारों भौतिक वस्तुएं वगैरह वगैरह होंगी तो तभी वो खुश रहेंगे। तो आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर आदमी ही सबसे खुश होता। लेकिन किसी बच्चे को देखिए, वो तो अमीर गरीब नहीं जानता, लेकिन सहजता में ही खुश रहता है। उसका टूटा खिलौना भी कभी कभी एक कीमती खिलौने से अच्छा होता है उसके लिए। तो चलते चलते यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ज़िंदगी में हमेशा वही होगा जो पहले से तय किया है हमारे राम जी ने। इसलिए आप केवल धन्यवाद कीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेंशन को दूर भगाकर खुश रहिए भरपूर। और फिलहाल इस कार्यक्रम रसबहार से दीजिए इजाज़त। आप सुनिए ये कार्यक्रम का आखिरी गाना।

दोस्तों आप इस वक्त ट्यून इन हैं FM 102.2 रेनबो कानपुर पर। बस कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हो रहे हैं कार्यक्रम विविधा। विविधा में आज बारी है पॉप टाइम की। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

दोस्तों आप इस वक्त ट्यून इन है FM 102.2 रेनबो कानपुर पर। बस कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हो रहे हैं कार्यक्रम विविधा। विविधा में आज बारी है पॉप टाइम की। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्ते कानपुर, मैं हूँ मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

दोस्तों आप ट्यून इन हैं इस वक्त 102.2 FM रेनबो कानपुर के संग। 9:45 हो चुके हैं और विविधा का वक्त है ये। विविधा में आज बारी है पॉप टाइम की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में बेली पार क्षेत्र स्थित ताल नादौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान को और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालिक जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें।

0: लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
0: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें। वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
5: श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। प्रसिद्ध नेत्रांगना, पूर्व कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर कुमकुम धर से सुमोना एस पांडे जी की बातचीत।
6: श्रोताओं, आज है इस माह का तीसरा रविवार। रविवार का दिन हमेशा होता है खास, और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो एक महान कलाकार है जो जितनी महान है उतनी धरती से जुड़ी हुई है, और इनका व्यक्तित्व बहुत ही निर्मल, बहुत ही सौम्य है, और जो भी इनसे मिलता है अभिभूत हुए बगैर नहीं रह सकता। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर कुमकुम धर जी, और जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रबुद्ध नृत्यांगना है। कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज के मेहमान में।
7: नमस्कार।
6: कुमकुम जी, आपके बारे में लखनऊ वासियों को क्या ही बताऊं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कुछ पक्ष आपके ऐसे हैं जो अनछुए हैं अभी भी, जिनके बारे में आप ही से सुनना हम पसंद करेंगे, हमारे श्रोता भी पसंद करेंगे। तो सबसे पहला यही सवाल कि आप नागपुर से लखनऊ कैसे आए?
7: नागपुर में सिर्फ मेरा जन्म हुआ था
6: जी,
7: और उसके बाद जो है मेरे पिता प्रशासनिक सेवा में आए थे, तो फिर वो उनको यूपी काडर मिला था, तो हम लोग सबकी जो पढ़ाई लिखाई, तालीम, जो अपना करियर है, वो सब उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उसमें से भी लखनऊ में हुआ है। मैं अपने आप को बिल्कुल लखनऊ का ही मानती हूँ हर तरह से। इस शहर ने मुझे सीखते हुए, फिर परफॉर्म करते हुए, फिर सिखाते हुए, कोरियोग्राफ करते हुए देखा है, और सच बताऊं इतना प्यार दिया है, क्या बताऊं, मैं बिल्कुल कभी उड़न नहीं हो सकती है। अक्सर मुझे मौका मिला जैसे बम्बई जाने का, रहने का, जैसे मेरे हस्बैंड थे दिल्ली में थे, बम्बई में थे, और ये हुआ कि भाई तुम यहाँ क्यों पढ़ी हो, यहाँ से जाओ जब तुम्हें मौका है, रहने की जगह है, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना। मैं जाती थी आती थी, पर मैं रही कभी नहीं कहीं। हाँ। मैं हमेशा यहीं रही।
6: जो आपका पड़ाव शुरू हुआ कला के क्षेत्र में
7: जी,
6: इसके बारे में कुछ बताएं।
7: मैं किसी संगीतज्ञ परिवार से नहीं हूँ
6: जी जी।
7: हाँ, तो जहाँ पढ़ाई लिखाई करना भी बहुत जरूरी था, मेरे नाना कश्मीर के एक बहुत सुविख्यात कवि थे, और मेरी माँ कश्मीरी फोक थोड़ा गाती थी, बस इतना था
6: उनका,
7: प्रभाधर उनका नाम, अब वो नहीं है, तो इतना ही संगीत से जुड़ाव था, लेकिन मुझे नृत्य करने का बहुत शौक था, और तब मुझे
6: इनबॉर्न,
7: जैसे घरों में नहीं बच्चे नाचते हैं शादी ब्याह पे या किसी अवसर पे, तो मुझे मेरी बुआ और मेरे बहन एक छोटा सा लहंगा पहना के या कुछ ऐसा करके मुझे कोशिश करती थी कि मैं उसमें मतलब नृत्य करूं, तो तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो कौन सा नृत्य है, और जैसे बच्चे घर में करते हैं वैसे मैं करती थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब लखनऊ में मेरे पिता पोस्टेड थे, तो यहाँ पे कथक केंद्र की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार से बड़े आग्रह और अनुरोध के साथ मेरे गुरु आदरणीय पंडित लच्छू महाराज जी को बंबई से बुलाया गया। वो इसलिए कहा गया कि साहब ये लखनऊ घराना है, पर लखनऊ के आचार्य यहाँ कोई नहीं है। तालीम हो रही थी, मतलब शिक्षा होती थी, लेकिन

0: उस घराने के आचार्य कोई नहीं है, तो हमारे गुरुजी को बुलाया गया वहां से। 1972 में कथक केंद्र की स्थापना की गई और मेरे गुरु उसके पहले निदेशक और गुरु नियुक्त हुए। जब हमने सुना और उस अवसर पे कार्यक्रम भी हुआ कि भाई शुरू होने जा रहा है कथक केंद्र लखनऊ, तो और उसमें इतने बड़े गुरु सिखाने आ रहे हैं, तो फिर हमने एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पे रविंद्रालय में, उसमें बिरजू महाराज जी ने नृत्य किया और भी हमारे गुरु जी ने भाव बताए, बड़ा अच्छा लगा देख के, हम छोटे थे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं हमें जाके सीखना चाहिए, तो मैं और मेरी एक स्कूल की फ्रेंड हम दोनों चले गए जहाँ आज भातखंडे है वहीं पे संगीत नाटक अकादमी होती थी और उसमें 2-3 कमरों में कथक केंद्र चलता था।
1: अच्छा।
0: जिस दिन मैं गई हूँ, मेरे गुरुजी मुझे अभी भी याद है, उसकी बड़ी बड़ी आर्चेज याद है, गुरुजी सीढ़ियों के 5-6 सीढ़ियां उसके ऊपर खड़े थे तो और नीचे देख रहे थे। वो बहुत समय के पाबंद थे और वो समय से बहुत पहले आ जाते थे हमेशा, तो खड़े थे बाहर। हमने कहा सब हमको सीखना है, हम नहीं पहचानते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि तुमको कुछ आता है? तुमने कहा नहीं आता तो नहीं गुरुजी। अच्छा ठीक है सिखाएंगे। तो उस दिन के बाद से जो है मेरे जीवन की बिल्कुल दिशा ही बदल गई और मैंने उनसे तालीम लेना शुरू कर दिया। जब उनको बुलाया गया तो यही निश्चित किया गया था कि वो गुरु शिष्य परंपरा में ही सिखाएंगे, कोई पाठ्यक्रम कोई एग्जाम नहीं होगा, जो क्योंकि वो गुरु उनकी इच्छा जो है वो सिखाएंगे, तो उन्होंने सिखाना हमको शुरू कर दिया था। उसके बाद भी मेरी पढ़ाई तो जारी रही क्योंकि मेरे घर से ये था कि भाई तुम नृत्य करना चाहती तो करो लेकिन पढ़ाई तो पूरी करनी है।
1: बहुत अच्छी बात है कि उस जमाने में भी आपको इसमें प्रोत्साहन मिला अपने परिवार से
0: बहुत ज्यादा। मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे अगर जो कुछ भी, अगर मैं किसी के प्रति ऊर्ण नहीं हो सकती हूँ, मेरे पिता एक बड़े अफसर थे लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं लेकिन एक पिता के रूप में मेरी बहुत मार्गदर्शन किया और मुझे बहुत आजादी दी कि मैं नृत्य सीख सकूं। आपको पता है मैं जितना जुड़ी हुई इस आकाशवाणी से वो भी लगभग उतने ही समय से है, उतना ही समय हो गया मुझे यहाँ पे आपके यहाँ नाटक में काम करते हुए, सुगम संगीत में काम करते हुए, डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे बोलते हुए और समाचार भी पढ़े हैं मैंने यहाँ पे, तो आकाशवाणी मेरे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हमारी तालीम शुरू हो गई अपने गुरु से सीखते सीखते, तो वो गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखना था, तो उनकी जो इच्छा होती थी जिस शिष्य में वो जो सिखाते सबको सब कुछ थे लेकिन जिस शिष्य में कोई विशेष गुणों, जैसे किसी का पैर बहुत अच्छा है, किसी का अभिनय बहुत अच्छा है, तो मेरे पे उन्होंने सबके साथ अभिनय पे बहुत काम किया क्योंकि उनका खुद का जो विशेषता थी वो लास्ट से अंग प्रधान नृत्य और अभिनय प्रधान नृत्य था, तो फिर वैसे ही मैंने उनसे सीखना शुरू किया लगातार।
1: तो कुमकुम जी आपसे हम आगे बात करते रहेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्यारा सा गीत सुनते हैं, कोई आपकी पसंद का हो तो।
0: हाँ बिल्कुल, गाने तो बहुत सारे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक गाना है इशारों इशारों में दिल लेने वाले।
1: क्या बात है, तो कश्मीर की कली का ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।

0: आज हमारा तीसरा रविवार होता है, इसमें आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमकुम धर जी, जो कि एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है और अपने विषय में बता रही हैं, साझा कर रही हैं, जो कि वाकई में बहुत ही लोमहर्षक है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपके जो अनुभव है वो आप जब हमसे बता रही हैं, तो लखनऊ वालों को भी अच्छा ही लग रहा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आप अपने सफर के बारे में बता
1: हाँ,
0: रहे थे।
1: तो फिर ऐसा हुआ कि हमने तालीम लेना शुरू किया और उनके ही निर्देशन में छोटी छोटी प्रस्तुतियाँ, एकल प्रस्तुतियाँ, समूह प्रस्तुतियाँ, उनकी नृत्य नाटिकाओं में काम किया। उन्होंने बहुत अच्छी नृत्य नाटिकाएँ यहाँ पे लखनऊ में भी प्रोड्यूस की थी, गौतम बुद्ध, चंद्रावली और भी सारी चीज़ें उन्होंने की, तो उनके निर्देशन में काम करते रहे। लेकिन 1978 में हमने उनको खो दिया, उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद एकदम ऐसा लगा कि अब क्या होगा,
0: अब क्या
1: अब
0: करें,
1: क्या करें, अब कौन बताएगा और किससे पूछ के काम करें। बहुत समय लगा अपने आप को इकट्ठा करने में, गैदर करने में। फिर ये लगा कि नहीं, अगर हमें मान लो कोई चीज करनी है, अगर हमारे गुरु होते तो वो कैसे सोचते। हालांकि उस वक्त बहुत छोटे थे कुछ नया और वो करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी गुरु शिष्य परंपरा के विषय में। उसमें ये होता है कि आप हमेशा अपने गुरु के साथ साथ ही रहते थे, त्योहारों में दिन भर वहीं पर रहते थे, कथक में शाम को उनके घर चले। मैं तो उनके घर में रही भी हूँ, जब मेरे पिता कमिश्नर होकर पौड़ी चले गए तो फिर ये अब तो रुक जाएगा सीखना, तो मेरे गुरु ने कहा कि नहीं, मैं इसको अपने घर में रखूंगा।
0: क्या बात है।
1: तो मैं अपने गुरु के घर में रह के सीख, तो उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ, उस गुरु शिष्य परंपरा की ये एक विशेषता है कि उसमें आप केवल नृत्य करना या संगीत या जो भी आप वही नहीं सीखते हैं, आप और भी बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब जीवन जीने का ढंग, आप कैसे दर्शकों से संवाद करेंगे वो सब, और कैसे आप अपने दर्शकों को एसेस करेंगे कि आप अगर मंच पे हैं तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए। और बहुत कुछ हमने जब वो नहीं थे तो ये रियलाइज किया कि और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अप्रत्यक्ष आदमी के अंदर आ जाती हैं, जब आप करने लगते हैं तो वो प्रकट होने लगती
0: बिल्कुल
1: है।
0: सब कॉन्शियस माइंड में कहीं रहता है।
1: बिल्कुल। लेकिन मेरी सहायता भी बहुत लोगों ने कि मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस जगह के लखनऊ के जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे जो लोग नाटक से जुड़े थे, जो लोग फोटोग्राफी से जुड़े थे, जो लोग मतलब संगीत से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मेरी मदद बहुत की, क्योंकि उस वक्त मैं सीख रही थी, पहली पहली बार कहाँ करने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत लोगों ने इसमें मेरी बहुत सहायता की है। इसीलिए मैंने उनसे बहुत सीखा है, उनसे बहुत समझा है।

0: आकाशवाणी के भी यहाँ जो आपके निर्देशक होते थे उनसे भी मैंने बहुत सीखा है। तो धीरे धीरे करके मैंने फिर कोशिश की खुद ही कोई आप स्क्रिप्ट ले, मतलब जो अपना टेक्निकल पक्ष है वो तो है ही है, लेकिन जो अगर कुछ नया करना है तो कैसे उसकी स्क्रिप्ट ढूंढी जाए, कैसे उसको कंपोज कराया जाए, फिर उसको कैसे कोरियोग्राफ कराया जाए, ये धीरे धीरे धीरे करके वर्षों में सीखा, कार्यक्रम करने लगी।
1: नृत्य आपकी पहली पसंद और आखिरी पसंद जरूर है, लेकिन इसके अलावा जैसे आप नाटक विधा में हैं, आप वॉइस ओवर करती हैं, आप बहुत सारे आप सुगम संगीत वगैरह, मतलब कोई ऐसा शायद क्षेत्र छूटा नहीं है कला का जिसमें आप नहीं है, तो इन सब के लिए आप समय कैसे निकालते?
0: तो देखिए इसमें क्या बात है, जैसे हमारी जो भारतीय अवधारणा है उसमें नाटक एक टर्म है और ये माना जाता है कि उस नाटक के सभी तत्व नृत्य भी उसी में, संगीत भी उसी, लेकिन मैंने भी ये रियलाइज किया कि सब एक दूसरे की परस्पर सहयोगी विधाएं हैं। जैसे मतलब मैं सोच ही नहीं सकती अगर आपको स्वर का थोड़ा समझ नहीं है तो आप कैसे नाचेंगे, अगर आपको लय की समझ नहीं है तो आप कैसे नाचेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है, अगर आपको संवाद बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो आप कैसे इंटरैक्ट करेंगे दर्शकों से, कैसे बात करेंगे, तो ये सब चीजों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और इसका फायदा भी मिलता है। जैसे मैंने रंगमंच भी अच्छा सीरियस रंगमंच यहाँ पे किया, बहुत प्रसिद्ध संस्था है दर्पण जिसकी तो अब हीरक जयंती भी हो चुकी है, तो उसमें भी मैंने काम किया अच्छे निर्देशकों के साथ। अच्छा एक बार और बताऊं आपको बहुत मजेदार, मेरे अपने गुरुजी जो थे उनको नाटक बहुत पसंद था, वो आगा हश्र कश्मीरी के शागिर थे, उन्हें पूरे पूरे नाटक जबानी याद थे, तो कभी कभी तो मुझ पर गुस्सा करते थे ये क्या है नाटक रिहर्सल, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गुस्सा भी, लेकिन मेरे सारे नाटक देखने आते थे और मुझे नाटक करने की अनुमति भी देते थे
1: और आशीर्वाद आपको
0: बिल्कुल देखने आते, लगातार देखने आते थे क्योंकि उनको खुद को शौक था, उन्होंने फैयाज खान से गाना सीखा था, मतलब ये लोग कंप्लीट आर्टिस्ट होते थे। लेकिन वो क्या हुआ कि नाटक का आपको ब्लॉकिंग कैसे होती, आना जाना, उसने मदद की, गायन के स्वरों ने मदद की, नृत्य की अपनी जो हमने सीखा अभिनय भंगिमाएं जो भी उसने मदद की, तो कुल मिला के ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा, ये तो मुझे पक्का विश्वास है।
1: और एक पूरा व्यक्तित्व निखर कर आता है जब इतनी सारी विधाओं में आप पारंगत होते हैं, और कुमकुम जी आपके बारे में हम जितना कहें वो कमी है, और आप इस तरह से हमारे श्रोताओं से जुड़ी हुई इस वक्त, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा होगा आपके जो,
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो हम जानना चाहेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, आपको यश भारती का सम्मान मिला, संगीत नाटक अकादमी जो सेंट्रल केंद्रीय सम्मान भी आपको मिला, और जब कलाकार को सम्मान मिलता है, कलाकार तो उनसे बहुत ऊपर होता है वैसे, लेकिन जो सम्मान मिलता है तो जो उनको एक खुशी मिलती है,
0: हाँ
1: वो तो जरूर है,
0: बिल्कुल है, वो जरूर है। मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 94 में, बहुत छोटी थी मैं तब, मिल गया था, उसके बाद फिर यश भारती 2015 में, फिर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी 2020 का मुझे 23 में मिला था वो आके। ये बिल्कुल सही बात है, अगर कोई इस बात को रिकग्नाइज करता है कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हैं, उससे बड़ी तसल्ली होती है। और एक चीज और से बड़ी तसल्ली होती है, भाई आदमी परफॉर्म करता है मंच पे तो वो दाद के लिए ही करता है, सबसे ज्यादा प्रेम
1: या बजती है तभी एक कलाकार को उत्साह मिलता है और अच्छा लगता है,
0: अच्छा लगता है बहुत, मतलब बहुत फर्क पड़ता है, सब कुछ उन दर्शकों के लिए यही है, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई साल तालीम भी दी है, मैंने पहले से ही गुरु शिष्य परंपरा में मैं सिखाती थी, फिर मैंने भातखंडे में जब एक प्रोफेसर की जॉब निकली तो मैंने प्रोफेसर मैं कई साल वहां सिखाया, तो मैंने वहां पे एमए की कक्षाएं कई साल ली, और मैं उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थी, डीन भी थी, और कुछ समय के लिए मैं कुलपति भी रही वहां पे।
1: तो आप उसमें कुलपति रही हैं, कुछ उस सफर के बारे में भी हमारे श्रोताओं के साथ थोड़ा अपने अनुभव साझा कीजिए, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: हाँ मेरी पसंद का गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के बाद हम पुनः जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुमकुम धर जी से, जो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आप बहुत ही प्रबुद्ध और प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं और आप गुरु शिष्य की परंपरा को भी मानती हैं और आपकी बहुत सारी शिष्य शिष्याएं हैं जिनको आप लगातार सिखा रही है। और भातखंडे की हम बात कर रहे थे, भातखंडे विश्वविद्यालय में आप कुलपति रही हैं, अभी प्रोफेसर भी हैं, तो आप अपने उस सफर के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भातखंडे पहले तो वो महाविद्यालय था, फिर वो सम विश्वविद्यालय था, फिर वो संस्कृति पूरा एक स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उसमें क्या बात है, जब उसकी प्रतिष्ठा बहुत पहले से बहुत है, जब मैं भातखंडे से जुड़ी भी नहीं थी तब भी मुझे लगता था अगर आप किसी से भी बात करें तो लोग कहते थे कहीं देश में विदेश में, अरे हाँ हमारी मौसी ने वहां सीखा है, अरे हाँ हमारा भतीजा वहां तबला सीखा, मतलब पूरी प्रसिद्धि और लोग उससे जुड़े हुए हैं। जो इस कम से कम इस शहर या इस प्रदेश के लोग हैं उनके किसी न किसी मित्र संबंधी

0: कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा ही है। इस तरह से इस जगह की प्रतिष्ठा बहुत थी। फिर इसमें बड़े बड़े गुरुओं ने सिखाया है। और एक मजेदार बात यह है कि मैंने भातखंडे से तालीम नहीं ली है। अच्छा। मैं वहां सीखी नहीं हूँ, लेकिन उसी परिसर में मैं पिछले 52-53 साल से जा रही हूँ। कैसे? मैंने आपको बताया भातखंडे जो जगह है उसी परिसर में संगीत नाटक अकादमी का, उसी बगल में हम अपने गुरुजी से सीखते थे, तो एक इंटरेक्शन भी रहता था। हमारे गुरुजी से मिलने वहाँ के लोग आते थे, आचार्य आते थे, प्रिंसिपल आते थे, जो भी सभी आते थे, और हमारे गुरु भी कभी वहां जाते थे। मैंने उस समय भी कभी वो हम गुरुजी से मांग के ले गए कि हमें एक नृत्य नाटिका करनी है तो इसको क्या हम ले ले। हमारे देखिए हमारे गुरु जो जिस परंपरा में हमने सीखा है वो बहुत स्ट्रिक्ट परंपरा होती थी, ऐसी इजाजतें नहीं मिलती थी, और हम बहुत डरते थे कि जब तक उनकी बिल्कुल अनुमति 100% ना हो, और उन्हें जब तक ये ना लगता हो कि हाँ ये सही जगह है। कई दफा तो उन्होंने कहा कि हाँ करना तो ठीक है लेकिन मेरे कमरे में आके रिहर्सल करो। तो ये भी था कि उनकी ध्यान उन निगरानी के वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इस भावना से। तो तब से भातखंडे से जुड़ाव रहा। फिर जब भातखंडे में मुझे प्रोफेसर के रूप में काम करने का मौका मिला, और हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी मैंने भी बहुत सीखा, क्योंकि मैंने तो सीखा था गुरु शिष्य परंपरा में और मैं परफॉर्मर थी पूरी जिंदगी। यहाँ आके मैंने संस्थागत शिक्षण के बारे में सीखा कि भाई इंस्टीट्यूशंस में कैसे पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी की और क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, कैसे परीक्षाएं होती हैं, कैसे सिलेबस बनते हैं, कैसे लोगों को मार्किंग की जाती है, सब कुछ कैसे कंडक्ट, मैंने बहुत सीखा।
1: जिम्मेदारियां
0: बिल्कुल, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी नीचे से लेकर ऊपर तक निभा ली, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो उस परिसर में फिर पूरे मैं उसी में मैं काम करने लगी। तो मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छी संस्था है, और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहा था और उसे बने रहना चाहिए, ऐसी मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं उसके लिए। और बहुत जुड़ाव उससे आज भी, मैं उनसे अकादमिक कार्यों के लिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए और कार्यक्रमों के संबंध में कई समितियों में सदस्य भी हूँ, जाती रहती, तो मेरा जुड़ाव लगातार वहां पे है। बिल्कुल,
1: वाकई में बहुत ही अच्छा सफर हम आपके साथ तय कर रहे हैं। आपके जो कला क्षेत्र में और आपके जीवन के बारे में लोगों को पता लग रहा है, और आपके घराने के बारे में कुछ बताएंगे कि
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ, मैंने एक बहुत बड़े आचार्य जिनसे सीखा वो लखनऊ घराने के बिल्कुल प्रतिनिधि आचार्य हैं। और इस घराने की जो खास बात है, वैसे तो सभी जो मशहूर बाकी घराने जयपुर, बनारस, रायगढ़, ये भी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन लखनऊ घराने की विशेषता है तो यहाँ की फिजा में एक बात है, नजाकत है, नफासत है, इत्र फुलेल है, जरदोजी है, चिकन है, अदब है, बोलचाल है, वो सारी चीजें इस डांस फॉर्म में इस घराने की विशेषताएं भी बन जाती हैं। तो बड़ा कोमल अंग संचालन है, बड़ा बारीक अभिनय है, जो दर्शक भी होते थे पहले, क्योंकि महफिलों का नृत्य बहुत समय के लिए रहा है, तो बड़ी क्लोज वो होती थी इंटीमेसी दर्शकों के साथ, तो वो भी रसज्ञ होते थे, पढ़े लिखे समझदार, जैसे अगर आप कुछ करें तो उन तक पहुंचता था। तो इस घराने की विशेषताएं यही बातें, यहाँ की गते बहुत खूबसूरत हैं, उसपे से भी मेरे गुरुजी का लास्य अंग, कोमल अंग, स्त्रियोचित अंग, और उसपे से अभिनय की जो तो बिल्कुल पराकाष्ठ था। तो ये जो इस घराने की खास बात है, बाकी सब कुछ भी है इसमें, तैयारी, लयकारी, सब तरह की चीजें हैं, लेकिन इसका अभिनय, इसका लास्य अंग, इसका सुंदर ढंग से अंग संचालन बड़ा महत्वपूर्ण है।
1: वाकई में आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कुमकुम जी, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस 50 वर्ष से ज्यादा के आपके जो कला का क्षेत्र आपका रहा है, तो आपका जो सफर रहा है, इस दौरान आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, कोई ऐसी घटना आपको याद हो जो आपको अभी तक याद हो, चाहे बचपन की हो या बाद की हो?
0: यानी ऐसी कोई विशिष्ट घटना तो एकदम से याद नहीं आएगी, पर हाँ ये बात सही है कि इस सफर में उतार चढ़ाव आए हैं। बिल्कुल, कभी कभी लगता था कि भाई अब ये कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसा भी समय आया है जब लगा है कि नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा कि मैं नृत्य छोड़ सकती हूँ। हाँ, वो तो नहीं छोड़ पाई, लेकिन वो कभी कभी करियर के मामले में थोड़ा सा एक ऊपर नीचे होना होता है। उसमें क्या कारण है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, और नृत्य अपने आप में एक टीम वर्क है। आपको संगतकर्ता चाहिए, आपको मंच चाहिए, आपको घुंघरू चाहिए, ब्रोशर चाहिए, फोटोग्राफी चाहिए, कॉस्ट्यूम्स चाहिए, बहुत सारी रिहर्सल चाहिए,
1: और लाइटिंग
0: लाइटिंग चाहिए, साउंड चाहिए, तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं किसी एक परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए। कभी कभी वही होता है कि बहुत सब कुछ वैसा ही था फिर भी वो बात नहीं बनी। यहाँ तक कि दर्शकों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा होता है। जब आपको अच्छे देखने वाले लोग मिलते हैं, आपको दाद देने वाले, आपको सुनने वाले, उसका भी आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए शायद जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं, चाहे नृत्य हो या और कोई कला हो, वो बहुत ईश्वर के वो डिपेंड करते हैं भगवान पे।
1: आस्था है वो,
0: आस्था वो उनकी कृपा से ही अच्छा हो सकता है, ऐसा दृढ़ विश्वास होता है हम लोगों को और होता भी यही है।
1: और एक कलाकार होने के नाते जैसा कि आपने कहा ईश्वर में आस्था होती है, प्लस अपने ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस, जब आप एक कार्य करते जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी आता है।
0: हाँ।
1: वो एक संबल मिलता है। और साथ ही साथ जैसे शिष्याओं के बारे में
0: जरूर कहना चाहूंगी, वो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत समय बहुत लोगों को खाया। उसमें भी क्या होता है ना, कुछ बहुत जो टिके रहते हैं, कुछ तो ऐसे जो 25 साल से टिके ही हुए हैं और सीखते जा रहे हैं, कुछ थोड़े समय के लिए सीखते चले जाते हैं, कुछ क्योंकि मैं भातखंडे में थी तो वहां पे जितने लोगों ने उस समय एमए किया, क्योंकि भातखंडे ही एमए की डिग्री देता था, तो सारे लोग लगभग मुझसे सीख के गए हैं वहां पे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की पीढ़ी में इस कला के प्रति या शास्त्रीय कलाओं के प्रति रुझान नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो पूरी निष्ठा आस्था से सीखते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे और भी वो है ना, मोबाइल है, चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं,
1: थोड़ा सा कमर्शियलाइज हो,
0: हाँ हो जाता है।
1: लेकिन ये भी होता है कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा देखें तो शायद उस ललक में कहीं
0: ये कुछ ज्यादा ही हो गया है अभी। लेकिन पहले ऐसा नहीं, पहले थोड़ा सीख लेना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए। अब जैसे
1: कला होती है वो साधना ही होती है,
0: सिर्फ साधना है। वही मैं कहना चाहूंगी कि एक लक्ष्य निर्धारित करके लगातार चलते रहना और लगातार उसके लिए परिश्रम करते रहना, इसमें शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, एकदम भी नहीं है, तो वो है। लेकिन एक गुरु के रूप में अगर आपसे कहूंगी तो एक वो परम संतोष होता है जब आप देखते हैं कि आपसे सीखे हुए जो बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े बड़े होके वो अपने आप में इतने सफल नर्तक या नृत्यांगनाएं बन गई हैं और अच्छे से सीखती हैं, समझती हैं, उस पूरे परिवेश को समझती हैं, और आप मुझे ही सलाह देती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये परम संतोष देता है मुझे, मुझे अच्छा लगता है। बस ये लगता है गुरु से मिला, उसको आगे बढ़ा दिया।
1: बिल्कुल। और जब गुरु को ये संतुष्टि मिलती है कि उसके शिष्य जो है वो उनकी परंपरा को या कला को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। और ईश्वर की ऑफकोर्स ये नेमत होती है, आप में ये चीज शुरू से थी, आपने उसको विकसित किया और लोगों तक पहुंचाया। कुमकुम जी, आपने देश विदेश में सब जगह पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए होंगे और कई देशों में ऐसा भी रहा होगा कि कुछ ऐसे अनूठे अनुभव आपको रहे होंगे, कुछ इसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताइए, कुछ चटपटे अगर अनुभव है या कुछ अच्छे अनुभव।
0: एक तो बड़ा मजेदार है, जब शुरू शुरू में हम लोग जाते थे और खास तौर से गल्फ कंट्रीज वगैरह में, तो वहां लोगों को शास्त्रीय नृत्य के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, फिर भी वो देखते थे कौतूहल से। अब बाद में तो फिर ऐसा हो गया, जैसे लंदन वगैरह में लोग टिकट खरीद के आते थे, वहां पे एक दर्शक वर्ग डेवलप हो गया था। लेकिन मुझे याद है कि किसी बड़ी गल्फ कंट्री ही थी कोई, जहां मैं एक ओपन स्टेज पे डांस कर रही थी मैं, और वहां पे एक लाइन में जमीन पे बहुत सारे लोग शायद फौजी ड्रेस में बैठे हुए थे।
1: अच्छा।
0: नाचते नाचते एक हुआ कि एक व्यक्ति उठा, एक यंग सा फौजी बेचारा, आके मेरे गले में एक माला डाल दी। अब नाचते नाचते वो माला मेरे, फिर मुझे समझ में तो ये आया कि वो, क्योंकि मेरी भाषा नहीं जानता था, तो एप्रिशिएट करने का उसका ये तरीका था,
1: वो
0: बिल्कुल। और भी जब हम बाहर जाते हैं तो वहां जो हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भारतीय हो और पहले तो मतलब बांग्लादेशी हो, फिलीपींस हो, क्योंकि वो एशियन ओरिजिन के लोग, वो संस्कार वही होते हैं, वो समझते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे बाद में भी मिलने आएंगे, नेक्स्ट डे भी आपके होटल में आएंगे, आपको घर में बुलाएंगे, आके खाना खा लीजिए, वो बड़े कौतूहल से आपके तबले वाले की उंगलियां देखें, हमारे घुंघरू को छू के देखेंगे कि आखिर ये कैसे बज रहा है, कैसे होता है। हमें मालूम है हम जिंदगी में कभी दोबारा उनको देख ना, मुझे उनके नाम याद है ना, हम उन्हें मिल पाएंगे कभी।
1: लेकिन आपको ये अनुभव तो है कि जो हॉस्पिटैलिटी, जो वार्मथ उस वक्त आपको मिली, आज भी याद,
0: मुझे याद है बिल्कुल। एक लड़की थी, इजिप्ट में थी लड़की, वो हिंदी फिल्में बहुत देखती थी, वो वैसे पहनती थी ना हिजाब पहन के आती थी, वो मेरे साथ साथ लगी रही पूरे समय में।
1: अच्छा।
0: हाँ, और वो कोशिश करती थी हिंदी के डायलॉग्स हिंदी फिल्मों से सीखे हुए उससे मुझसे बातचीत करे। पता नहीं क्या प्रेम, एक प्रेम था, जैसे मैंने देखा इसराइल में, इसराइल के लोग जो है इसको अपना मदरलैंड मानते हैं।
1: अच्छा।
0: अपने इस भारत को, बहुत ऐसे भारतीय हैं जैसे आप गुजराती स्पेशली, जो बाद में इसराइल जब बना उसके बाद के, वो तो हिंदी बोलते भी हैं, बम्बई में रहे या कहीं, वो इतना प्रेम, कुमकुमबेन कुमकुमबेन इतना प्रेम करते हैं, तो ये सब चीजें दिल को बहुत छूती हैं और बहुत मुझे याद है, मुझे मेमोरी में है चीजों का।
1: तो देखिए कला से जो है रिश्ते भी कायम होते हैं देशों के बीच में, और ये कितनी अच्छी बात है कि आपको आज

0: तक ये अनुभव याद है और ये जो रिश्तों में गर्माहट होती है इसी की चाहत सबको होती है। और इसी मोड़ पे हम आपसे एक गीत की फरमाइश करेंगे।
1: गीत बेताब दिल की तमन्ना यही है।
0: क्या बात।

0: तो चलते चलते कुमकुम जी हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये संदेश तो लोगों तक जरूर पहुंचा है कि कला को साधना है, लेकिन उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे आज के नई पीढ़ी को खासतौर पर?
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो कोई भी, वैसे तो पढ़ाई लिखाई हो या कोई भी और विधा हो जिसमें उसको, किसी भी बच्चे को या युवा को इंटरेस्ट हो, तो उसको तो जरूर परस्यू करे, लेकिन उसे हल्के में ना ले। मतलब उसे पूरी साधना के साथ, एक तो सही गुरु का चयन होना, फिर सही जगह जाके सीखना, ईश्वर पे आस्था रख के एक लक्ष्य निर्धारित करके और पूरे परिश्रम के साथ अगर कोई किसी विधा में मेहनत करेगा तो भगवान उसको जरूर फल देगा, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी।
0: आज के मेहमान में हमारे साथ थी डॉक्टर कुमकुम धर जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, प्रसिद्ध नृत्यांगना, पूर्व कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर कुमकुम धर से बातचीत कर रही थी सुमोना पांडे जी।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं,
3: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।
5: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
6: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
5: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
6: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBL Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: सुबह की खूबसूरत शुरुआत से भरा दोपहर,
10: पुरानी जींस और गिटार,
9: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
11: है, ऐश के जगावत।
9: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
12: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
9: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक, सरक।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

जय दोस्तों, हमें आप और आप हमें मिल गए हैं। हम हैं 100.7 FM रेनबो और आपके साथ आपका दोस्त विनय बना हुआ है सुबह से। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच हमारा विशेष प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनना बिल्कुल ना भूलें। और ये विशेष कार्यक्रम हर रविवार को आप तक पहुंचता है और आज का विषय है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप। और हाइपरटेंशन क्या है, इसके उपचार क्या है, लक्षण क्या है, कैसे इसे रोका जाए और कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए, इस पर बातचीत होगी। हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल जी, जो कि MBBS हैं, MD हैं, आंतरिक चिकित्सा और आंतरिक चिकित्सा विभाग से। और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं 0522 2238 8052 और दूसरा नंबर है 0522 2982 377। और अगर आपका फोन ना लगे तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। तो ये याद रखिएगा कि हम आपके साथ बने हुए हैं। जी, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: और श्रोताओं थोड़ी देर में
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं आप दिन के 11 बजे और शुरू हो रहा है कार्यक्रम हम नवा।

0: दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमनवा कार्यक्रम में। मैं हूँ आरजे वंदना और आज मेरी हमनवा है आरजे निधि, आप सबकी फेवरेट। हेलो निधि, स्वागत है तुम्हारा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया है। और अच्छी तो हूँ, बढ़िया हूँ एकदम। और तुम बताओ?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाहर से आ रही हो, कैसे हाल हैं गर्मी के?
1: ओहो पूछो मत वंदना कि बिल्कुल बढ़िया सी चिलचिलाती सी गर्मी है और उसमें बस आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम रोस्ट होते चले जा रहे हैं।
0: तभी जब तुम आई थी तो मैंने देखा था तुम्हारे ना चीक्स थोड़े रेड रेड थे,
1: ब्लैक हो गए होंगे।
0: नहीं थोड़ा तब के आई हो ना, फिर वापस आके जब बैठोगे स्टूडियो में तब थोड़ी देर बाद लगेगा हाँ कुछ कुछ तो रोस्ट हो गई है।
1: नहीं देखो वंदना क्या है, हर जो मौसम होता है ना उसका मजा लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे क्या हाल चाल है?
0: मेरे हाल भी एकदम अच्छे हैं और इंतजार में आपका कर रही थी। और लेकिन एक शिकायत है तुमसे।
1: अच्छा जी,
0: शिकायत मैं करूंगी बाद में, लेकिन पहले चलो अपने श्रोताओं को ना अपने दोस्तों को बता देते हैं आज हम किन किन बातों पर हमनवा में डिस्कशन करने वाले हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और अगर वैसे भी जितने भी वंदना हमारे पास टॉपिक्स होते हैं ये वो सारे के सारे इंटरेस्टिंग होते हैं और हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते भी हैं,
0: इंटरेस्टिंग होते हैं, संग में नॉलेजेबल भी होते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं। और बहुत अच्छा है अगर हम इन सब चीजों को कहीं ना कहीं नोट करते चले ना, तो शायद बहुत बड़ा हमारे पास एक नॉलेज का पूरा पुलिंदा इकट्ठा हो जाएगा।
1: ये जो बात अभी तुमने कही है वंदना, इसमें मैं बताऊँ, मेरे एक है कलीग हैं और वो ये बात कह रहे थे कि मैंने एक दिन अचानक ही ये ट्यून कर लिया कार में और उस समय बहुत ही बढ़िया बातें चल रही थी, तो मैं सोचने लगा कि अच्छा रेनबो कानपुर से इतने इन्फॉर्मेटिव और इतने बढ़िया प्रोग्राम्स भी आते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और अननोइंगली उन्होंने लगाया था।
0: बस मनोरंजन ही नहीं कि स्वस्थ मनोरंजन,
1: स्वस्थ मनोरंजन। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसा कोई अचानक से आपसे कहता है कि आपके चैनल पे हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, तो हमारा थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल बढ़ता है बिल्कुल। तो चलो बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं।
1: तो वंदना आज का जो हमारा खास मुद्दा है वो ये है कि आज 17 मई है और 17 मई को हम लोग वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाते हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है, तो इस पर हमारी बातचीत होगी अच्छी खासी।
0: हाँ, और साथियों गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं बच्चों की,
1: क्या बात है,
0: और कुछ की होने वाली हैं, कुछ की हो गई हैं, तो घरों में चल रही है धमा चौकड़ी, तो इसके इस पर भी हम बात करेंगे और बच्चों में इन दिनों क्रिएटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर हम बात करेंगे।
1: तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज के इस प्रोग्राम को जो हाउसवाइव्स हैं और खास तौर पर आज संडे है तो जरूर सुन ले कि उनको कैसे कैसे अपने बच्चों को एंगेज रखना है।
0: बिल्कुल। और हाइपरटेंशन डे है चूंकि, तो उसके साथ ही हम बात करेंगे चिंता बिल्कुल ना करें क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, है ना। और साथ में होगी एक मजेदार सी रेसिपी, तो रेसिपी क्या होगी ये हम उस समय बताएंगे।
1: हाँ थोड़ा सा सस्पेंस,
0: थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए
1: जी, है ना। तो अच्छा तुम मुझसे कह रहे थे कि एक शिकायत है, तो क्या शिकायत रहेगी?
0: हाँ, शिकायत है मुझे मैं काफी देर से यहाँ पर आपके साथ थी और देखा कि आप फोन पर ही बातें किए जा रही थी, मेरे से बातें नहीं कर रही थी।
1: तो नहीं यार ऐसा नहीं है।
0: हाँ नहीं नहीं मुझे लगता है, सही बात, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इस फोन ने ना दोस्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया है।
1: हाँ थोड़ा सा कुछ हद तक तुम ठीक कह रही हो वंदना, लेकिन
0: अच्छा,
1: क्या है
0: मुझे सही लग रहा था ना, शिकायत सही है।
1: नहीं शिकायत आपकी बिल्कुल सर आंखों पर है और जायज भी है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैं हर समय फोन पर बिजी नहीं रहती हूँ, लेकिन आज छुट्टी का दिन है और खास सा दिन है और लगता है कि जो कुछ एक मैसेजेस है या किसी से बात कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी बस कर लूं और फिर आपसे मिलना था, अपने दोस्तों से मिलना था, तो बस मैंने कहा ये काम निपटा करके फिर हम 11 बजे से कनेक्ट हो जाएंगे।
0: अच्छा मुझे तो लगा कि आप ना वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है सेलिब्रेट कर रही है इतना सारा फोन पे बात करके।
1: हाँ भाई देखिए वो जो नेम है ना वो जस्टिफाई होना चाहिए ना,
0: जस्टिफाई कर रही थी आज। चलो आज मैं भी यही करती हूँ, पूरा दिन ना घर पे बातें करती रहूंगी तो बताऊंगी कि आज ये दिन है इसलिए आज पूरे दिन घर पे बातें कर रही हूँ फोन पर। तो देखो ना मेरे तो सारे रिलेटिव्स भी यही रहते हैं तो मैं किससे कितनी बातें करूँ। आपका तो बनता है, आपके तो काफी लोग
1: बहुत कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हाँ वंदना ये होता है कि कई बार वो जो रिलेटिव्स हैं वो काफी दूर

0: है या आप जा नहीं सकते, जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लगता है जल्दी से बातचीत ही कर ली जाए। और
1: बहुत हम शुक्रगुजार हैं इस तकनीक और संचार के, जिसने हमारी दुनिया को बहुत ज्यादा बदल के रख दिया है। दूर रहकर भी आज हम कितने सक्षम है ना निधि, अपने लोगों को सामने से देखते हुए बात कर लेते हैं हम। और ये बात और है कि पास रहकर भी लोग फोन पे लगे रहते हैं किसी और से और बात नहीं करते दोस्तों से, है ना।
0: नहीं देखो, इसने कितना बढ़िया सा अच्छा सा मुझे धीरे से प्यार से कमेंट कर दिया है, है? तो मैं तुम्हारी नाराजगी पूरी पूरी दूर कर देती हूँ। सबसे पहले एक अच्छा सा गाना आपको सुनाऊंगी और
1: चलिए देखते हैं आपका गाना नाराजगी दूर कर सकता है कि नहीं।
0: करेगा, मुझे उम्मीद है।

0: तो भाई वंदना देखो, जैसे कि गाने में था ना, पॉइंट पे आओ ना, तो पॉइंट पे हम आ गए हैं बिल्कुल, और जो भी बातें हमें करनी है, और मुझे लग रहा है कि पॉइंट की बात यह है कि अब तक तुम्हारी नाराजगी दूर होगी, बढ़िया सा गाना लगा है।
1: बटर में मैं फिसल चुकी हूँ और निधि सही कह रही हूँ, इस बटर में मैं फिसल चुकी हूँ, और बहुत प्यारा गाना सुना दिया आपने और हंसी भी आ गई मुझे, और अब चलिए गिला शिकवा दूर हो गया, क्योंकि और भी लोग हैं जिनसे बातें करनी पड़ती हैं कभी, और चाहिए भी, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चलो अब हम बात

0: करते हैं कि आज हमारा टॉपिक जो है उस पर हम क्या क्या जानकारी दे रहे हैं।
1: हाँ, पॉइंट पर आ रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल। तो निधि, आज हम विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस पर बात कर रहे हैं, तो अपने साथियों और श्रोता मित्रों को बता दें कि आज के दिन का उद्देश्य है दूर संचार तकनीक के महत्व को समझाना, इंटरनेट और सूचना तकनीक के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। हालांकि जागरूकता तो बिना कुछ कहे आजकल बढ़ जाती है इस चीज़ के लिए, और सभी को डिजिटल दुनिया से जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल वंदना, आज की जो दुनिया है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया से अलग है, हम अपने आप को सोच ही नहीं सकते,
0: नहीं
1: है ना। और जो आज का दिन रखा गया है 17 मई का दिन, वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि 1865 में ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की स्थापना हुई थी, और यही संस्था दुनिया भर में संचार तकनीकों के विकास के लिए काम करती है, और इसीलिए समझो आज हम इसका फाउंडेशन डे मना रहे हैं।
0: और थोड़ा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं निधि, तो पहले के लोग याद करो चिट्ठियां लिखते थे। हमारी मम्मी मौसी ये सब लोग भी हमने देखा है चिट्ठियां लिखती थी, और वो चिट्ठियां बहुत दिनों में आती थी, फिर मिलती थी, फिर हम तब भी इंतजार करते थे कि सामने से पलट के जवाब आएगा कब आएगा। तो वो एक समय था जब चिट्ठियां हफ्तों में पहुंचती थी, और आज बस कुछ सेकंड्स में, चुटकियां बजाने जितनी देर में हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों और हम किसी से भी बात कर सकते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, और वो भी वीडियो कॉल पर या उसको सामने से बात करते हुए, हिलते डुलते देखते हुए बात करते हुए बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल वंदना, आज का जो समय है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हालांकि जैसे तुमने चिट्ठियों की बात कही, तो उसका भी एक अपना चाम हुआ करता था, अपना जो इंतजार होता था चिट्ठियों से,
0: वो हाँ,
1: तो एक अलग बेसब्री होती थी और बड़ा ही खूबसूरत लगता था। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, वक्त बहुत कम है लोगों के पास।
0: वक्त तो देखो, कुदरत के जो दिन में 24 घंटे हैं वो तो वही हैं, हमने अपने काम बढ़ा लिए हैं दरअसल, है ना।
1: सही बात है,
0: हमने अपने काम बहुत बढ़ा लिए हैं, इच्छाएं क्योंकि इंसान की बहुत बढ़ चुकी हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम बहुत हो गए, है ना। और इसी से हम, लेकिन ये भी कहना एकदम लाजमी है कि इस मोबाइल, इंटरनेट, फ़ोन और सोशल मीडिया, ऑनलाइन सब चीज़ें जो हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को तेज़, आसान और स्मार्ट बना दिया है।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत आसान बना दिया। और अब तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो खासतौर पर हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी काम बहुत आसान हो गया। आप देखिए, हम लोग भी अपने यहाँ से, हमारा जो दूसरा चैनल है विविध भारती, हम उसमें डेली मौसम की जानकारी शेयर करते हैं जो कि हमारे पास आती है मौसम विज्ञान विभाग के विभाग से ही आती है,
0: और भले वो एकदम एग्जैक्ट ना हो लेकिन काफी
1: अनुमान काफी हद तक लगा लेते हैं।
0: सही होता है
1: किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मौसम की जानकारी जो है वो बहुत अच्छी रहती है, उससे वो अपनी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
0: स्टूडेंट्स कहीं भी रहकर विदेश शो में पढ़ सकते हैं, यहीं पे रह रहे हैं, और कहीं बाहर के विदेश के कोई इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप देखिए आजकल बच्चे सिर्फ स्कूल के भरोसे नहीं है, ऑनलाइन वो कितनी ही क्लासेस अटेंड कर लेते हैं और अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम वंदना भारत की बात करें, तो भारत आज की दुनिया में सबसे बड़े डिजिटल देशों में शामिल हो चुका है। इसकी गिनती पूरे मतलब वर्ल्ड में अच्छे एक मुकाम पर
0: डिजिटल इंडिया की
1: हुई है। आप देखिए, डिजिटल इंडिया है, इंटरनेट है, टेक्निक है, इस जितनी भी हमारी जो टेक्निक्स हैं उसको जन जन तक पहुंच चुका है डिजिटल इंडिया के माध्यम से।
0: हाँ देखिए ना, हम ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करने लगे हैं, कितनी ऑनलाइन शॉपिंग आजकल करते हैं लोग, और बच्चों की कोचिंग है, पढ़ाई, अभी लॉकडाउन के समय ही ये चीजें कितनी काम आई थी, बच्चों ने पढ़ाई भी स्कूल से करी थी तो वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोचिंग भी चलती है, एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पूरे दिन का ये काम है। और लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी निधि, कि ये सब चीजें जो हमारी सुविधाओं को बढ़ा रही हैं, इसके साथ साथ इन सुविधाओं को जब हम ले रहे हैं उनके साथ साथ हमारी बहुत बड़ी एक हमारे पास रिक्वायरमेंट हो जाती है, हमारे लिए जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन
1: फ्रॉड बहुत हो रहा है ना। मैं यही बोलना चाह रही थी कि देखिए, बेशक डिजिटल जब हम हो गए हैं, बहुत इंटरनेट हमने यूज करना सीख लिया है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है। जैसे भी आपने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप आए दिन ही सुनते होंगे कि किसी के खाते से पैसे उड़ गए, और समय समय पर हम जानकारियां देते रहते हैं कि भाई इस तरीके की आप कोई भी गतिविधि नहीं करें, हम कुछ भी लगाते हैं और उसमें आती है बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन, और हम फटाफट सबको बिना पढ़े हम सबको अलाउ करते चले जा रहे हैं, तो हम सोच ही नहीं पाते कि हमारा कितना सारा डेटा कितने ही लोगों के पास पहुंच रहा है, और हैकर्स तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा

0: स्मार्ट रहते हैं
1: उनको, तो यही चाहिए कि हाँ, आपकी सारी जानकारी मिले
0: तो
1: उनको।
0: हम लोग कुछ एक बात फिर से बताना चाहेंगे, हालांकि हमारे दोस्त बहुत ज्यादा, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सब समझदार हैं, लेकिन हाँ, फिर भी बताना हमारा फर्ज बनता है कि आप तुरंत ही किसी को अपना ओटीपी बिल्कुल भी हाँ, आपको नहीं बताना है।
1: ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है जो थोड़ी देर के लिए मान्य होते
0: हैं बस, और उसके बाद आपको नहीं बताना,
1: आप मत बताएं सबको, क्योंकि वो आपके लिए ही निजी आपकी गोपनीयता होती है वो।
0: और दूसरी बात वंदना, एक चीज और भी हम लोग बताते हैं कि भाई अनजान लिंक पर कभी भी आप टैप ना करें।
1: ये चीज आजकल बहुत हो रही है, जैसे कुछ बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं तो वो कभी उनके फोन पर आ जाता है कुछ भी, तो अगर उन्हें कोई रिक्वायर्ड उनकी चीज है, जैसे कुछ भी आ रहा है, कोई दवा वगैरह का एड आ रहा है, वो उस पर बोल देते हैं कि ये लिंक दिया जा रहा है, इस पर क्लिक करिए, वो कर भी देते हैं। और ऐसा हमने अभी बहुत समय से देख रहे हैं, पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं कि बुजुर्गों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं।
0: हाँ, क्योंकि देखिए उनके पास उतनी नॉलेज नहीं
1: है,
0: तो वो उन्होंने सब कुछ सीखा है अपने घर के बच्चों से या फिर अपने मतलब पोते पोतियों से सीखा है, तो उनके पास जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, और हर आदमी इतना टैक्स सेवी नहीं है, उसको नहीं समझ में आता है, तो इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी सुविधाएं हैं, ये इनके साथ में हमारी एक जिम्मेदारी भी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलिए, लेकिन सतर्कता हमेशा बाकी रहे।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो वंदना, आने वाला जो समय है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और 5G का है, तो हमें जरूरी है कि हम भी उनसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएं, हम उस टेक्नोलॉजी को हम समझ लें, क्योंकि देखिए इसके बगैर हमारा काम आगे चलेगा नहीं, तो हमें स्मार्ट और होना पड़ेगा।
1: जी हाँ दोस्तों, तकनीक का सही उपयोग समाज को आगे बढ़ाता है, तो हमेशा सही गलत का ध्यान रखिए, सतर्क हमेशा रहिए, वरना एक सुविधा हमारे लिए बहुत बड़ा दुख बन सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, देखिए ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, तो उस ज्ञान को अर्जित
1: हाँ, सीखते रहिए, जुड़े रहिए नव निर्माण और नवाचार से, और तकनीक का प्रयोग सकारात्मक तरीके से अपने और समाज के कल्याण के लिए करिए।
0: बिल्कुल, कल्याण के लिए करिए। और ये बात हम जरूर कहेंगे कि देखिए हम लोग को प्यार तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा
1: टेक्नोलॉजी
0: है, टेक्नोलॉजी से, और हमें उस प्यार को मेंटेन रखना है, लेकिन स्किलफुली,
1: लिमिट में।
0: तो एक ऐसा ही गाना आपको हम सुनवाते हैं।

0: तो वंदना देखो, ये जो गाना था ना थोड़ा सा सीरियस मूड में था और हम भी थोड़ा सा उसी में ही चले गए हैं, क्योंकि
1: सीरियस मोड में.
0: अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ इसी तरीके का है. और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसकी दरअसल कोई डायग्नोसिस है नहीं, है ना. बस सिम्टम्स नज़र आते हैं कि जैसे आपको भूख नहीं लग रही है, आप अपने आप में खोए हुए हैं, काम पर भी आप ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हर समय आप थके थके से फील कर रहे हैं. और अगर आप ऐसे केस में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको बस यही कहता है कि भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आप सोच रहे हैं, इसके बारे में चिंता कर रहे हैं,
1: चिंता
0: है ना.
1: कर रहे हैं. और आज ना निधि, ये बीमारी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, जिसे कोई डॉक्टर अपने पर्चे में मेंशन ही नहीं करता. वो ये नहीं कहता कि आपको चिंता नाम की बीमारी है, ठीक
0: हाँ
1: है. जबकि इस बीमारी से आज के समय में दुनिया का लगभग हर व्यक्ति ग्रसित है. आजकल
0: बिल्कुल.
1: इनफैक्ट मैं अगर बताऊं तो बच्चों को भी चिंताएं होने लगी
0: हाँ,
1: हैं.
0: 4 साल का बच्चा स्ट्रेस ले
1: एक
0: लेता
1: वक्त
0: है.
1: होता था कि जब बच्चे तो बिल्कुल
0: चिंता से फ्री
1: हाँ
0: होते थे,
1: बचपन
0: मतलब
1: हर
0: उनको
1: गम से बेगाना
0: हाँ
1: होता
0: क्या
1: है,
0: बात
1: उसी समय पर गाना एक ये
0: है.
1: था सुनते थे हम.
0: हाँ.
1: तो आज बचपन भी उस गम से बेगाना नहीं है, आज बचपन भी चिंताओं में डूब गया है. कुछ बच्चों को एग्जाम की चिंता है, कुछ को अपने नंबर्स की, अपने परसेंटेज की चिंता है, बहुत सारी चिंताएं हैं बच्चों के भी दिमाग में. तो इस समय में आज जब हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, और इसीलिए आज के हम नवा प्रोग्राम में हमने इस टॉपिक को लिया है. तो चाहे वो एक 4 साल का बच्चा हो या 70 साल की बुजुर्ग, हर कोई चिंता कर ही रहा है.
0: बिल्कुल. और वंदना, सबसे हैरानी की बात यह है कि देखिए, जिस जिन बातों की हम एक्चुअली चिंता कर रहे होते हैं उसमें से 90% चीजें कभी होती नहीं है,
1: ये एकदम सही कहा आपने,
0: है ना. हम
1: बिल्कुल.
0: अननेसेसरी कुछ ऐसी ऐसी बातों की टेंशन लेने लग जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है. और ये बात सिर्फ हम कह नहीं रहे, ये बात
1: प्रूफ
0: सर्वे से
1: है,
0: पता चली है कि
1: बिल्कुल
0: भाई
1: बिल्कुल.
0: लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी बातों की चिंता कर रहे हैं कि कोई उनका लेना देना नहीं है. जैसे अभी हम आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दे दे कि भाई मान लीजिए आज घर संडे है, और हमारी काम वाली जो दीदी हैं या आंटी हैं वो घर पर ना है, तो हमें चिंता होने लगेगी, अरे नहीं आई तो क्या
1: तो
0: होगा,
1: क्या
0: गेस्ट आ गए
1: होगा.
0: तो फिर
1: हाँ
0: क्या होगा, और इतने सारा काम पर बचा पड़ा है, कोई मतलब नहीं है
1: सपोज
0: उसका.
1: कीजिए, मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज को भी देखा है कि अगर सपोज करिए घर में बच्चे रहते हैं तो कभी कभार नाश्ते की चीजें उठाकर खावा लेते हैं, खाते रहते हैं,
0: हाँ
1: मस्ती करते हैं. तो अगर खत्म हो गई और अचानक से मेहमान आ गए तो उसमें चिंता करने का विषय बना लेती हैं लेडीज कई बार कि अरे नाश्ता नहीं. अरे ये कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे
0: हाँ
1: कि आप कोई, ये नॉर्मल बात है, आप उनके घर जाइए, उनके साथ भी ऐसा
0: हाँ
1: हो सकता
0: और
1: है.
0: वंदना, कई बार क्या होता है जब घर में बच्चे होते हैं, आप चाहे कितना ही नाश्ता मंगा के रख
1: हाँ
0: लीजिए
1: बिल्कुल, सब
0: तो
1: जानते हैं इस
0: आप
1: बात को,
0: श्योर नहीं हो सकते कि गेस्ट आएंगे तो उस समय आपका
1: यूनिवर्सल
0: नाश्ता.
1: यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसीलिए इन छोटे छोटे, जैसे आप बता रही हैं कि वो 90% चीजें कभी होती ही नहीं है जिनको हम सोच सोच के क्या होगा करते हैं
0: हाँ, कोई
1: और
0: मतलब नहीं
1: स्ट्रेस
0: है.
1: अपने दिमाग को देते रहते हैं.
0: या एक और मतलब बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए संडे है, छुट्टी का दिन है, और बॉस का फोन आ गया अचानक, है. अब
1: ये क्या कह दिया.
0: आपके दिमाग में ना सैकड़ों सवाल, सैकड़ों चिंताएं कि क्यों फोन किया
1: फोन उठाने से
0: होगा.
1: पहले वाले जो सेकंड्स होते हैं उनमें क्या हो गया क्या हो
0: हाँ,
1: गया क्या हो गया,
0: उतनी
1: कितना
0: देर में
1: घूम
0: हमारी
1: जाता
0: जो
1: होगा.
0: हार्ट बीट है वो पता नहीं कहाँ पहुंच
1: हाँ
0: जाती
1: पहुंच जाती है,
0: है
1: सच
0: कि
1: कह
0: पता
1: रही
0: नहीं क्यों फोन किया होगा, कोई गलती नहीं हो गई, कोई काम छूट तो नहीं गया है, पता नहीं कितनी तरीके की बातें हम लोग सोचते रह जाते हैं और होता कुछ नहीं है उस
1: बिल्कुल
0: समय.
1: सही बात है. और इन
0: तो
1: चिंताओं का कोई सिर पे है ही
0: हाँ,
1: नहीं
0: और
1: निधि, और ये सब हमारे केवल दिमाग में चलती रहती हैं. और एक चीज और होती है कि हम लगातार जैसा सोचते हैं बार बार, मान लीजिए एक दिमाग है 1 मिनट में बहुत सारे विचार ले आता है,
0: हाँ
1: कभी एकदम से पहुंच जाएगा कहीं बहुत दूर, कभी कोई गाना मन में आएगा तो वो वादियां याद आ जाएंगी जिस उसमें हमने
0: हाँ
1: वो गाना देखा है, तो कभी वहां घूम रहे कभी यहाँ घूम रहे, मन तो ऐसा ही है. लेकिन
0: बिल्कुल
1: हम अगर उसके साथ में यूं भागते रहेंगे ना

0: तो हम अपनी टास्क जो प्रेजेंटली और सामने हाँ. से कर रहे हैं व्यवहारिक तौर पे वो नहीं कर पाएंगे,
1: उसमें से कहीं हट
0: हाँ,
1: जाएंगे,
0: उसमें से हट जाएंगे. तो फिलहाल हम तो ये कहेंगे अपने दिमाग के ट्रैफिक जाम को थोड़ा सा कम कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बातों को हम अननेसेसरी चिंता का विषय बनाते हैं और जो बातें हुई ही नहीं है उनके बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान करते हैं. तो ऐसा क्यों करना, ये जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, तो क्यों हम उनको सोच रहे हैं. अब जैसे मौसम ही खराब हो जाए अचानक हाँ. तो हम कुछ लोग यही परेशान होने लगते हैं, ऐसा ना हो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देर हो जाए, ये हो जाए, कहीं रास्ते में कुछ हो जाए. ये सब सोचने से गलत चीज है. आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, कूल रखिए, शांत रखिए, सब कुछ अच्छा होगा.
1: बिल्कुल, ये जितनी भी चिंताएं हैं ना वंदना, ये सब हमारे दिमाग की ओवर स्पीडिंग की वजह से. अभी जैसे तुमने कहा ना कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे दिमाग में हो रहा है कि कहीं लेट ना हो जाए, तो पहली बात तो हम लोग हमेशा ही जानते हैं कि कहीं आपको जाना है तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर निकले, मार्जिन लेकर निकले.
0: लेकिन
1: कई बार क्या होता है कि स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. हम घर से निकले और मान लीजिए जिस रूट पे हमको ज्यादा आइडिया नहीं है वहां पे सड़क की खुदाई का काम चल रहा है और वहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है. अब आप वहां से निकले, मालूम चला आप किसी गली के अंदर से निकल रहे हैं, वहां पे कोई होम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप फिर गाड़ी मोड़ रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर निकले, फिर आपका क्रॉसिंग बंद हो गया. तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो हम उसके बारे में
0: कंट्रोल करना चाहते हैं ना. जब हम घर से परेशानी को लेकर निकलते हैं तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग थोड़ा सा परेशान होकर ही हमें आउटपुट देता है, तो हम फिर हड़बड़ी में जब काम करते हैं तो वो गड़बड़ी हो जाती है.
1: तो गड़बड़ी
0: हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये हमेशा याद रखिए. तो कभी हड़बड़ी मत करिए तो गड़बड़ी नहीं होगी ना दोस्तों. है ना. और ये बातें सुनने में ठीक लगती हैं कि मतलब चिंता ना करिए. लोग कह देते हैं अरे आप कह रहे हैं लेकिन चिंता नहीं, लेकिन चिंता आपको नहीं करनी है. ये केवल कहने की बात नहीं है, चिंता नहीं करनी है. हमें बार बार ये सोचना है कि अरे ये फालतू जो बातें फालतू की हैं उनको सोचना है कि अरे इनको लेट गो करो, ये फालतू की बातें हैं.
1: बिल्कुल सही बात है कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना फ्यूचर की बातों को भी नहीं सोचिए और हम पास्ट की भी बातों को ना सोचे, तो हम बस यही बात
0: हमारे हाथ में है
1: कहना चाहेंगे कि देखिए जो फ्यूचर है ना वो तो एक ऐसी तिजोरी है बंद की इसके बारे में हमको पता नहीं है
0: बिल्कुल
1: कब खुलेगी क्या होगा. और पास्ट भी हमारा मतलब एक इस तरीके का चेक हो चुका है जो कि कैश हो गया है, अब उसमें कोई वो होना नहीं,
0: कुछ
1: तो प्रेजेंट वाले
0: बदल नहीं होना है. हाँ बिल्कुल,
1: तो प्रेजेंट वाले चेक को
0: आप कभी
1: हा?
0: ऐसा सोच कर करके देखिए कि आप कोई अपनी पुरानी फोटो उठाइए ठीक
1: हाँ.
0: है, आप अगर नए जमाने में उस फोटो को एडिट करना चाहेंगे तो शायद वो ऑनलाइन एडिट हो जाएगी, लेकिन अगर उस फोटो पे जो आपकी फोटो खींच गई थी या जो जिस पास्ट में आप जैसे लगते थे आप उस लगने को तो सही नहीं कर पाएंगे ना. फ्लैशबैक में जाकर कि हम टाइम वो टाइम मशीन एक जो आता है आजकल, टाइम मशीन में जाकर वापस हमने अपने आप को एडिट किया, हम अच्छे अच्छे बन गए. अगर हम थोड़ा सा कलर हमारा सांवला था तो वो गोरा हो गया, या बाल थोड़े लंबे थे तो छोटे हो गए, नहीं कर सकते ना. तो ना पास्ट हमारे बस में है ना फ्यूचर हमारे.
1: और पता है वंदना जो हम चिंता की बात कर रहे हैं ना, कई लोगों को इसकी भी टेंशन हो जाती है कि यार अपने बचपन की फोटो ना डाले इसमें सबको पता चल जाएगा. अरे इसी की टेंशन हो रही है
0: भाई. ये बातें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन फैक्ट ये है कि चिंता हम सभी करते हैं
1: फिर भी,
0: और सब जानते हैं कि चिंता, बहुत बुजुर्गों से सुना है कि चिता समान होती है, बस उसमें से एक बिंदी हटा दीजिए और वो चिता समान बन जाती है. मगर हम सभी को स्ट्रेस होता है, कई बार घर परिवार की प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, फीस होती है, करियर होता है, सब बड़े बुजुर्गों की देखभाल, उनकी जिम्मेदारी, वर्क प्लेस का प्रेशर, बच्चे हैं तो उनके एग्जाम की टेंशन, बहुत कुछ होता है. लेकिन फिर भी कोशिश अपनी जितनी हो सके करिए कि ये सब चीजें बड़ी आम हैं. अब हम बच्चे हैं तो पढ़ेंगे ही, बुजुर्ग हैं तो उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा.
1: बिल्कुल, उसमें चिंता नहीं करनी, हाँ स्ट्रेस नहीं लेना. और अभी जैसे अभी आप बच्चों की बात कर रहे थे कि अभी हाल में देखिए 12th का रिजल्ट आउट हुआ CBSE का, और रिजल्ट कंपैरेटिवली बीते सालों के हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो गए, बहुत सारे बच्चों को उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए. या अभी आप देखिए नीट का जो एग्जाम था वो पेपर लीक हो गया, तो उसमें भी देखिए टेंशन वाली बात तो है ना. हम नकार नहीं सकते उस चीज को कि भाई अब आप फिर से आपको भले
0: गवर्नमेंट एडिट करूंगी, ये टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि पेपर हमने तो लीक नहीं किया ना.
1: यही
0: हमें दोबारा आप पॉजिटिव होकर उसमें ये सोच सकते हैं कि हमें दोबारा मौका मिला है. हाँ. हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा हो,
1: ये तो बड़ी अच्छी बात
0: कुछ और अच्छा सोचा हो.
1: हाँ,
0: हो सकता है आज हम पेपर वही देते तो हो सकता है शायद उतना
1: अच्छा
0: अच्छी
1: प्रिपरेशन नहीं है
0: अभी. और अभी जब आगे होगा तब तक आपको प्रिपरेशन का और टाइम मिल गया.
1: बिल्कुल,
0: तो हमेशा पॉजिटिविटी अपने साथ रखिए और उससे सब कुछ अच्छा होता है.
1: तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि भाई देखिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. जैसे अभी वंदना ने कहा कि उसमें से आप पॉजिटिविटी निकाल करके रख लीजिए, है ना. तो बहुत सारी चीजें हम पर ही डिपेंड करती हैं कि भाई हम उस सॉल्यूशन उस समस्या से बाहर कैसे आए, तो उसका हमें खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, है ना.
0: बिल्कुल, समस्याएं हर किसी की लाइफ में होती है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या एक आम आदमी हो. ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को खुद पर कितना हावी होने देते हैं. और

0: समस्याओं पर चिंतित होने की बजाय उसका समाधान हमें ढूंढना चाहिए, ये मैं आज भी सुबह अपने श्रोताओं से बात कर रही थी। और इस साइलेंट किलर, ये जो हाइपरटेंशन है, इस साइलेंट किलर को, चिंता को बिल्कुल अपने से दूर कर दीजिए, इसको विदा कर दीजिए।
1: बिल्कुल ही विदा कर दीजिए
0: और अपने लाइफ को बनाइए हैप्पी हैप्पी लाइफ, और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ हमेशा खुश रहिए। स्माइल आपके चेहरे का असली श्रृंगार है।
1: क्या बात है, तो मतलब इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि आप अपनी खुशियों को कहिए हाय और चिंताओं को कहिए बाय
0: बाय।
1: अभी हमारा जो हमारी घड़ी है वो थोड़ा सा ही कह रही है वंदना कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और उससे पहले एक बात हम ज़रूर अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपकी भी इस तरीके की कोई बात है, कोई चिंता आपको सता रही है, तो आप हमें शेयर कर लीजिए अभी कि अभी और हमारा एड्रेस तो जानते ही, हमारा एड्रेस तुम बताओगी?
0: नहीं, आप बता दीजिए।
1: ओके, तो हमारा एड्रेस है AIRKANSOMEDIA@gmail.com, यानी कि AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तो झटपट से हमें अपनी बात पहुंचाइए फटाफट से, और हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में हम उसे शामिल कर लें। फिलहाल एक ब्रेक की बारी है, और हम नवा प्रोग्राम में हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें जो हमसे अभी जुड़े हैं कि आज आपके साथ है आपकी दोस्त निधि जैन, और मेरे साथ है प्यारी सी वंदना।
2: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: पहला नशा, पहला खुमार।
5: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

0: बिल्कुल वंदना, यही सोचना है कि सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि कल क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, इस बात का बिलीव रखना है अपने दिल में। और एक बात और याद रखिए कि भाई क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो
1: क्या
0: होगा।
1: बात है, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, तजुर्बा तो होगा, अगर कुछ भी हुआ तो, मान लीजिए कुछ गलत या सही कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल रही चीजें, तो भी तजुर्बा हो जाएगा कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था,
0: हाँ,
1: है
0: एक
1: ना।
0: सीख
1: बहुत
0: मिल
1: अच्छी
0: जाती है
1: बात,
0: आपको,
1: बहुत
0: है ना।
1: सीखा। सीख तो जिंदगी में देखिए हर चीज में मिलती है हमें, है ना। जिंदगी अच्छा हो या बुरा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो जरूर देकर चली जाती है। इसलिए जिंदगी में अननेसेसरी चिंता करने की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसी पर लोग कहते हैं कि कैसे कह रही हैं आप, हम कैसे चिंता ना करें। तो मैं मजाक में कह देती हूँ कि कैसे में से क हटा दीजिए, ऐसे चिंता ना करें जैसे हम बता रहे
0: बड़ा मजेदार
1: हैं,
0: आज प्रोग्राम हो रहा है वंदना। हमें लग रहा है, लिसनर्स को लग रहा हो कि आज थोड़ा सा कॉमेडी शो होता जा रहा
1: है
0: है
1: ना। नहीं यार, मैं
0: हमारा।
1: कॉमेडी नहीं कर रही हूँ,
0: नहीं,
1: मैं
0: लेकिन अच्छी बात है,
1: इसी
0: बहुत
1: बात पे, मतलब थोड़ी
0: हल्के
1: हंसी आ
0: तरीके से
1: जाती
0: हम
1: है
0: लोग
1: ना।
0: बातों को, अपने स्ट्रेस
1: हाँ,
0: को हटा रहे
1: अब
0: हैं, है ना।
1: सोचिए अगर आपको कोई चिंता हो रही हो, आपको मेरी ये बात याद आ गई तो हंस देंगे ना, बस
0: बिल्कुल
1: जहाँ
0: हंसेंगे,
1: हंसे तो पर फंसे
0: हंसे।
1: है ना। तो चिंता करने से हम अपने आप को सिर्फ परेशान करते हैं, और एक ओवर स्ट्रेस या ओवर चिंता ही हाइपर टेंशन हमें दे देती है।
0: बिल्कुल
1: और
0: है, और हाइपरटेंशन की वजह से आप जानते हैं कि कितनी सारी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे शरीर में। तो होता क्या है वंदना, कि कई बार जब ये हाइपरटेंशन होता है तो हम उसे काफ़ी लाइटली ले लेते हैं कि अच्छा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, तो हम सोचते हैं कि सिंपल सी, मतलब, या डिजीनेस हो रही है, हमें चक्कर सा फील हो रहा है। जैसे आज मैंने देखा था, जब मैं आई तो तुम थोड़ा सा स्ट्रेस थी, है ना, तो तुमने कहा कि निधि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कुछ मेरा सिर एकदम से
1: हाँ
0: घूमा।
1: बिल्कुल,
0: तो होता क्या है कि कई बार हम ओवर काम कर रहे हैं या किसी बात से परेशान हो गए तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, और हम
1: आते हैं।
0: उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वंदना, ये हमारे हार्ट, किडनीज और मतलब दिमाग तक तो है ही, क्योंकि दिमाग से ही असर है इसका, तो बहुत सारे चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाने लग जाता है, धीरे धीरे असर कर जाता
1: अच्छा, और
0: है।
1: आपको पता है कि जैसे डॉक्टर्स भी इसीलिए इस हाइपर टेंशन जो होती है कि हम टेंशन का एक हमने मोड अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया है, उतने लेवल की चिंता हम रोज ही करते हैं, रोज टेंशन करते ही हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और इसीलिए वो चिंता हमारे दिल दिमाग में घर करती जाती है और हम अंदर से थोड़ा थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं। और डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्य से दिखने वाली बीमारी है ये, लेकिन आगे चलकर बहुत घातक हो जाती है। इसीलिए इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम आज का दिन यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मना रहे हैं।
0: बिल्कुल, विश्व उच्च रक्तचाप
1: चाप
0: रक्तचाप दिवस
1: दिवस,
0: है,
1: हाँ थोड़ा सा हिंदी पे,
0: देखिए। हाँ, कि कई
1: हाँ
0: बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप इकट्ठा उनको बोलते हैं तो कहीं ना
1: बिल्कुल,
0: कहीं फंबल हो जाता है,
1: हाँ
0: बट ह्यूमन एरर है ये, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कोई बात नहीं है। लेकिन वंदना, क्योंकि हम आज बहुत सारी बात कर चुके हैं चिंताओं पर, और तुमने आज सुबह रसभार प्रोग्राम में भी हाइपरटेंशन की काफ़ी सारी बात करी है, तो बस इसलिए उस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे डिटेलिंग में, क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्डिंग रखी हुई है, उसको हम आपके लिए सुनवाएंगे ज़रूर। लेकिन आपको ये बता दें कि जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, कई जगह बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, जहाँ पर हाइपरटेंशन से जो पीड़ित लोग हैं उनके बीपी की मुफ्त जांच और दवाएं दी जाती हैं। और आप जानते हो कि हाइपरटेंशन का

0: जो सीधा कनेक्शन है वो बीपी से ही है, हमारा बीपी बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे संस्थाएं हैं, तो कुछ संस्थाओं के बारे में हम अपने दोस्तों को बता देते हैं। एक तो है IHCI यानी कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, और या फिर आयुष्मान भारत, तो सभी को पता है ये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है जहाँ पर 30 साल से भी अधिक जो लोग हो गए हैं उनकी रेगुलर बीपी की जांच है, डायबिटीज है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए भी फ्री स्क्रीनिंग उनकी होती है। तो हमारे दोस्तों को ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी
1: प्रॉब्लम
0: दिख रही है तो आप जरूर वहाँ पर जाकर के फ्री स्क्रीनिंग करा सकते हैं।
1: यही नहीं निधि, उन्हें मुफ्त दवाओं के साथ साथ ऐसे पेशेंट्स का डिजिटल रिकॉर्ड भी वहाँ पर रखा जाता है ताकि उन्हें आगे भी रेगुलर दवाएं मिलती रहें, और इसमें फैमिली और समाज का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। जब हम सब मिलकर इस बीमारी के खिलाफ कदम बढ़ाएंगे तभी इस मिशन को हम सफल बना पाएंगे।
0: बिल्कुल वंदना, और इस बार की जो थीम है वो भी यही है कि कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर,
1: बिल्कुल,
0: चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली एंड डिफीट द साइलेंट किलर।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सामूहिक प्रयासों से ही चीज़ों में सफलता मिलने की गारंटी ज़्यादा हो जाती है।
0: गारंटी ज़्यादा है, और जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक बहुत अच्छी सी रिकॉर्डिंग है, एक अच्छी सी काउंसलर है, उनके हम विचार जानते हैं वो क्या कहती हैं हाइपरटेंशन के बारे में।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं योगिता एक स्कूल में एज ए काउंसलर काम कर रही हूँ। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर मैं बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घुसकर शरीर के मुख्य अंगों जैसे हार्ट, किडनी, यहाँ तक कि ब्रेन को भी नुकसान पहुँचाती है। आजकल सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, 20-25 साल के युवा, यहाँ तक कि 11-12 के यंग बच्चे भी हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है रॉन्ग लाइफस्टाइल। आज के बच्चे या यंग एडल्ट्स घर के बनाए टिफिन के बजाय कैंटीन या बाहर के पैक्ड प्रोसेस्ड फूड को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा नमक और हार्मफुल केमिकल होते हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कारण है फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करना, घंटों कंप्यूटर या लैपटॉप पर वर्क करते रहना, देर रात तक स्मार्टफोन पर बिजी रहने के कारण नींद का पूरा ना होना। हालांकि कुछ मामलों में फैमिली हिस्ट्री या ओबेसिटी भी इसका एक कारण रही है, बट मेन कारण यही है कि हाई सॉल्ट इनटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। सभी सुनने वालों से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ से इन सभी बातों को अवॉइड करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी का इंटेक बढ़ाएं, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड को अवॉइड करें, और एवरी डे 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन जरूर करें। एक बात और, अगर आपकी उम्र 40 के आसपास या उससे अधिक है तो अपना बीपी जरूर चेक करवाते रहें। अगर आपका बीपी लगातार 140-90 आ रहा है, आपको सिर दर्द या थकान महसूस हो रही है, तो ये हाइपरटेंशन के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें। 40 की उम्र के बाद रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर स्क्रीनिंग किडनी, हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देती है। बेहतर है कि हाइपरटेंशन को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर दिया जाए ताकि समय रहते प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप स्वस्थ जीवन जी सके। थैंक यू।

0: बिल्कुल वंदना, बस हमें अपनी परेशानियों को ऐसे ही बाय बाय करना है और अपनी जिंदगी को हाय हाय मतलब खुशी के साथ में करना है।
1: हाँ, हाय हाय हाय हाय हाय हाय। और निधि, बात करते हैं, चलो गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं या कुछ बच्चों की हो गई है, तो बच्चों को कैसे टाइम पास बच्चे करेंगे, छुट्टियों को कैसे बिताएंगे, तो हम उनमें कैसे क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का सृजन कैसे करें।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय में यही होती है जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती
1: है, मम्मी पापा की क्लास लगने वाली है ना, तो बच्चों का तो क्या काम है, बस धमाल करेंगे, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला है ना।
0: यस, पाठशाला स्कूल वो वाली तो खत्म हो गई है,
1: मस्ती की पाठशाला 2 महीने की शुरू हुई है तो। लेकिन देखेंगे, हम देखते हैं कि मोबाइल से दूरी इस समय बनाना बहुत मुश्किल टास्क है मम्मी पापा के लिए, मोबाइल मोबाइल हर समय, लेकिन मैं यही कहूंगी कोशिश जरूरी है। तो पुराने तरीके ये होते थे ना निधि, कि हम लोग जब हम ही छोटे थे तो पेंटिंग करते थे, सिलाई कढ़ाई कुछ सीखते थे और
0: मम्मी का हाथ बटा देते थे,
1: बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कुछ चीजें, हाँ ये सब करते थे। लेकिन नए तरीके में ना बच्चे कुछ नए तरीके से नवाचार करना चाहते हैं हर चीज में कुछ ना कुछ, तो हम ये कहेंगे कि बच्चों को नई नई टास्क दी जाए कि आप ये करेंगे, तो हम देखते हैं कि कौन सबसे पहले करता है। इस तरीके से उनको लालच नहीं दीजिए, वरना फिर उनका हर चीज में मन यही करेगा कि कुछ मिले तब हम करें, वो चीज है। तो किसी की मदद करने को कहें, कोई टॉपिक हम दे सकते हैं उन्हें कि आप इस पर कुछ लिखिए इस टॉपिक पर।
0: हाँ, ये तुमने बहुत, बहुत अच्छी बात कही हाँ, वंदना, क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग देखते हैं कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा
1: पुअर हो रही है,
0: पुअर हो गई है, वोकैबुलरी नहीं है, स्पेलिंग एरर्स है ना, और रीडिंग से तो जैसे उनका नाता ही छूट गया। तो अच्छी कॉमिक्स हम लोग के टाइम पे आती थी, आप उन्हें दीजिए कि कितना
1: बहुत मिस करते हैं हम लोग कॉमिक्स को, बहुत मिस करते हैं। और आत्मविश्वास हमको अब बच्चों को बढ़ाना चाहिए कि आप लिख सकते हो, और ड्रॉइंग देखो अब कागज तक सीमित नहीं है, बच्चे वॉल पेंटिंग करते हैं कितने सुंदर सुंदर, तो बच्चों को वो भी
0: करते हैं, लेकिन हमें फोन से दूर भगाना है,
1: फोन से दूर हटाना है, हाँ वो आंखों को भी हार्मफुल होता है आंखों के लिए, तो हमें जैसे वॉल पेंटिंग बच्चे कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज और बहुत अच्छी हो सकती है कि जो उन्होंने अपनी जो टेक्स्ट बुक्स में ही कोई किताब कहानियां वगैरह पढ़ी, उन पर हम उन्हें कोई नाटक लिखने को कहें, उन पर एक्ट
0: अकॉर्डिंग
1: उन पर एक्ट करने को कहें, उन पर डायलॉग लिखने को कहें, देखें वो क्या करते हैं।
0: अच्छा वंदना, पता है जब बच्चों को ये चीज दे दी जाती है तो मैंने देखा वो इतने बढ़िया तरीके से करते हैं।
1: कुछ बच्चे तो बहुत
0: डिजिटल वाली, जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो डिजिटल मतलब इंटरनेट से ही वो बढ़िया बढ़िया नाटक निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से वो ड्रामा करते हैं। और
1: अच्छा, इससे क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर का पता चलता है कि उनकी रुचि आखिर किस में है। जैसे उनको कभी इंटीरियर दे दीजिए घर का कि आज आप इस कमरे में डेकोरेशन करो, देखो आप क्या करते हो, तो देखो आप उनके मन में क्या है, वो क्या करते हैं। और कुछ DIY एक्टिविटीज की, कुछ चीजों से कहीं से जोड़ तोड़ के कुछ बना दिया या कुछ किया, तो बच्चे उसी से क्रिएटिव और हो जाते। तो और आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कहूंगी वंदना की परिवार की जो भूमिका है वो बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल,
0: कि हम लोग कई बार होता है ना बच्चों को डांटते हैं ये क्या कर दिया ये क्या कर दिया, बल्कि अगर आपको उसमें लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, तो पहले अप्रिशिएट कर दीजिए, उनके काम की तारीफ करिए और फिर बच्चे सुनिए,
1: तुरंत बच्चे एकदम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ देखिए ना दोस्तों, हर बच्चा, मैं तो ये कहूंगी, कोरा कागज है, वो किताब है जिसके हर पन्ने पर है अनगिनत सपने कल्पनाएं और उनको पूरा करने का जोश। इन्हें समझिए, इन्हें संवरने दीजिए और खुलकर उड़ने दीजिए।
0: बिल्कुल वंदना, मैं ये कहूंगी कि छुट्टियां केवल ये नहीं है कि बस वक्त बिता देना है, बल्कि बच्चों की क्रिएटिविटी को नया आसमान देने का वक्त है, और वो हम और आप जरूर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी क्रिएटिव बना देंगे तो आप देखिएगा कि उनकी छुट्टियां भी बहुत बढ़िया गुजरेंगी और आपका भी वक्त गुजरेगा बढ़िया, क्योंकि वो आपको काम में सपोर्ट करेंगे। तो जो माएँ बहुत ज्यादा पैक्ड हो जाती है ना छुट्टियों में और कहती हैं बच्चों से,
1: थोड़ा सा हल्का फील करेंगी,
0: वो भी हल्का फील करेंगी और उनका काम आसान होगा, बच्चे भी कुछ नया सीखेंगे।
1: तो फिलहाल जो तरीके हम लोगों ने भले ही जल्दी में बताए हैं, लेकिन जो तरीके बताए हैं उनको आप एक बार करने की कोशिश कीजिएगा।
0: और हम ये कहेंगे कि बच्चों की मस्ती वाली बात है, तो एक बढ़िया सा मस्ती वाला ही गाना बच्चों आपके लिए हम

0: भाई बच्चे तो मस्ती में डोलेंगे ही, गर्मी की छुट्टियां जो आ गई हैं, लेकिन हमारा वक्त निधि प्रोग्राम का होने वाला है कंप्लीट, तो जल्दी से जो तुमने राज बना के रखा हुआ है, कौन सी रेसिपी है वो जल्दी से बता दो भाई।
1: बिल्कुल भाई, आज के लिए मैंने एक बढ़िया सी जो रेसिपी रखी है वो है सत्तू की स्मूदी। सत्तू का इस समय वक्त है और सभी को पता है कि सत्तू कितना फायदेमंद है, वो सब तुम
0: कितना
1: बता
0: ठंडा
1: देना। लेकिन
0: ठंडा
1: मैं अभी बता देती हूँ कि इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा। तो वो बस इतना सा है, आप अपने जितने भी लोग हैं उसके हिसाब से उस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है वंदना कि आपको कितना पतला रखना है या गाढ़ा रखना है, आप अपने
0: बिल्कुल
1: हिसाब से कर लें। लेकिन अगर आप पतला पीते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: आपको बस इतना करना है कि 2 टेबल स्पून सत्तू ले लेना है, वो भी जौ चने का, बहुत
0: बिल्कुल
1: फ़ायदा करता है। ये हम आपको 4 लोगों के लिए बता रहे हैं, इतना क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर लीजिए। और 2 बड़े साइज़ के केले, 2 या 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ आपको 1 टेबल स्पून के करीब सोक्ड ग्राइंडेड ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, तरबूज है, खीरे और खरबूजे के बीजे भी आप ले सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी आप सौंफ भी मिला लीजिए,
0: अरे वाह।
1: तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके अलावा आप खजूर थोड़ा सा डाल सकते हैं, भीगा हुआ 2-3। और भीगे हुए इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, अगर आप उसे भिगोएंगे
0: गर्म
1: नहीं
0: तासीर उसकी निकल जाती
1: तो
0: है।
1: वो आपको ज़्यादा गर्म कर जाएगा इस समय। और सोक कर देने से अगर आप रात भर उसको भिगो देते हैं तो उसकी जो गर्माहट है वो निकल जाती है, लेकिन पोषक तत्व तो उसके बने
0: रहते।
1: रहते हैं। तो खजूर को भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि गर्म हो रहा है। उसके साथ आप शहद ले लीजिए थोड़ा सा, तो वो थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाता है और फ़ायदा भी करता है आपके शरीर को। बाकी अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चाहे उसमें 1 केला बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ भी बढ़िया रहता है, आयरन का बढ़िया
0: क्या
1: स्रोत
0: बात
1: है।
0: है।
1: इसके बाद अब आपको जब आप इसे ग्राइंड कर लेंगे, स्टार्टिंग में सब कुछ इकट्ठा नहीं ग्राइंड करना है, केवल आपको नट्स ग्राइंड करने हैं, सौंफ वगैरह जो आपको बताया है उसे ग्राइंड करना है, क्योंकि आप एक साथ डालोगे तो वो मिक्स नहीं होता है ढंग से, तो
0: हाँ
1: इसलिए पहले उसे
0: बिल्कुल।
1: ग्राइंड कर लीजिए। और इसके बाद अब आपने जो सत्तू बना के रखा है उसको आप चाहे मट्ठे में घोल लीजिए, ऑप्शनल है मट्ठा,
0: अच्छा
1: अगर
0: अच्छा
1: आपको सूट नहीं करता है तो आप मत यूज़ करिए, आप उसमें पानी मिला लीजिए, ठंडा ठंडा पानी मिलाइए और उसको सबको अब इसके बाद आपको एक बारी ब्लेंड कर देना है, मिक्सी में चला लीजिए या आप
0: चला
1: मथानी से चला लीजिए, सबको
0: बिल्कुल।
1: पीस करके एक बिल्कुल फाइन स्मूदी बना लीजिए और फिर आप इसे पीजिए। इतना बढ़िया लगता है कि मैं क्या बताऊं, और
0: अच्छा, और
1: न्यूट्रिशियस
0: दोस्तों,
1: है।
0: हाँ, और दोस्तों अब इसके हम कुछ फायदे आपको गिना देते हैं कि ये जो सत्तू की स्मूदी बनाई है निधि मैडम ने,

0: ख्यालों ख्यालों में ये बहुत अच्छी है डाइजेशन के लिए, और तासीर ठंडी होने की वजह से गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखती है, हीट स्ट्रोक से हमें बचाती है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है इंस्टेंट एनर्जी हमें लंबे समय तक देते हैं, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाते हैं।
1: क्या बात,
0: डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं और कंप्लीट बेहतरीन सुपर फूड है
1: ये तो हम जानते हैं।
0: अगर आप बनाकर पिला देंगी बच्चों को तो आप सुपर मॉम बन जाएंगी।
1: हाँ, सुपर मॉम बन जाएंगे, एंड आई एम श्योर कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो बस वंदना, इसी के साथ हमारा मुझे लग रहा है कि टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम एक गाना अच्छा सा प्ले कर देते हैं, थोड़ा सा।

0: भाई वंदना, देखो पल पल पल पल गुजरते गुजरते बहुत वक्त हो गया है, और मुझे लगता है हमारे सारे सुनने वालों का पल भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। इसी के साथ हम अपने दोस्तों से लेंगे
1: इजाजत
0: इजाजत। तो आज वंदना को और
1: और
0: निधि,
1: निधि को
0: बिल्कुल इजाजत
1: दीजिए
0: दीजिए हम
1: इजाजत।
0: प्रोग्राम से, और सुनते रहिए FM रेनबो कानपुर।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर...

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्ति से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस

लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सीएम ने आज गोरखपुर में बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्थापना काल से लेकर अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में देश में केंद्र के साथ 22 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लगभग 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है। सीएम योगी ने प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा भी की। इस दौरान उन्होंने गोवंश को गुड़ खिलाया और उनकी देखभाल की जानकारी ली। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। प्रदेश में आंधी बारिश थमने के साथ ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। आज सुबह ज्यादातर शहरों में आसमान साफ है। मौसम विभाग ने आज 22 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अभी यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: सेहत सर पर सजे हुए उस ताज की तरह है जिसे सिर्फ एक बीमार इंसान ही देख सकता है, और जब तक वो ताज, वो क्राउन हमारे सर पर है, तब तक हम कभी उसकी कीमत नहीं समझ पाते। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस की डेडलाइंस, बढ़ता तनाव, अनियमित खान पान और बदलती जीवन शैली के बीच एक समस्या बहुत तेजी से हमारे घरों में पैर पसार रही है, जिसका हमें कई बार समय रहते एहसास तक नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की। मेडिकल वर्ल्ड में इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट इसलिए क्योंकि ये बिना शोर मचाए, बिना किसी लक्षण के आती है, लेकिन हमारे दिल, दिमाग, किडनी और शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों पर गहरा असर डाल सकती है। दोस्तों, आज यानी कि 17 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ही यही है कि हम और आप इस साइलेंट किलर के प्रति जागरूक हों, क्योंकि सही समय पर जांच, संतुलित लाइफस्टाइल और सही जानकारी ही इस समस्या से बचाव का सबसे अचूक और प्रभावी तरीका है। तो बस इसी बेहद जरूरी विषय

0: पर आज हम करेंगे एक खास चर्चा, और इस चर्चा में आपको गाइड करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी शंकाओं के समाधान करने के लिए हमने खास तौर पर बुलाया है शहर की प्रख्यात चिकित्सक एवं विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल जी को, जो कि हैं एमडी आंतरिक चिकित्सा। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, यानी कि अगले एक घंटे तक हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस बस आपके लिए खुली हुई हैं। तो अगर आपके मन में भी ब्लड प्रेशर, बार बार होने वाले सर दर्द, अचानक चक्कर आना, घबराहट, बीपी की दवाइयां, खान पान या तनाव से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो बिना किसी झिझक के हमें अभी कॉल करिए। हमारे स्टूडियो के नंबर वही पुराने वाले हैं, 0522-223-8852 एंड 0522-298-2377। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं fmakashwanilakhno@gmail.com पर। याद रखिए, हम लाइव हैं आपके लिए। तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके मन में हैं, जो भी सवाल हैं, आप उनके समाधान के लिए हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली ये हाइपरटेंशन होता क्या है। अक्सर बड़ी कॉमन सी चीज लगने लग गई है, जिससे बात करो ये कहता है भाई हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो ब्लड प्रेशर लो रहना या ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, ये होता क्या है?
1: बीपी जो है, जो ब्लड है वो रक्त कोशिकाओं में बहता है
0: जी।
1: वो एक पर्टिकुलर प्रेशर से जब बहेगा तभी जो हार्ट है उसको सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा पाएगा। मगर जब ये एक निश्चित नंबर से ज्यादा हो जाता है, जिसको गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 130/80 के ऊपर है, जो ऊपर वाला बीपी जिसको नापा जाता है, जिसको पहले लिखते हैं, अगर वो 130 के ऊपर आ रहा है, और जो नीचे वाला बीपी जिसको बाद में लिखते हैं, अगर वो 80 के ऊपर आ रहा है, और एक लंबे टाइम तक ये इतना बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये नियमित मात्रा से ज़्यादा है, जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, और इस पर हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। हमें अपनी लाइफस्टाइल बदल लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना, जो चेंजेस है वो ले आने चाहिए। और अगर ये 140 और 90 के ऊपर जा रहा है तो फिर हमें ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इस पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं हमारे श्रोताओं के और हम ज़रूर इनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पहले कॉलर हैं उनसे आपको कनेक्ट कर रही हूँ, हालांकि हमारे सामने ईमेल्स भी बहुत सारे हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: संजय तिवारी बोल रहे, लखनऊ से बोल रहे हैं
0: जी। संजय जी, अपना सवाल पूछें।
2: डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, हमको आपसे पूछना है कि जैसे जो बीपी जो होता है, जो ये फ्लक्चुएट हो जाता है बीपी, ऐसे बार बार किसी का 130 या 140 या 90 के अबव चला जाता है, तो इसके पीछे क्या कोई डेंजर कारण होते हैं? और दूसरा, ये हार्ट बीट से भी क्या ऐसा कोई रिलेशन है?
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको आजकल जो डिजिटल मॉनिटर्स हैं वो आपको अपने घर पे रखना चाहिए। दिन में सुबह शाम अपना बीपी नापिए, एक हफ्ते तक अपनी बीपी की रिकॉर्डिंग करिए, फिर जो भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीपी 130, 140, 190 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग्स लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए। जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। ये नंबर जरूर आपको अपने पता होने चाहिए। बीपी हमारा अच्छा है अगर 120-80 के नीचे है, 130-180 तक है तो भी हमें चेंजेस पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चीज़ें सही हो सकती हैं। बट अगर बीपी 140-90 के ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि हमें दवाइयों की आवश्यकता हो। ये अच्छा गाइड, क्योंकि इसके लिए बहुत और जांचें भी करनी पड़ती हैं, तो डॉक्टर से, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उससे मिलिए, उनको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करिए। उसके साथ आपको जो दिक्कतें हो रही हो, सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, दिखने में कोई दिक्कत, वो आपको बतानी पड़ेंगी। जो हार्ट रेट बढ़ता है वो भी खुद में एक बीमारी है, उसका भी इलाज होना चाहिए। नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर कॉन्स्टेंटली हमारा हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है तो इसके लिए भी हमें जांचें करवानी पड़ती हैं।
0: तो ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से क्या हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे और जरूर जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्यों बोला जाता है ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर, इस बारे में भी हम जरूर उनकी राय लेंगे। लेकिन फिलहाल जो कॉलर हमारे साथ है उनसे बात करते हैं। हेलो,

0: लालू जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: पहले तो आपसे एक गुजारिश करूं प्लीज, रेडियो से दूर हो जाइए।
1: हेलो
0: जी, अपना सवाल पूछिए और रेडियो से प्लीज दूर हो जाइए। हमारे ये दोस्त, बड़ी मुश्किल से मुझे पता है कॉल मिलता है डॉक्टर साहब, और जरूर कोई ना कोई समस्या होगी तभी इन्होंने कॉल लगाया होगा, लेकिन पता नहीं किस मजबूरी से ये रेडियो से दूर नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमें इनकी आवाज नहीं मिल पाई। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूंगी आप सबसे कि जो भी सवाल आपका है वो जरूर पूछें, हमें फोन मिलाएं, हमें ईमेल करें, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें, क्योंकि इतनी मुश्किल से फोन मिलता है और बात नहीं हो पाती है तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर बढ़े रहने में लोग ये कहते हैं अरे बढ़ाए बढ़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो सकता है, क्या खतरे हैं ब्लड प्रेशर बढ़े रहने के?
2: अगर लंबे टाइम तक हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि हमारी डिमेंशिया जैसी दिक्कत, ब्रेन में लगातार थक्के जम सकते हैं, कभी भी हमें लकवे की शिकायत हो सकती है, नस फट सकती है हमारे दिमाग की, या बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत याददाश्त जाने वाली बीमारियां हो सकती हैं, अचानक से विजन लॉस हो सकता है, हमें दिखना कम हो सकता है क्योंकि जो पर्दे पे वेसल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, हमें नोज ब्लीड हो सकता है, हमें बहुत लंबे टाइम तक भरे रहने पे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी पे बहुत असर पड़ सकता है, लोगों CKD जो बीमारी है जिसमें आगे चल के डायलिसिस करना पड़ता है, किडनी बदलनी पड़ती है, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपका BP लॉन्ग टाइम तक बढ़ा हुआ है। बट अगर हम दवाइयां लें और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, BP को कंट्रोल में रखेंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं।
0: शायद इसीलिए बोला जाता है इसको साइलेंट किलर, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ये तो अब तकरीबन हर घर की प्रॉब्लम है, अरे इट्स ओके, अब तो घर घर में ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, लेकिन ये इतनी भी छोटी बात नहीं है, आपकी बात सुनकर के ऐसा महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, डरने की बजाय, परेशान होने की बजाय, अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो तुरंत हमें कॉल करें 0522-223-8852 और 0522-298-2377, ये हमारे फोन नंबर्स हैं। ईमेल आईडी वही पुराना वाला, fmakashwani@gmail.com। मैं हूं ज्योति और आज खास तौर पर हेल्थ एंड फिटनेस में हमने आपके सवालों के जवाब देने के लिए इनवाइट किया है डॉक्टर कोमल अग्रवाल को, जो कि हैं MD आंतरिक चिकित्सा। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर खास तौर पर हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की। डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
0: आपकी मुस्कुराहट बनी रहे और सेहत की चमक आपके चेहरे को हमेशा दमदमाती रहे, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारे प्रोग्राम जो कि आपके लिए जरूरी हैं। कभी हम आपको एंटरटेन करते हैं तो कभी हम आपको अवेयर भी करते हैं, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाता है। यस फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, एंड लेट अस सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो हेलो, तो फोन लाइन तो मुझे लग रहा है कि कुछ परेशान कर रही है, नेवर माइंड। चलिए डॉक्टर साहब, अशोक कुमार जी का ईमेल है हमारे सामने, रायपुर से है, रायपुर लखीमपुर खीरी से ये लिखते हैं, मुझे घबराहट की समस्या है, नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है और ये प्रॉब्लम तकरीबन 2 सालों से बनी हुई है। डॉक्टर को दिखाया है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उम्र मेरी है 30 साल। डॉक्टर साहब, सिर्फ 30 साल की उम्र में क्या हाइपरटेंशन हो सकता है?
2: हाँ, यंग हाइपरटेंशन आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत

0: स्ट्रेसफुल होती जा रही है, सोने का पैटर्न हम लोगों का बहुत बिगड़ता जा रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लैपटॉप्स पे रहते हैं, तो 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन होना आजकल बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। 40 के नीचे जब हाइपरटेंशन होता है तो उसको यंग हाइपरटेंशन कहते हैं। ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत लंबी जिंदगी है जीने के लिए, और अभी से अगर हमारी रक्त धमनियों पे इतना प्रेशर पड़ेगा तो उनका जल्दी खराब होना, हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आना, हार्ट पे जल्दी इफेक्ट आना, ब्रेन पे जल्दी इफेक्ट आना, ऐसा हो सकता है। इसको और अच्छा लाइफस्टाइल से हमें कंट्रोल करना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है।
1: मतलब ये मत सोचिए कि अगर उम्र कम है तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती। यही कहा जा सकता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के जरूर जो भी वो दवाइयाँ बताएं उनको फॉलो करें, उन्हें जरूर लें। एक और कॉलर हमारे साथ, डॉक्टर साहब हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार
2: जी, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। अपना सवाल पूछें प्लीज, अपना नाम बताकर।
2: जी मेरा नाम शादिया अंसारी है, मेवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं या लेटते हैं या बैठते हैं, हमारा सर एकदम से घूमने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है।
1: उम्र कितनी है आपकी?
2: जी 15 साल।
1: 15 साल की उम्र, खाना खाने के बाद अगर ये लेट जाती हैं तो इनको चक्कर आने लग जाता है। जी
2: खाना खाने के बाद नहीं, अगर खाते हैं या लेटते हैं या बैठते हैं मतलब चक्कर आने लगते हैं।
1: मतलब कभी भी चक्कर आ जाता है?
2: हाँ, सर में दर्द भी बहुत होता है।
0: ठीक है, आपकी उम्र जो है 15 साल की उम्र पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको कमजोरी महसूस होने के। एक बहुत कॉमन कारण औरतों में अनीमिया का हो सकता है, हो सकते हैं कि आपका खून हीमोग्लोबिन अभी कम चल रहा हो, आयरन की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि अभी आपके शरीर में उतने न्यूट्रिएंट्स ना हो, आपका खान पीन उस तरीके से ना हो। इसके लिए आपको अपने कुछ टेस्ट अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाइए, अपने टेस्ट कराइए, कारण पता करिए, अपना बीपी जरूर जांच कराइए। कई बार लो बीपी भी चल रहा होता है, उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, उसके कारण पता करना ज़्यादा ज़रूरी है।
1: तो डॉक्टर साहब, लो बीपी भी क्या इक्वली ख़तरनाक होता है?
0: लो बीपी भी खतरनाक हो सकता है, उसमें चक्कर आना, दिमाग में सही ब्लड का दौरान नहीं होना, ऐसा हो सकता है, बट उसके अपने कारण होते हैं, इतना कॉमन नहीं होता है। वो जनरल दवाइयों के कारण या और किसी एंडोक्राइन कॉज की वजह से होता है। जनरली जो देखने को मिलता है वो हाइपरटेंशन की वजह से ही हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं,
1: ज्यादा दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर साहब, सौरभ का हमारे सामने है ईमेल, अकबरपुर सीतापुर से ये लिख रहे हैं, 1 महीने से सर में दर्द लगातार बना रहता है। सर दर्द क्या एक बहुत बड़ा सिम्टम है हाइपरटेंशन का?
0: जी, सर दर्द एक बहुत कॉमन सिम्टम हो सकता है। अगर आपका कॉन्स्टेंटली सर दर्द बना हुआ है तो ज़रूर, जब भी आपका सर दर्द ज़्यादा हो उस समय बीपी ज़रूर लेना चाहिए, हार्ट रेट ज़रूर नापना चाहिए। एक कारण सर दर्द का बीपी हो सकता है, मगर केवल हम ये नहीं कह सकते कि सर दर्द का कारण बीपी होता है, सर दर्द के और भी अनेक कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है टेंशन हेडेक ही होता है सर दर्द का कारण। अगेन इसके लिए वही है, अपना बीपी कम से कम 1-2 हफ्ते मॉनिटर करें, अगर वो 130-80 के ऊपर लगातार बना हुआ है तो नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और उनके परामर्श अनुसार अपना इलाज कराएं।
1: डॉक्टर विजयपाल यादव का है ललहुआ लखीमपुर खीरी से ईमेल हमारे सामने, और ये पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसकी रोकथाम के लिए घर पर क्या कर सकते हैं? मेरी पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो हमें चुप होना पड़ता है। खैर ये तो अच्छी चीज है विजयपाल जी, मुझे लगता है जब एक को गुस्सा आए तो दूसरा चुप हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आगे ये भी लिख रहे हैं कि नहीं तो फिर उनका बीपी हाई हो जाता है। विजयपाल ललहुआ जिला खीरी, इनको आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इन्होंने रीजन भी पूछा है कैसे रोक सकते हैं, ये भी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए।
0: देखिए बीपी स्ट्रेस की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस है। मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना मानसिक तनाव कम रखना ज़रूरी है क्योंकि ये बीपी बढ़ाता है। तो अगर वो कम गुस्सा करेंगी तो बीपी स्पाइक्स उनके कम आएंगे। बीपी अगर ऑलरेडी उनको है तो दवाइयाँ टाइम से लेनी है। बीपी की रोकथाम के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज करना दिन भर, दिन में खाने पीने में बहुत सारी चीज़ों का चेंज करना, जैसे कि मोटा अनाज खाना चाहिए, बहुत चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है, नमक का परहेज़ करना है, कोशिश करना है दिन भर में 1 टीस्पून नमक जो है बस उतना ही प्रयोग किया जाए, किसी भी चीज़ पे ऊपर नमक बरक के नहीं खाना है। ऐसी चीज़ें जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि सॉस, पापड़, चटनियाँ, इनका प्रयोग कम करना है।

0: फल खाने हैं, फल और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है, ऐसे जो मीट मांस मच्छी ऐसे जो बहुत ज़्यादा बटर में बनते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें होती हैं, इनको कम करना है, एग खा सकते हैं, और अच्छी लाइफस्टाइल है, टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम पूरी नींद लेते हैं तो उससे भी बीपी कंट्रोल होता है, और अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
1: तो इस बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक कॉलर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनसे बात करने के बाद, आपने जिस गाने की फरमाइश की थी जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, उस गाने को मैं पक्का प्ले करूंगी, क्योंकि वादा किया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। हेलो हेलो जी जी नमस्कार, नाम बताएं। जी नाम बताएं और अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब।
2: सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम प्रसंडी कैसरगंज बहराइच से।
1: अपनी उम्र बताकर अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछें।
2: जी मैम, जैसे कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसीलिए तो जब कोई बीमारी का नाम सुनता हूँ ना मैम, तो मैं बहुत डर जाता हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो हाइपोटेंशन है, इससे हम बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, मतलब क्या ना खाएं, क्या क्या कर सकते हैं।
1: जी आपकी उम्र अभी कितनी है?
2: जी मेरी उम्र 18 होने वाली है 2 महीनों के बाद।
1: और अभी आपको कोई समस्या नहीं है, है ना?
2: जी समस्या नहीं है, लेकिन
1: आप चाहते नहीं कि आगे भी समस्या हो, ये हमारी जागरूक श्रोता हैं डॉक्टर साहब।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमें एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम बीमारी को प्रिवेंट कर पाए और बहुत अर्ली एज पे ही अगर हम चेंजेस ला पाए अपनी लाइफस्टाइल में, तो हम इन चीजों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
1: लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, शरीर है, बीमारियां लगी ही रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर को अगर अच्छा खिलाए पिलाएंगे, व्यायाम कराएंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। हमें किसी भी तरीके की नशा पत्ती को कम से कम रखना है या ना करना है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है, नमक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, तो हमें नमक का परहेज करना है, खाने में कम से कम उपयोग करना है। अगर हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जितना हम चलेंगे उतना ही हमारा हार्ट चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक कहीं बैठना नहीं है, अगर हमारा सिटिंग जॉब है तो हमें बीच बीच में उठ के वॉक करना है, और अच्छे खाना पीना खाना है।
1: तो आगे भी हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आजकल कम उम्र में ये समस्या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। सवाल ढेर सारे हैं, कॉलर्स लगातार हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ईमेल्स भी हमारे सामने ढेर सारे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने दिल दिया गल्ला ये गाना सुनने की फरमाइश की है फिल्म सुल्तान से, कोई खास वजह इस गाने को सिलेक्ट करने की?
0: नहीं, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माई हस्बैंड।
1: तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब के बेटर हाफ इस प्रोग्राम को जरूर सुन रहे होंगे और इस डेडिकेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का गाना हम सबके रेडियो सेट पर।
3: में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:34 और 43 सेकंड्स हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। मैं हूं ज्योति और आज खास तौर पर आपके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर कोमल अग्रवाल को हमारे स्टूडियोज में। डॉक्टर कोमल अग्रवाल आज बात कर रही हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई शंकाएं हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो सोच कह रहे जल्दी से हमें फोन मिलाइए 223-8852 एंड 298-2377। ये हमारे फोन नंबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं या लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इन नंबर से पहले लखनऊ का कोड 0522 ऐड करना होगा और ईमेल आईडी वही पुराना एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने कॉलर से बात करें, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी कम उम्र में आजकल इतनी समस्याएं क्यों होने लगे हैं? क्योंकि पहले, बहुत पुरानी भी बात नहीं है ये, पहले ये सोचा जाता था कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसकी उम्र तो होगी कम से कम 40+ उसकी एज होनी चाहिए। तो ये उम्र आजकल मतलब कोई क्राइटेरिया रही नहीं है, इसकी क्या वजह है?
3: जी ज्योति जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम मानते थे कि 40 के बाद जनरली बीपी बढ़ता है, मगर आजकल बहुत यंग 20-30 साल के बच्चे भी हमारे पास बीपी लेकर आने लग गए हैं। अगेन प्रॉब्लम लाइफस्टाइल का है। खाना आजकल पैकेज फूड बहुत ज़्यादा है, बाहर का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। लोग घर का बना हुआ खाना, कम तेल मसाले का खाना, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, इनको अवॉइड करते हैं। मैदा, नमक, खूब तेल।

0: बटर वाला खाना खा रहे हैं, ये व्यायाम कम किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम बेड पे केवल फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कर रहे हैं, तो वो जो घंटे हम केवल लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम ला रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, हम वॉक नहीं करते हैं, हम
1: और
0: लिफ्ट
1: ये
0: का यूज़
1: फोन फोन भी मतलब एक बहुत
0: बहुत
1: बड़ी
0: बड़ी
1: चीज़ है। मतलब
0: प्रॉब्लम की तरह सामने
1: जो
0: आ रहा
1: मम्मी
0: है।
1: कहती है कि तुम्हारा फोन सारी प्रॉब्लम की जड़ है, वो सही
0: वो
1: कहती है।
0: बिल्कुल सही कहती हैं कि तबीयत जो आजकल बीमारियां हैं वो उसी वजह से हैं। पहले बच्चे बाहर जाके खेलते थे, अब बच्चे बहुत यंग एज से फोन पे लगे रहते हैं, तो जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो पहले लोग वॉक करते थे, स्टेयर्स चढ़ते थे, वो सब कम हो गया है। अब क्योंकि खाने पीने में भी हम हेल्दी नहीं खा रहे और लाइफस्टाइल भी हमने बहुत सेडेंट्री कर ली है, इसलिए बहुत जल्दी हमें ये बीमारियां जो हैं वो लगने लग गई हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया फोन, तो फोन किस तरह से इफेक्ट करता है? बाहर नहीं जाते हैं हम खेलने के लिए, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, ये तो एक वजह है। क्या कोई और भी तरीके से ये हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है?
0: जो फोन से रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारे हार्मोनल मिल्यू को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। जो हार्मोन्स हमको टाइम के हिसाब से आते हैं उनका बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। स्पेशली कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ता है फोन से, जो रील्स देखी जाती हैं, जो वीडियोस देखे जाते हैं, जो स्ट्रेस उससे क्रिएट हो रहा है, और ये हमारा बीपी बढ़ाने में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है।
1: तो फोन, जिसके लिए मम्मी कहती है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की जड़ ये फोन ही है, तो दरअसल मम्मी गलत नहीं कहती हैं। और आज तो डॉक्टर साहब ने भी इस पर मुहर लगा दी, कुछ भी करिए लेकिन लिमिट के अंदर, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी कभी भी लिमिट के बाहर नहीं जाएंगी, ये हम उम्मीद करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं अल्तमस बोल रहा हूँ, लखीमपुर खीरी से।
1: जी, अपना सवाल पूछे।
2: मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं जब सोता हूँ तो मेरा सर बहुत दर्द करने लगता है, ऐसा लगता है कि सर पर कोई बोझ आ गया है, और बाहर जाओ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: और आप हैं अभी कितने साल के?
2: 16 साल के हैं।
1: 16 साल के हैं, जब घर में होते हैं, सोकर उठते हैं तो लगता है सर पर कोई बोझ है, थोड़ी देर के बाद अपने रूटीन में जब आप आ जाते हैं तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, राइट?
2: जी
1: डॉक्टर साहब, सो करके उठने के बाद सर दर्द या चक्कर आना, ये काफी कॉमन सी चीज है, क्या इसका भी ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन है?
0: रिलेशन हो सकता है, मगर 16 साल की एज पे अगर ये कंप्लेन आ रही है तो हम पहले और कॉजेज रूल आउट करेंगे। जनरली वही मैंने कहा कि टेंशन टाइप, हेडेक, माइग्रेन, पहले इन सब चीज़ों को रूल आउट करना पड़ेगा। बीपी 16 की एज पे बहुत कम है, ना हो सकता है ऐसा नहीं है, मगर इस एज पे ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक होना थोड़ा सा अनकॉमन है।
1: तो आप, यही आपसे गुजारिश है कि जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो वहां जाकर के आप अपना परीक्षण जरूर कराएं। डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं हमारे साथ, कई सारे ईमेल्स भी हैं और हम डेफिनेटली इनसे बात करेंगे, ईमेल्स भी पढ़े जाएंगे, लेकिन एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: डॉक्टर साहब, ऋषभ का ईमेल है हमारे सामने, बर्रा कानपुर से लिख रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क वॉट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन एट एनी एज। तो आपने हालांकि सिम्टम्स बताए हैं पहले, लेकिन शायद इन्होंने मिस कर दिए, तो डॉक्टर साहब अगर आप संक्षेप में सिम्टम्स और रीजंस दोनों को बता सकें।
0: सिम्टम्स में आपको सिर दर्द हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों से धुंधला दिख सकता है, आपको नाक से खून आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, कमर में बहुत सीवियर दर्द हो सकता है, यूरिन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ज़रूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: मतलब आपको महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है शरीर में, कुछ
0: बहुत थका महसूस होगा, सीने में धड़कन तेज महसूस हो सकती है, इस तरीके की अगर चीजें महसूस हो रही हैं।
1: तो ऐसे में बोला जाता है कि लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी अगर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। मोनू से जी का ईमेल है, डॉक्टर साहब अमेठी से लिख रहे हैं कि नमक और बीपी दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं? क्यों, और नमक आयोडीन की जगह सेंधा नमक खाना कितना सही है, क्या बहुत मेहनत करने वालों को भी बीपी जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि आपने कहा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हम तो यही सुनते थे कि मेहनत करके जो पसीना बहाते हैं उन्हें बीपी शुगर जैसी बीमारियां नहीं आती हैं, क्या खान पान में बदलाव की वजह से ये समस्या है। तो डॉक्टर साहब, दो तीन सवाल हैं, नमक और बीपी का कनेक्शन कितना है, और सेंधा नमक खाने से क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं बीपी, पहले हम इस सवाल को लेते हैं।
0: नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयोडीन का सोर्स हमारा वाइट टेबल सॉल्ट होता है, तो हम उसको पूरा एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए डाइट से। पॉइंट है, हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करना है नमक को। तो जो एडवाइस है वो है कि एक टीस्पून, जो छोटी चम्मच होती है, उतना नमक हमें दिन भर में लेना है। और उसमें जब हम एक छोटी चम्मच नमक लेते हैं तो सोडियम लगभग 2.5 ग्राम तब भी हमारे शरीर में जाता है। उस इसको कम करने के लिए किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने बोला था, ऊपर से नमक अलग से नहीं डालना है, जितनी भी चीज़ों में कम नमक यूज़ करना है। सेंधा नमक में सोडियम का मात्रा कम होती है, उसको यूज़ किया जा सकता है, मगर टेबल सॉल्ट अगर बिल्कुल हटाएंगे तो आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो मिला के दोनों नमक को यूज़ किया जा सकता है आधी आधी मात्रा में।
1: और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि जो मेहनत करते हैं क्या उनको भी बीपी और शुगर जैसी बीमारी हो सकती है?
0: देखिए, जो मेहनत करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको होने के चांसेस कम होते हैं, मगर फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। जेनेटिक कॉजेज होते हैं, पेरेंट्स को है तो बच्चों में होने के बहुत कॉजेज हैं, एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, इन कारणों से उन लोगों को भी हो सकता है, बट चांसेस कम होते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है ये कि हम लाइफस्टाइल का ध्यान रख के इन समस्याओं को दूर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। ये सोचना कि नहीं, हम मेहनत करते तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ये ठीक नहीं होगा, है ना
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो।
5: हेलो
1: जी, नमस्कार।
5: जी मैम, नमस्कार।
1: कौन बोल रही हैं?
5: मैम, मैं निशा बोल रही हूँ, लखीमपुर खीरी से।
1: निशा जी, क्या सवाल है आपका?
5: मैम, मेरा सवाल ये है कि एक साल से उनको फीवर होता है, मतलब हम सुबह दवा ले आए, खा लिए, पूरा दिन उतर गया, उसके बाद मैम फिर आ जाते हैं, मतलब बहुत दवा कर चुके हैं मगर फायदा नहीं।
1: उम्र कितनी है आपकी?
5: जी मैम, 30।
1: और कोई टेस्ट कराए?
5: मैम, कराया तो बोले कि तुमको बसेरू बुखार है।
1: ओके, तो डॉक्टर साहब, बार बार बुखार आ जाना हमारी, मैं समझ रही हूँ कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर आप हमारी इन कॉलर की मदद कर सकें कुछ।
0: निशा जी देखिए, अगर आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार आ रहा है, तो पहली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि थर्मामीटर से आपको बुखार दिन में कम से कम 3 से 4 बार, स्पेशली जिस समय आपको महसूस होता है, उसको लेके डॉक्यूमेंट करना है। अगर ये बुखार आपका 100 के ऊपर, 101 के ऊपर जा रहा है, तो लग के किसी अच्छे चिकित्सक से मिल के आपको एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मतलब जो जांचें की जाती हैं ऐसे केस में, उनको कराना है, ताकि उसका कारण पता चल सके और उसका निवारण हुआ जा सके।
1: तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और बिल्कुल लाइटली मत लीजिए निशा जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, लेकिन इनसे बात करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 गाने तो आपको ज़रूर सुनाऊंगी, तो चलिए अब बारी आपकी पसंद के दूसरे गाने की। इससे पहले कि मैं ये सॉन्ग प्ले करूँ, शोर मूवी का सॉन्ग, आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ माय लाइफ।
1: ओके, तो आपकी जिंदगी का दर्शन इस गाने के जरिए हम सब तक पहुंचने वाला है। सुनते रहिए, 12:45 और 20 सेकंड हो चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, मैं ज्योति आपके साथ, और आज खास तौर पर आपके लिए, जी हां आप ही के लिए, हमने इनवाइट किया है जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल को हमारे स्टूडियोज में, जो कि जवाब दे रही है आपके सवालों के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर। हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे जुड़ी हुई क्वेरीज को वो सॉर्ट कर रही हैं, सॉल्व कर रही हैं। तो फोन मिलाते रहिए, ईमेल करते रहिए, अभी भी काफी वक्त है हमारे पास।
6: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
7: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
6: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
7: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: 12:50 और ये लीजिए 51 मिनट हो गए हैं। आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हमने बुलाया है एक बहुत ही खास शख्सियत को, जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल आज हमारे साथ स्टूडियोज में है और ये बात कर रही हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो बिना संकोच, बिना झिझक, बिना हिचक हमसे कनेक्ट होइए और अपने सवालों के जवाब डायरेक्टली डॉक्टर साहब से लीजिए, बिल्कुल इनकी तरह। हेलो हेलो हेलो। तो हमारे ये कॉलर, मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत देर तक इंतज़ार करा दिया तो कहीं चले गए हैं, दोबारा ज़रूर कनेक्ट होंगे ये पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे नंबर्स अभी भी याद नहीं हुए तो अब नोट कर लीजिए 2238852 and 2982377। ये हमारे स्टूडियोज के नंबर्स हैं और fmakashwani@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। MK राज का है ईमेल।

0: रमेश कुमार भानपुर हरवा लखीमपुर खीरी से इन्होंने लिखा है कि बीमारियां तो इंसान को कभी ना कभी घेरी लेती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लापरवाही करें। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के दौर में मोबाइल इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, इसके फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी कम नहीं। मेरा सवाल बीपी के मरीजों को लेकर है, क्या शर्ट के सामने वाली जेब में मोबाइल रखना या फोन आने पर तेज रिंगटोन का अचानक बजना उनके लिए घातक हो सकता है अगर ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है? इस विषय में कृपया मेरी शंका का समाधान करें।
1: फ़ोन को अपने बहुत पास में रखना और अचानक से जब बहुत तेज़ रिंगटोन बजती है तो बॉडी एकदम से स्ट्रेस में आ जाती है, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स निकलते हैं और बीपी भी शूट हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि हमें फ़ोन रात में अगर हम रिंगटोन कम कर सकें और नॉर्मल डेज पे भी डे टाइम में भी हम रिंगटोन कम रखें, फ़ोन को थोड़ी दूर पे ही रखें, जैसे पहले लैंडलाइन रहते थे हमसे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस हमारी बॉडी पे कम करेगा और बीपी कम हो सकता है।
0: सौम्या का ईमेल आया है डॉक्टर साहब लखनऊ से, ये जानना चाहती हैं कि क्या ब्लड प्रेशर की दवा अगर एक बार खानी शुरू कर दी तो जिंदगी भर खानी पड़ती है? अब अगर मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो मैं क्यों दवा कंटिन्यू करूं? एक सवाल इन्होंने और भी पूछा है कि हर दवा की तरह ब्लड प्रेशर की दवा के भी कुछ तो साइड इफेक्ट होते ही होंगे, तो डॉक्टर ये क्यों कहते हैं कि इस दवा को छोड़ना नहीं चाहिए?
1: देखिए, हमेशा हमारा बेनिफिट हम देखते हैं, अगर दवाइयाँ खाने से ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू जो उससे एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो हमें दवाई खानी है। कभी भी डॉक्टर आपसे ये नहीं कहते कि आपको केवल दवाई खानी है, वो हमेशा आपको सिखाते हैं आपको साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करने हैं। अगर आप उस हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने पर ध्यान रहेंगे, नमक वगैरह कम करेंगे, कम नशा पत्ती करेंगे और बीपी को अपने कंट्रोल्ड रेंज में रखेंगे तो आपकी दवाइयाँ कम भी हो सकती हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको उतना ही दवाई खानी है, मगर मॉनिटरिंग करना, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना, रेगुलर फॉलोअप में रहना, इसकी जरूरत है।
0: मतलब कम हो सकती है लेकिन खानी है।
1: दवाइयां कहीं पर बंद भी हो सकती हैं, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर पाते हैं। जनरली लोगों का इतना लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस हैं, दिक्कतें हैं या और सारी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज वगैरह, तो बिल्कुल बंद तो नहीं हो पाती है बट कम जरूर हो सकती है दवाइयां।
0: और अपने आप तो बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए,
1: अपने से कभी भी दवाई बीपी की नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि एक एपिसोड अगर बीपी का 180 200 को पहुंच जाएगा तो उसमें बहुत जानलेवा चीजें जैसे कि शरीर में फालिश मारना, हार्ट अटैक आना, ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जो कि जानलेवा होती हैं। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही दवाई को बंद करें या कम करें।
0: तो साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें डॉक्टर साहब?
1: देखिए, दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं होता है। जनरली दवाइयाँ जब अप्रूव होती हैं तो FDA अप्रूव जब भी होती हैं तो इस तरीके से होती हैं कि उनके मिनिमम साइड इफेक्ट हो। जब डॉक्टर आपको लिखता है कोई अगर स्पेशल साइड इफेक्ट होता है तो उसके बारे में आपको अवगत कराया जाता है, और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बॉडी को इतना नुकसान करे। जो बीपी आपको कर रहा होगा उससे तो कुछ फ़ायदा ही पहुँचा रही होंगी।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रही है। हेलो हेलो,
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना और अपना सवाल पूछिए।
2: ग्राम पुराने छल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे दीदी।
0: गगनदीप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब इंतजार कर रही हैं।
2: दीदी, पीछे सर के पीछे तरफ दर्द होने लगता है, एक क्या समस्या हो सकती है?
0: आपकी एज कितनी होगी गगनदीप जी?
2: 24 साल।
0: 24 साल की उम्र है, सर के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है।
1: जनरली जब सर के पीछे दर्द होता है तो सर्वाइकल के पेन का रेडिएशन ज़्यादा होता है। सर्वाइकल के पेन, अगर गर्दन में भी दर्द साथ में है, हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं है, हमारे सोने का ढंग सही नहीं, हम ऊंचा तकिया लगाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस वजह से मांसपेशियों का दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा होता है और वो जो दर्द होता है वो बैक ऑफ द हेड में रेडिएट कर सकता है। बट इसके और भी कारण हो सकते हैं। अगेन, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए और जांचें कराइए, कुछ एक्सरे कुछ स्कैन की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि क्या कारण है।
0: तो हर सर दर्द बीपी की वजह से हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है गगनदीप जी, ये किसी और वजह से भी हो सकता है और सही वजह तभी पता चलेगी जबकि आप प्रॉपर जांचें कराएं, चेकअप कराएं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार,
0: नाम बताएं अपना और अपना सवाल पूछें।
3: जी, हम यूपी से, उत्तर जिला सीतापुर से, उत्तर गांव से उसामा बोल रहे हैं। हमारी जो मैम मोम है उनको सर दर्द करने लगता है काफी ज्यादा।
0: कितनी उम्र होगी उनकी और किस वक्त पर सर दर्द होता है?
3: जिनकी होगी लगभग

0: 55 साल।
1: अच्छा, और किस वक्त सर दर्द होना शुरू हो जाता है?
0: जी
1: किसी खास वक्त पर सर दर्द होता है या हर वक्त होता रहता है?
0: अचानक ऐसे कभी कभी सर दर्द करने लगता है।
1: सर के कौन से हिस्से में दर्द होता है?
0: पूरे सर में दर्द होने लगता है।
1: 55 साल की उम्र और सर दर्द अक्सर हो जाता है डॉक्टर साहब?
2: जैसे मैंने पहले भी बताया, सर दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं जिसमें बीपी एक कारण है। तो बीपी जरूर अपना नपवाएं, अगर बीपी कारण है तो उसकी दवाइयां लें, बट उसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, आंखें कमजोर होना, चश्मा ना इस्तेमाल करना, ये एक बहुत कॉमन कारण हो सकता है। इन सब की जांचें कराएं अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलकर।
1: लेकिन क्योंकि 55 ईयर्स एज है मैडम की, तो हम ये जरूर
2: बीपी जरूर अपना जांच कराएं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसका भी इलाज करवाएं।
1: डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे कॉलर से।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: और डॉक्टर साहब अब हमारे साथ कौन फोन लाइन पर हैं, चलिए जानते हैं। हेलो हेलो,
5: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून, कौन बोल रही हैं?
5: और डॉक्टर मैम को भी गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून,
5: शमा परवीन बात कर रहे हैं, पचानापुर जिला सीतापुर से।
1: जी शमा
5: मैम, मुझे ये दिक्कत है, सर में दर्द रहता है हमेशा पूरे सर में, और जब उठ के चलते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, पूरा अंधेरा सा छा जाता है आंखों के सामने।
1: शमा आप कितने साल की होंगी, कितनी उम्र होगी आपकी?
5: 18 साल।
2: शमा जी देखिए, 18 साल पे अगर सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो अगेन मैं कहूंगी कि बीपी एक कारण हो सकता है, उसको जरूर रूल आउट करें। बट क्योंकि आप 18 साल के हैं, इसका कारण कमजोरी, शरीर में आयरन की कमी, विटामिन्स की कमी भी हो सकती है, आपको जरूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, अपना बीपी नपवाना चाहिए, और जैसा भी आपके रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से आपको अपना इलाज कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि अगर उनके जीवन में ऑलरेडी ये समस्या आ चुकी है हाइपरटेंशन की, तो वो समझ पाए कि ये प्रॉब्लम्स हाइपरटेंशन की वजह से हो रही हैं। अगर नहीं आई हैं तो वो कैसे दूर रह सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि वो खुद कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो सीधी सीधी सी बात कहें तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हेल्थ मंत्रा क्या होना चाहिए आज के वक्त, जबकि ऑलरेडी इतनी टेंशन है लाइफ में। तो ये तो कहना ही बेकार है कि भाई टेंशन मत लो, आराम से बैठो, कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपसे हेल्थ मंत्रा जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: तो इस ब्रेक पर जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा था, डॉक्टर कोमल अग्रवाल से, जो कि जानी मानी विशेषज्ञ हैं, उनसे ये जानना चाहा था कि किस तरह से हम जाने कि हाइपरटेंशन ने ऑलरेडी हमारी लाइफ में नॉक नॉक कर दिया है, दस्तक दे दी है, और अगर ऑलरेडी वो आ गया है हमारी लाइफ में तो क्या हेल्थ मंत्रा है, किस तरह से हम कंट्रोल में रख सकते हैं इस बीमारी को। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को?
2: हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ। तो अगर हमें अपने हार्ट को बचाना है, अपने सारे ऑर्गन्स को अच्छा रखना है, तो हमें अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, आँखों में देखने में दिक्कत, कभी नाक से खून आना, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी दिक्कतें हैं, धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होना ऐसा लगता है, तो हमें अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाके अपना बीपी ज़रूर मेजर करवाना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको कहते हैं अपने खान पान पे ध्यान देना है, नमक की मात्रा कम करनी है, शराब सिगरेट को छोड़ना है, अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, वज़न ज़रूर अपना घटाना है, वज़न घटने से बीपी पे बहुत असर आता है, और अगर हमारी दवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमको अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी है और डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप पे रहना है।
1: डॉक्टर साहब, आपके साथ जो आज चर्चा हुई, इससे मुझे लगता है कि इसका क्रक्स यही है कि स्वास्थ्य

0: के प्रति जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और डॉक्टर के पास जाने में उनकी सलाह लेने में हमें हिचकना बिल्कुल भी नहीं है। संतुलित खान पान, नियमित व्यायाम, तनाव से थोड़ी सी दूरी और समय समय पर जांच, ये वो छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हमें साइलेंट किलर से थोड़ा तो दूर जरूर रखेंगी। और शो के अंत में एक छोटा सा विचार जिसे मुझे लगता है श्रोताओं आप सबको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। जो इंसान आज अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल सकता, उसे आने वाले कल में अपनी बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ता है, तो फैसला बस आपका है। डॉक्टर कोमल अग्रवाल जी, आपने अपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और इतनी सरल भाषा में हमारे श्रोताओं की शंकाओं का समाधान किया, इसके लिए आपका पूरे एफएम रेनबो परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद।
1: थैंक यू ज्योति जी।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया एफएम रेनबो लखनऊ से। स्नेहिल मार्गदर्शन रहा सुश्री सुमोना एस पांडे जी का, जो कि हमारी कार्यक्रम प्रमुख हैं। प्रोड्यूसर श्री कुंवर बहादुर सिंह जी और विशेष सहयोग के लिए खास तौर पर धन्यवाद विनय कुमार जी को। अगले रविवार फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमारा संदेश यही है कि स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो लखनऊ 100.7 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। सहजन व विधानसभा क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्थापना काल से लेकर अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में देश में केंद्र के साथ 22 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है। सीएम ने कहा कि भाजपा देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। जिला प्रशिक्षण वर्ग से पहले सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में 150 लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। जौनपुर जिले में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष तैयारियां की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड आरक्षित किया गया है। इसके अलावा जिले के सभी 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी वार्ड तैयार कर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से दोपहर में अनावश्यक

बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील की है। चित्रकूट जिले के ग्राम पंचायत बरगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और यूपी नेडा ने समन्वित प्रयासों से जिले की सभी 350 ग्राम पंचायतों में से सबसे पहले बरगढ़ का चयन पूर्ण सौर ऊर्जा युक्त सोलर विलेज के रूप में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा ग्राम बरगढ़ में सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले जागरूक नागरिक श्री नसीमुद्दीन को सम्मानित कर उनके प्रेरणादायी प्रयास की सराहना भी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

श्रोताओं, थोड़ी देर में हम आपको लिए चलेंगे अपने लखनऊ केंद्र के समाचार कक्ष में और आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाले इस अमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में खुदशुमारी का डिजिटल फॉर्म भरा। वजीर आला ने रियासती आवाम से इस अमल में शराकत दारी दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि यह मुल्क की पहली मुकम्मल तौर से डिजिटल मरदमशुमारी है। इसका खास मकसद सही एदादोशुमार जुटाकर मुल्क की तरक्की और बहबूदकारी स्कीमों की आउटलाइन तैयार करना है। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड CBSE ने तालीमी सेशन 2025-26 के दर्जा 12 के बोर्ड इम्तिहान के नतायज के ऐलान होने के बाद तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का ऐलान किया है। बोर्ड ने इस मरतबा तशखीस के अमल को और ज्यादा सही और शफाफ बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है।
0: CBSE ने 1 जुलाई से दर्जा 9 के तुलबा के लिए 3 जुबानों की पढ़ाई लाजमी करार दी है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और कौमी स्कूल तालीमी निसाब 2023 के मुताबिक इन 3 जुबानों में से कम 2 हिंदुस्तानी ओरिजिन की जुबानें होनी चाहिए। CBSE ने वाजह किया है कि दर्जा 10वीं में तीसरी जुबान R3 के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और R3 के लिए मुकम्मल तशखीस पूरी तरह से स्कूल पर मबनी और इंटरनल होगी। दिल्ली NCR की तरह उत्तर प्रदेश में भी SCR तैयार हो रहा है। UPSCR के डेवलपमेंट प्लान के तहत कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर बनाने और रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट का वसी खाका लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी में मुशीर एजेंसी ने दिया है। इसमें नयागंज कानपुर, उन्नाव बशीरतपुर, नवाबगंज बंथरा, अमौसी लखनऊ, सुशांत गोल्फ सिटी, जुग्गौर बरेल, सफदरगंज भिटरिया और अयोध्या में स्टेशन की तजावीज है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। NCRTC और उत्तर प्रदेश हुकूमत मिलकर मुश्तरका तौर से इस पर आगे काम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल बांटेंगे। ये इस महाना रेडियो प्रोग्राम की 134वीं कड़ी होगी। और महकमे मौसमियात के कयास के मुताबिक मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते रियासत में दस्तक देगा। इस साल मानसूनी सीजन में मामूल से कम बारिश के इम्कान है। महकमे आबपाशी और आबी वसायल की जानिब से रियासत के सभी 18 डिवीजनों में 31 मई तक सैलाब कंट्रोल रूम कायम करने के अहकाम दिए गए हैं। सैलाब और मुतासर इलाकों की निगरानी के लिए ये कंट्रोल रूम 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और

0: यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर। शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
6: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
8: जी मुस्कुराते रहिए और इतराते भी रहिए कि आप इस शहर में हैं। वैसे अगर आप इस शहर में नहीं भी हैं तब भी आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, तो ये भी प्राउड फील करने की एक वजह तो है ना। प्रोग्राम का नाम HPTB यानी कि होटल पे तेरी बात। मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी सुपर पावर हासिल करना चाहेंगे। हमें ईमेल करिए और बताइए अपने दिल की बात।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: जी, मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि आप, अगर आपको कोई भी सुपर पावर मिले तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे। तो मेरे सामने है रागिनी का ईमेल और वो कह रहे हैं कि पहला ईमेल है मेरा आप तक जो पहुंचा, और अगर मुझे सुपर पावर मिलती तो मैं उस सुपर पावर को हासिल करती कि मैं जब कभी भी कॉल करूं रेडियो FM पर तो हर बार फोन मिल जाए, और जब भी मैं मैसेज भेजूं तो वो मैसेज भी पढ़ा जाए। और स्वीट, दैट्स एक्चुअली वेरी स्वीट, लेकिन उसके लिए आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, हम यूं भी कोशिश करते हैं कि हमारे सारे कॉलर्स के कॉल लें और सारे मैसेजेस को पढ़ा जाए। कभी कभार ऐसा मिस हो जाता है जब बहुत सारे कॉल्स एक साथ होते हैं, लेकिन वो कम होता है ना। तो भाई, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं। एंड यस, ये जरूर बताइए कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी सुपर पावर आप लेना चाहेंगे।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
5: 1:30 और 25 सेकेंड हो गए हैं और ज्योति ने आज आपसे HPTB यानी कि होटो भी तेरी बात में ये जानना चाहा है कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले, मतलब आपके सामने अगर ईश्वर आ जाए आपसे कहें कि क्या इच्छा है बच्चा, तथास्तु बोलने को मैं बिल्कुल तैयार हूं, तो आप क्या मांगेंगे? बड़े स्वीट स्वीट से ईमेल्स आ रहे हैं मेरे सामने। रामेश्वर जी ने लिखा है कि बस हमारा ईमेल शामिल हो जाए। रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, बधाई निशा कठेरिया, मुंगीसापुर कानपुर देहात से। कितने मतलब सिंपल और कितने स्वीट हैं आप सब। विजय पाल यादव ने ललहुआ लखीमपुर खीरी से लिखा है, हमें बस FM रेनबो में आप सबकी आवाज सुनने को मिलती रहे और कुछ नहीं चाहिए, ललहुआ जिला खीरी से। इतना सेल्फलेस जब प्यार आप सबसे मिलता है तो सच कह रही हूँ, एकदम दिल भर आता है। रामराज, राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज शंकर भैया की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से ईमेल आया है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि आज का सवाल क्या है। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम सभी ने कभी सोचा होगा ना कि जैसे हम कहानियों में सुनते हैं ना कि हमने कुछ बड़ा अच्छा काम किया और एकदम से ईश्वर हमारे सामने प्रकट हुए और हमसे कहने लग गए मांग लो कोई भी वरदान बच्चा, मांग लो। तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या वरदान मांगना चाहेंगे, क्या सुपर पावर आप चाहेंगे, जल्दी से हमें ईमेल करके बताइए। ईमेल आईडी वही पुराना।

ना fmakashwanilakhnow@gmail.com प्रोग्राम का नाम HPTB यानी होठों पे तेरी बात, जिसमें होती है मेरी आवाज लेकिन बस आपके जज्बात आपके अल्फाज। तो जल्दी से हमें ईमेल करिए और मैं ज्योति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आपके ईमेल्स का।

0: cabeça, que a boteca diz de cabeça, que a boteca diz de cabeça, que a boteca diz de cabeça.
1: भई ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी अगली ईमेल सेंडर ने बोला है। मिनिता जैन ने लिखा है कि भाई सच बोलूं तो अगर मुझे कोई सुपर पावर मिले तो मैं ये सुपर पावर चाहूंगी कि मैं जब जितना चाहूं उतना पैसा मेरे सामने आ जाए।
0: क्या बात है, क्या चीज है पैसा।
1: पता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये सुपर पावर बड़ी कॉमन होगी तो मनी इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा, है ना? लेकिन हाँ, मजेदार सुपर पावर होगी। तो ये तो सोचना है इनका, आपका क्या सोचना है? अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी वो खास शक्ति, कौन सी वो पावर आप हासिल करना चाहेंगे, मुझे ईमेल करके बताइए। ईमेल आईडी हमारे स्टूडियोज का वही पुराना fmakashwani@gmail.com। मेरा नाम ज्योति, प्रोग्राम का नाम HPTV यानी कि होठों पे तेरी बात, और चैनल आपका पसंदीदा यानी कि FM रेनबो।
0: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: तो जी 1:41 हो चुके हैं और 7:08 अभी भी आपके पास वक्त है, जल्दी से मुझे ईमेल करिए और मुझे बताइए कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो आप कौन सी वो खास शक्ति हासिल करना चाहेंगे। मुनेश कुमार गांव भानपुर हरोबा जिला लखीमपुर खीरी से ईमेल कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है, नाम है सुपर पावर, कार्यक्रम है बेमिसाल, ज्योति मैम आपका शो भी है कमाल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लिखा है, अगर मुझे कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं भ्रष्टाचार को बैन कर दूंगा और दुनिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये जो सुपर पावर है इससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया भर को फायदा होगा, है ना। बसंत कुमार सिन्हा शॉ लिखते हैं, अगर मुझको सुपर पावर मिले तो मैं गांव गांव में रेडियो स्टेशन का विस्तार करना चाहूंगा ताकि किसानों को खेती करने की नई नई बातें बताई जा सके, सभी गाँव वालों को रेडियो का

जा सके, मनोरंजन भी प्राप्त हो सके। हर गांव में स्कूल कॉलेज, नई सड़क की व्यवस्था करने की सोचूंगा। वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, अनिरुद्ध बाबू। कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो दुनिया के बारे में सोचकर चलते हैं। वकील अहमद साहब ने लिखा है कि अगर सुपर पावर मुझे मिली तो मैं सबकी मदद करना चाहूंगा। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर साहिबा, अंसारी, साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, इन सब ने मिल करके ये बात बोली है। महेंद्र देपन का ईमेल है, जिला नागौर, गांव रूड़, राजस्थान से। उन्होंने लिखा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, अगर भगवान सामने आ भी गए तो सिर्फ इतना सवरदान मांगूंगा कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु हैं उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि जब आपके जैसे श्रोता हैं जो इतने सेंसिटिव हैं, इतने कंपैशनेट हैं, इतने एम्पैथेटिक हैं, तो वाकई कितनी खूबसूरत ये दुनिया है। और कभी कभी हम छोटी सी बात हो जाती है और इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लोग ऐसे हो गए, लोग वैसे हो गए, लेकिन तभी मैं कहती हूँ ना कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम वो टाइम होता है जब मैं आप सबसे कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि तब मुझे एहसास होता है कि बिना किसी को जाने भी आप कितना जान सकते हैं उसको, और दुनिया कितनी खूबसूरत है सिर्फ आपके जैसे लोगों की ही वजह से। बसंत कुमार सिन्हा शॉ ने दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से हमें ईमेल किया है। अनवर अंसारी जी ने ईमेल लिखा है, आपका प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है, पंजाब अहमदगढ़ मंदिर से है मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी। घनश्याम सिंह जी का ईमेल आया है कि अगर ईश्वर मेरे सामने प्रकट हो जाए तो मैं कहूंगा कि इतनी शक्ति दीजिए और इतना धन दीजिए और स्वास्थ्य दीजिए। भाई ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब तो आप सारी सुविधाओं को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कहीं बाई चांस अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो उनका फायदा उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं ये सुविधा भी चाहूंगा जिससे कि मैं असहाय और गरीबों की मदद कर सकूं। तो घनश्याम जी इतनी सारी चीजें मांग लेंगे, लेकिन हाँ ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ही सेंसिबल बात आपने कही है। एडवोकेट घनश्याम सिंह, नारायण नगर ए, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा

0: हित में जारी।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
2: एक बजकर 49 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ढेर सारी ईमेल्स मेरे सामने हैं, तो एक बार मैं बस टॉपिक रिपीट कर देती हूँ और फिर इन ईमेल्स पर आती हूँ। मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आपसे ईश्वर खुद पूछे कि तुम्हें कौन सी सुपर पावर चाहिए, तो आप कैसी, कौन सी सुपर पावर हासिल करना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं। मनोज विश्वकर्मा ने छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल किया, जिला बलौदा बाजार ग्राम ताराशिव से। गुड आफ्टरनून, मुझे सुपर पावर मिले तो मैं हर काम में सफलता मांगूंगा। भाई मेरा ऐसा ठीक है, मतलब सोचने में कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना मनोज, कि अगर आपको हर चीज में सफलता मिलती है तो आपकी लर्निंग बहुत कम हो जाती है। तो कभी कभी असफलता भी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि पहली बात तो वो आपको बैलेंस्ड रखती है, और दूसरी बात जितना कुछ आपको फेल्योर सिखाती है, सक्सेस उतना कुछ सिखा नहीं पाती। तो इसीलिए एक बैलेंस जरूरी है ना। सतीश कुमार ने सीतापुर से हमें ईमेल किया है, लिख रहे हैं, पहली बार ईमेल कर रहा हूं, यदि कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं चाहूंगा, ओहो ओहो ओहो, मैं बस यही चाहूंगा कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिले जो मुझे सच्चे दिल से चाहे और हमारा साथ हमेशा बना रहे। हाउ स्वीट। तो जी, हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि आपका ये ख्वाब, आपकी ये मन्नत बहुत जल्द पूरी हो। आकाश लोधी मलियाबादी ने लिखा है, अगर हमें सुपर पावर मिल जाए तो हम सब तक शिक्षा पहुंचाएंगे। गुड थॉट। एमके राज ने लिखा है, थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए इस मैसेज को हॉटमेल में पढ़ना। ऑल राइट, तो हॉटमेल का मैसेज भी इन्होंने यहाँ पर ही डाल दिया है विद द फरमाइश की क्या आपको गाना चलाना है। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की जाएगी। सुधाकर जाधव जी ने लिखा है, प्रोग्राम में अभी अभी शामिल हो रहा हूँ, आज हेल्थ एंड फिटनेस में शामिल नहीं हो पाया, टॉपिक पता नहीं है, जो भी प्रोग्राम हुआ होगा अच्छा ही रहा होगा। तो भाई अगर आप प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, आप हमसे कनेक्टेड है और कनेक्टेड होना चाहते हैं, ये ही एक बहुत बड़ी बात है। सुधाकर जाधव जी ने भी गाने की फरमाइश की है, तो गाने की फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो वक्त है ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने

1:55 हो गए हैं, यानी कि बहुत कम वक्त बचा है। हालांकि मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ अभी अगले 2 घंटे और, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में आपकी सुपर पावर्स डिस्कस करने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तो चलिए जल्दी से ईमेल्स पढ़ लेते हैं। रमेश पटेल ने लिखा है, अगर मुझे कोई सुपर पावर मिले तो मैं जरूरतमंदों की जरूरतें पूरा करने का वरदान मांगूंगा। लेकिन ये तो बड़ा वेग सा है ना रमेश पटेल जी, किसकी क्या जरूरतें हैं? हो सकता है कि आप किसी एक की जरूरत पूरी करें और उससे दूसरे का नुकसान हो, है ना? तो ये भी सोचना पड़ेगा, कभी कभी ये भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी की ख्वाहिशें पूरा नहीं करता। और बार बार जब भी हम दुआ करते हैं तो यही करते हैं ना कि वाजिब जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो जरूर पूरी हो। इन्होंने हमें ईमेल किया जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण ने लिखा है कि उड़कर अंतरिक्ष में जाने की बड़ी ख्वाहिश है और अगर ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो बस क्या कहना, मेरे को सुपर पावर मिली तो दूसरों की मदद करूंगा। अभी मेरे नजदीक रहने वाली एक महिला को दवाखाने में एडमिट करा के आया हूँ, उनके घर पर कोई नहीं था और उनकी डिलीवरी नजदीक थी, इस वास्ते एडमिट करा दिया, मन को बड़ी शांति मिली। सुधाकर जाधव जी ने ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें ईमेल किया। मुझे लगता है ना कि आपके जैसे जो लोग इतने सेल्फलेस हैं और सेल्फलेसली दूसरे की मदद करते हैं, उसी वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। अगर मुझे सुपर पावर मिल जाए तो दुनिया में जब भी कोई जंग होगी तो मैं उसको रोक दूंगा। ये कहने वाले अजमत अंसारी साहब। धर्मवीर भारती ने लिखा है, शुक्ला गंज उन्नाव से, सुपर पार ये कि कोई भी अपने आप को सुपर पार ना दे सके, कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये भी बात सही है, ज्यादातर समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हम सुपीरियर हैं। तो ये भी बड़ी गहरी बात आपने कही है। तो भाई अगर आप मेरी सुपर पावर की बात कहें तो मैं तो बस इतनी सी सुपर पावर चाहूंगी कि आप सबसे हमेशा कनेक्टेड रहूं। ऑन दिस नोट अब बस आगे बढ़ती हूं और कहती हूं आपसे कि इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। स्टे ट्यून्ड।

0: pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है।

0: दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के

0: अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: रोजी डी कैस्ट्रो, जॉन डी कैस्ट्रो, पल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, इन सारे लोगों ने मिलजुल कर हमें ईमेल किया है। कहाँ से किया है? जनकपुरी सहारनपुर से। तालिब अंसारी साहब का भी ईमेल आया है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। आसिफ अंसारी तेलंगाना से, साबिर अंसारी कानपुर से। तुलसी मस्कीन का भी ईमेल है, प्लीज किसी भी प्यारे से गीत में संदेश ले लें जी। थैंक्स। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, रचिता खुराना, केशुर धान खुराना। चारू नूर अंसारी जी का ईमेल, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। मोहम्मद साबिर अंसारी जी का एक और ईमेल है, मोहम्मद तालिब अंसारी, आरिफ अंसारी तेलंगाना से। रामेश्वर जी का ईमेल है, लिख रहे मेरा मेल कहीं खो गया। हाँ जी, खो ही जाते हैं। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, उनका ईमेल पढ़ लिया जाता है, उसके बाद भी ढेर सारे ईमेल करते हैं। मैं समझती हूँ ईमेल आप करते इसलिए है क्योंकि आपको हम सबसे बहुत सारी मोहब्बत है, हमारे चैनल से प्यार है। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल इधर उधर गुम से हो जाते हैं। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, नरेश जी का भी ईमेल आया है, नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, भाविक सिक्का। तो इन ईमेल्स के बाद अब आगे बढ़ते और सुनाते हैं आपको एक ऐसा गाना जिसकी फरमाइश आप ही में से किसी एक स्वीट स्वीट लिसनर ने की है। ये सॉन्ग भी बहुत अरसे के बाद रेडियो पर बज रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे गानों की फरमाइश करने के लिए जिन्हें हम भूल से गए, हालांकि वो अपने वक्त के सुपर डुपर हिट सॉन्ग हुआ करते थे।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी

0: भाई हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
1: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताज़ा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: मेरा मेल शामिल नहीं हुआ है। बस इतना सा लिखा है, अजीज अहमद इतिहार सीतापुर यूपी से। तो जी होता है, कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका ईमेल शामिल हो जाता है, उसके बाद भी वो ढेर सारे ईमेल करते रहते हैं और इसकी वजह से आपकी नाराजगी का शिकार होना पड़ता है हमको। दिनेश वर्मा जी ने ईमेल किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा के साथ। मनोज विश्वकर्मा ने लिखा है, एक नजर मेरे ईमेल पर डालिए मैडम, बेसब्री से इंतजार है। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर हॉट मिल प्रस्तुत करने वाली दीदी को गुड आफ्टरनून जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ढेर सारी तारीफ के लिए। दीपक राजा जी पुरम लखनऊ से, सिर्फ सीतापुर से संजू गढ़वा, हरदोई से आजाद, सिमरी से ओंकार, सीतापुर से संतोष मौर, बहुत बहुत शुक्रिया। और किन का ईमेल है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा का भी एंड जयदेव देव। कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, गर्मी से बचने के कुछ उपाय इन्होंने शेयर किए हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। तो जी, हीट स्ट्रोक से जरूर बच करके रहें आप सारे लोग, ये इनकी गुजारिश है, ये इनकी रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। जयदेव बैरागी जी, अरुणा जी, प्रियांशी, आदित्य रुद्रापुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, बिल्कुल सही बात है। जो मौसम है ना, और ऐसे भी कहते भाई जेठ में तो पड़ेगी ना गर्मी, ऑफकोर्स पड़ेगी। मुकेश कश्यप जी का ईमेल है, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राज्यपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवीर, लक्ष्य सोनी, मोनी ऋतिक, बलवीर सिंह के साथ, दिलापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद। अजमत अंसारी, हेलो मैम, प्लीज मेरा ईमेल पढ़ लीजिए। अजमत अली फ्रॉम सुल्तानपुर, सॉन्ग पसंद आ रहे हैं। मेरी होने वाली वाइफ रीजा भी आपका प्रोग्राम सुन रही, तो रीजा जी सुनते रहिए यू ही FM रेनबो। बाबू अंसारी जी का एक और ईमेल हमारे सामने, देवकली अहमदपुर बाजार बारा बंकी से। नसीम अंसारी, मुन्नन अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता और बाबू अंसारी, वारिस अली खान साहब, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, अश्क मेरी आंखों से निकल सकते थे, अरे तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, साथ देते तो बहुत दूर निकल सकते थे। भाई वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मनोज बंसल हांसी हरियाणी से नमस्कार भेज रहे हैं। एंड ताज मोहम्मद जी, इन्होंने ईमेल किया है गुलाम साविर राही मेहराज जहां के साथ, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत ईमेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक की पसंद का ये गाना आप तक पहुँचाते हैं।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: और लखनऊ की इस धड़कन पर धड़क रहा है इस वक्त सिर्फ आपका नाम, क्योंकि आपने पहुंचाए हैं हम तक आपके खुद के पैगाम थ्रू योर मैसेजेस। और यस, कुछ ऐसे सॉन्ग भी तो हैं जिनकी आपने फरमाइश की है, तो चलिए आगे बढ़ते। विनोद कुमार गुप्ता गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी से लिख रहे, पहली बार ईमेल किया है, प्लीज शामिल कर लीजिए। लीजिए जी, शामिल कर लिया, लेकिन बदले में आपको करना है ये कि अब आपको डेली ईमेल करना होगा, चलेगा? गुड। ताज मोहम्मद साहब का ईमेल है, गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आनंद तिवारी जी का भी है ईमेल, मिल ही जाएगा हमें भी कोई टूट कर चाहने वाला, वाह वाह वाह वाह, मिल ही जाएगा हमें भी कोई टूट कर चाहने वाला, अब सारा का सारा शहर बेवफा तो हो नहीं सकता, क्या बात है। जिंदगी जीने का दूसरा मौका जरूर देती है जिसे हम कल कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये शेर भी आनंद तिवारी जी का था, दारुकोया मल्लावा हरदोई यूपी से, और ये खूबसूरत थॉट भी उन्हीं का था। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का भी ईमेल आया है, एंड अब्दुल गफ्फार साहब का भी ईमेल है, नाग चुन रोड संजय कॉलोनी से खंडवा से। अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, बसंत कुमार सिन्हा जी, मेरा ईमेल कहाँ खो गया, 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ अपनी बारी का, प्लीज हाजिरी लगा दें। अब मैं क्या कहूँ बसंत जी, होता क्या है कभी कभी वाकई खो जाते हैं ईमेल, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हाँ इतना आपको यकीन रखना होगा कि जानबूझकर किसी भी ईमेल को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाता, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और आरजे, इतना फेथ इतना ट्रस्ट तो आपको इस दोस्ती में रखना होगा, है ना। दमदम एयरपोर्ट कैलकटा से ईमेल आया है इनका, और कई सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका ईमेल पढ़ लिया जाता है फिर भी कह देते हैं हमारा ईमेल नहीं पढ़ा गया, तो ये ठीक है क्या? नॉट फेयर। उत्तम कुमार भगत जी का ईमेल है, मुन्ना भगत गुड्डी भगत के साथ भोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, श्वेता भगत की सुतासु अंडव आनंद सत्यम आनंद के संग पाकुड़ झारखंड से। जी उम्मीद करती हूँ आप में से किसी का भी ईमेल मैंने मिस नहीं किया, और अगर हो गया है, अगर बाई चांस हो गया है, तो हाथ जोड़कर आप सबसे सॉरी, ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया गया है, और अगली बार पूरी कोशिश की जाएगी कि जिनके ईमेल आपकी बार मिस हो गए बाई चांस वो अगली बार जरूर पढ़े जाए। तो अगली बार बस यूं ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सिर्फ इसी प्रोग्राम में, क्यों हर प्रोग्राम में, अभी जो अगला प्रोग्राम लेकर आने वाली हूँ ना वो आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जिसे आप भुला ही बैठे थे। यस, एक नॉस्टैल्जिक प्रोग्राम लेकर के आ रही हूँ अगले पूरे घंटे सतरंगी दुनिया, तो जुड़े रहिए FM रेनबो से, क्योंकि ज्योति आपके साथ यूं ही बने रहने वाली है लेकर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जी हाँ दोस्तों, 102.7 FM पर आप कनेक्ट हो चुके हैं अपने फेवरेट चैनल रेनबो कानपुर पर, और आपकी फ्रिक्वेंसी है 102.2 FM, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त निधि जैन। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम जानते हैं कि इस समय जो गर्मी का टाइम है ना, वो बिल्कुल अपने शबाब पर है। और गर्मियों में अगर दोपहर की बात करें और ख़ास तौर पर 3 बजे का ये जो वक्त होता है ना दोस्तों, बड़ा ही अलसाया सा होता है, खासकर संडे को, क्योंकि संडे के जो स्पेशल हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं ना, उसके बाद हमारा जो पेट है वो बिल्कुल एकदम टनाटन भरा होता है, और निंदिया रानी जो है वो अपनी पूरी मैग्नेटिक पावर से हमें खींच रही होती है अपनी ओर, है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है ना इस समय, आप भी थोड़े से अलसाए अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। बट एक बात है बिसाइड्स दिस ऑल, कि दोपहर का ये जो वक्त है ना, तो काफ़ी कुछ म्यूज़िकल भी होता है, क्योंकि इस समय हम हर रोज़ लेकर आते हैं प्रोग्राम म्यूज़िकार। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है और इसी अलसाई सी दोपहरिया को हम बनाएंगे और भी एनर्जेटिक, और भी पावरफुल, और भी म्यूज़िकल इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आपसे मिल करके हमारा जो मूड है ना वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है और एकदम मैं फ्रेश फील करती हूँ। ये तो मेरा है, और आपके मूड का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस समय आपका भी थोड़ा सा मूड बढ़िया हो गया होगा, क्योंकि इतना खूबसूरत सा जो ट्रैक था उससे आपकी सुस्ती और नींद जो है ना वो ज़रूर भाग गई होगी, और मुझे लगता है कि भाग भी जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा दिन तो निकल ही गया है ना, आधा दिन बाकी है और ये भी कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो साहब आलस छोड़ दीजिए और उठ जाइए, खासतौर पर वो लोग जो कि क्रिकेट के बड़े ही दीवाने हैं, क्योंकि 3:30 बजे से शुरू होने जा रहा है आईपीएल का महामुकाबला। जी आप जानते ही होंगे कि आज किसके किसके बीच में महामुकाबला होने वाला है। ये है हमारी टीम्स, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स, और इनका जो मैच होने जा रहा है वो बड़ा ही खूबसूरत जगह पे हो रहा है, हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों के बीच। जी हाँ, धर्मशाला स्टेडियम में।

कि जो दूसरा मैच है ना वो खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल के बीच। तो बस यूं ही बीते जाने वाला है आपका आज का संडे। फिलहाल आपको फ्रेश फील कराने आ रहा है ये फ्रेश वाइब्स वाला बड़ा ही खूबसूरत सा गाना।

0: पहला खुमार।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
3: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmiliaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
4: जी दोस्तों, तो आपने ये अनाउंसमेंट तो सुन ही ली है कि आप किस तरीके से हमसे और भी ज़्यादा मेल मिलाप कर सकते हैं। फिलहाल इस समय दोपहर के 3:16 हो रहे हैं और संडे की इस रिलैक्स दोपहर में आप सुन रहे हैं मुझे, यानी अपनी दोस्त निधि जैन को। प्रोग्राम है म्यूजिक आर। जी हाँ दोस्तों, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट है रेनबो कानपुर, जिसे आप सुनते हैं 102.2 FM पर। और अभी दोस्तों मुझे आपसे बहुत सारी मज़ेदार बातें करनी हैं, और बाय दैट टाइम आप बस मुझे इतना बताइए जल्दी से कि आज के संडे को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस तो आपको मालूम ही है, aarkansomedia@gmail.com। और मैं लौटती हूँ इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेनबो कानपुर पर, सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट।

जी हाँ दोस्तों, यही हमारे पल पल का साथी जो हम सब की जिंदगी बना हुआ है इन दिनों, और ये और कोई नहीं, हम जानते ही हैं, हमारा आपका छोटू सा स्मार्टफोन है और हम सभी की जिंदगी की बागडोर इसने थाम रखी है। आज दोस्तों अगर हम फ़ोन और इंटरनेट के बगैर जिए तो लगता है जैसे ज़िंदगी अधूरी है, कुछ है ही नहीं। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों कि अगर ये नहीं होते तो कैसे आप अपनी रील्स स्क्रॉल कर रहे होते, कैसे दुनिया भर की जानकारी पल भर में हमारे पास होती है ना, और कैसे आप रेडियो पर इस समय मुझे सुन रहे होते। कितनी बड़ी बात है ना, सब इंटरनेट का ही तो कमाल है। फटाफट से हम एआई के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अपने पास कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इन्हीं जानकारियों की वजह से और अपने इसी डिजिटल वर्ल्ड की वजह से। और दोस्तों इसीलिए आज का जो दिन है 17 मई का दिन, वो मनाया जा रहा है एज अ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में। हम सबको इसकी इम्पोर्टेंस पता है, इसकी बहुत ज़्यादा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पता है, लेकिन हाँ इसका एडिक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये आप हमें भेजिए फटाफट से अपने जवाब हमें मेल करके, और मैं कोशिश करूँगी कि इस प्रोग्राम में आपका मेल मैं ज़रूर शामिल कर लूँ। हमारा जो मेल आईडी है वो है aarkansomedia@gmail.com। तो बस फटाफट से हमें भेजिए अपने मेल, अपना जवाब लिखिए कि आज की पहली बात तो आपकी दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और दूसरा एक मैंने और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आज के संडे को आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो फटाफट से अपनी बातें हम तक पहुँचाइए। और तब तक मैं प्ले करती हूँ एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, तुम से ही।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है इस गाने में कि इसी के साथ हमारी सुबह होती हैं, शामें आती हैं, इवन देर रात तक भी हम इसी के साथ ही जुड़े होते हैं, मीन्स अपने फ़ोन के साथ। कहते हैं ना कि दुनिया इधर उधर हो जाए लेकिन हमारा फ़ोन हमसे नहीं छूटना चाहिए, यही हमारी लाइफ लाइन्स बन चुके हैं एक्चुअली। सुबह आँख खुलने से लेकर रात

सोने तक सब कुछ इसी स्क्रीन में बंद है। बट आज संडे को मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना भी आज का वक्त अभी बचा है उसमें अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करिए। जी हाँ, स्पेंड योर क्वालिटी टाइम्स विद योर लव वंस। अपनों के साथ बैठकर शाम की चाय, कॉफ़ी, लंच, डिनर सब कुछ एंजॉय करिए आज, क्योंकि दोस्तों संडे से बेहतर और कोई दिन नहीं है पूरे हफ्ते का जब हम अपनों के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सो डियर वंस, एंजॉय योर संडे एंड कीप योरसेल्फ डिजिटली डिटॉक्स।

0: की सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जी हाँ दोस्तों, इस समय आप कनेक्टेड हैं अपने फेवरेट रेडियो चैनल 102.2 FM पर, यानी सिटी की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर के साथ। और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आवर। दोपहर के 3:32 हो चुके हैं और इस प्रोग्राम में बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, और अभी और भी करनी बाकी हैं, तो आप कहीं भी मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ @102.2 FM रेनबो कानपुर। अभी निकल पड़ी है मेरे साथ घूमने।

जी आई नो कि आप बहुत बहुत लव करते हैं अपने इस खूबसूरत से प्यारे से फेवरेट चैनल को, जिसे आप हर रोज़ ट्यून करते हैं 102.2 FM पर। और अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों कि संडे का दिन है और संडे को कितना मज़ा आता है ना, जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने जा पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, और सच में इससे ज़्यादा एक्साइटिंग डे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आज ही का दिन है जब हम अपने लोगों के साथ में बैठ पाते हैं या फिर नहीं भी कहीं जा पाए हैं तो कम से कम शाम की चाय कॉफ़ी या फिर डिनर तो एक साथ कर ही सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा समय होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर के अपने दिल की बात कहते हैं, अपने दिल के जज्बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर मिलकर के किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। और फिर इसी के साथ बातचीत के बीच में कहीं घूमने जाने का भी प्लान बन जाता है गर्मी की छुट्टियों में, है ना। मुझे लग रहा है कि आप भी आज ऐसे ही कुछ प्लान बना रहे होंगे कि कहाँ चलना है, और बहुत सारे लोगों ने अपने टिकट्स भी करवा लिए होंगे अगर कहीं आउट ऑफ कानपुर जा रहे हैं, या फिर अगर कहीं कानपुर में भी घूमने जाने का प्लान है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, आप बस प्लान बनाइए। और मुझे ये भी मालूम है कि इस समय आप मिल करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं हमारा फेवरेट रेडियो चैनल 102.2 FM पर, जहाँ पर म्यूज़िक आर में आज आपके साथ है आपकी रेडियो फ्रेंड निधि जैन। तो चलिए अभी फ़िलहाल आपको एक और बढ़िया सा मस्ती वाला गाना सुनाते हैं और उसके बाद थोड़ी सी और बात करूँगी आपके साथ।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए हमारा चैनल 102.2 FM पर, जहाँ पर आज म्यूजिक कार में है आपके साथ आपकी आरजे फ्रेंड निधि जैन। और दोस्तों, जैसे जैसे देखिए, संडे की जो दोपहर है वो धीरे धीरे बीत रही है और इसी के साथ संडे लाउंज इज ऑल्सो टर्निंग टू मंडे ब्लूज, है ना। जैसे जैसे दोस्तों संडे की शाम नज़दीक आती जाती है, वैसे वैसे हमें मंडे ब्लूज भी आने लगते हैं, है ना। एक बार फिर से हफ्ते भर के हैक्टिक शेड्यूल का हमें डर सताने लगता है, पूरा का पूरा हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। तो आज का जो दिन है ना, वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इसके मौके पर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई डू नॉट टेक स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने से बहुत सारी बीमारियाँ, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे लिसनर्स को कोई भी बीमारी घेरे या कभी भी उन्हें कोई परेशानी हो। और ये तो आप जानते हैं कि जो हमारा रेडियो चैनल है रेनबो कानपुर, वो आपको कभी स्ट्रेस में रहने नहीं देता, है ना। सही है ना, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेस रिलीवर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 102.2 FM। सोचिए मत, बस चलते रहिए हमारे साथ।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे।
1: जी हाँ, छोरा गंगा किनारे वाला। और ये जो पान है ना, ये आपको खा करके डेफिनेटली मज़ा आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ म्यूज़िक आर प्रोग्राम को भी वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। सो निधि साइनिंग ऑफ, बट यू डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज यहाँ से एंटरटेनमेंट का डोज रहता है भरपूर। शाम 4 बजे से हम लेकर आ रहे हैं बैक टू बैक सॉन्ग्स जस्ट फॉर यू। फिलहाल अभी आपके लिए आ रहा है एक बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक, सुनते रहिए और एन्जॉय करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, गाना कुछ ऐसा है कि इसे सुने बगैर आपका दिल मानेगा नहीं।

0: जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम है कि आपका दिल बिल्कुल भी नहीं मानता है हमारे इस चैनल को सुने बगैर, और मानना भी नहीं चाहिए। इतना खूबसूरत सा चैनल है, इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स आते हैं, इतने इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स रहते हैं, वो भी स्वस्थ मनोरंजन के साथ, तो ऐसा आपको और कहाँ मिलेगा। तो बस हमेशा की तरह आगे भी इसे ट्यून करते रहना है, और फ्रिक्वेंसी आपको पता ही है 102.2 FM। फिलहाल म्यूज़िक आर का सफ़र हुआ पूरा, आज आपके साथ थी आपकी रेडियो दोस्त निधि जैन, और बस थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं बैक टू बैक सॉन्ग्स, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: सारे गा पदा निदा पगरे गा मगरे गा सागा।
2: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: पानी रे मा पदा पगरे मगरे गरे सनिदा रे।
3: तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है?
4: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर।
5: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
4: पर कैसे?
5: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित आसान।
4: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा।
5: बहुत सही कह रहे हैं आप, RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, इस समय आप जुड़े हुए हैं 102.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर और सुन रहे हैं अपना फेवरेट चैनल रेनबो कानपुर, और बैक टू बैक प्रोग्राम्स शुरू हो चुका है। 4 से 5 आप रहने वाले हैं हमारे साथ, गाने सुनने को मिलेंगे आपको नॉन स्टॉप और मनोरंजन भरपूर।

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

नमस्कार, 5 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक निजी समाचार पत्र से बातचीत में श्री जोशी ने बताया कि कुल बिजली मांग का करीब 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह NTH की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से MSME निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा तेजी से बढ़ रहे फुटवेयर क्षेत्र के लिए देश की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को और मजबूत करेगी। वाराणसी में ग्रीन आर्मी से जुड़ी 50 महिलाओं को मिशन शक्ति से जोड़ा जाएगा। महिलाएं समाज में नशाबंदी, जुआखोरी और छोटे अपराधों पर अंकुश लगाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। DCP वरुणा जोन मोद ने यह जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और समस्याओं के समाधान के लिए मिशन शक्ति केंद्रों का सुझाव भी दिया, जहां नियमित रूप से क्षेत्र की महिलाएं अपनी

समस्याएं रख सकें और उन्हें समय पर सहायता मिल सके। हमीरपुर में मौदहा थाना क्षेत्र के छिरका गांव के पास कानपुर सागर हाईवे पर खड़े ट्रक में कार की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौदहा थाना प्रभारी ने बताया कि कानपुर निवासी बागेश्वर से दर्शन कर वापस जा रहे थे। मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद तथा आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने, आकाशीय बिजली के साथ साथ आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशवासियों से की गई अपील और उसके प्रभाव पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप तेल की आपूर्ति में रुकावट के कारण एलपीजी, पेट्रोल, डीजल समेत अन्य वस्तुओं की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। इस संकट के दीर्घकालिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामने इस संकट ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र युद्ध से प्रभावित रहे हैं उन देशों के साथ हमारा व्यापार का महत्वपूर्ण रिश्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। देश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया।
3: पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 7 अपील की हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करने, विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के अभ्यास को फिर से लागू करना शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने, विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने की अपील की है। नागरिकों से खाने के तेल के उपभोग में कमी करने और किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी करने को कहा है। वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता भारत के लिए आवश्यक है।
3: साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं।
2: ऊर्जा बचत

0: के क्रम में प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई कार खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्यों में भी ईंधन संरक्षण को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया है, साथ ही वर्चुअल बैठकों और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री सप्ताह में एक निर्धारित दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कार पूलिंग या साइकिल जैसी सुविधाओं का उपयोग करें, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और आम जन भी इससे प्रेरणा लें।
1: जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने LPG सिलेंडर के स्थान पर PNG कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव तत्काल किए जाएं। श्री योगी ने प्रदेशवासियों से वैकल्पिक ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने गौशालाओं के जरिए गोबर गैस प्लांट लगाने और सामुदायिक रसोई चलाने जैसे उपायों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है।
1: मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि गांव में उन गौशालाओं के पास जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित, क्या हम उन गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा करके और गांव की सामूहिक किचन की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं? गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। मुझे लगता है ये एक राष्ट्रीय कार्य हो सकता है।
0: मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अधिकारी ई रिक्शा और साइकिल से कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा बचत में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लेते हुए लोगों ने इस दूरदर्शिता की सराहना की है। अयोध्या में नगर निगम ने इस अपील पर अमल करते हुए हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग के जरिए कार्यालय आने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि ये पहल ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
2: डोर टू डोर कलेक्शन में जो भी वाहन लगे हैं उसमें ज्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चले और इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं सबसे कहा गया है कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हुए, कार पूलिंग का प्रयोग करते हुए ऑफिस आए और माननीय महापौर जी के आह्वान पर सभी के लिए कहा गया है कि सभी हमारे माननीय पार्षदजन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही निगम में आएंगे। हर आम जनमानस से भी आह्वान है कि अपना छोटा छोटा योगदान इस कार्य में।
0: आम जनता में भी प्रधानमंत्री की अपील को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। गाजियाबाद के अमित सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही समय पर जनहित में लोगों को सतर्क किया है, जो एक सकारात्मक कदम है।
3: एक बहुत बड़ा युद्ध होने के कारण ऐसा माहौल बना हुआ है कि आने वाले समय में हमें शायद जो ऊर्जा है, जो हमारे ईंधन है, जो हमारी गैसें हैं, जो हमारी अन्य चीजें हैं, वो महंगी हो सकती हैं। तो उस महंगाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सही अपील की है कि हम सब लोगों को आगामी आने वाले खतरे को देखते हुए हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए।
0: इस संकट से निपटने के लिए भारत प्रभावी कदम उठा रहा है। बीते 11 वर्षों में देश में एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, साथ ही कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी गई है। युद्ध के कारण बने हालात से निपटने के लिए सरकार और आम जनमानस का साझा प्रयास देश की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
4: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशवासियों से की गई अपील और उसके प्रभाव पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो

0: हो जाता ये सफर
1: जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: और वह एक विशेष कार्यक्रम के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ के। सुन रहे हैं आप सर्वेश जायसवाल आज आपके साथ, और FM डॉपलर लेकर आ गया हूँ। और हमें फिल्मों के साथ साथ फिल्मी म्यूजिक का भी शौक होता है ना, और FM रेनबो आप इसीलिए सुनते हैं कि फिल्मी म्यूजिक आप पसंद करते हैं। तरह तरह के गाने, नए पुराने बहुत सारे। बॉलीवुड फिल्में हमारी जान होती हैं, तो वहीं इसके गाने हमारी लाइफलाइन होते हैं। आज FM टॉप 10 में हम बॉलीवुड की ऐसी ही फिल्मों का जिक्र करेंगे जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रहीं लेकिन म्यूजिकली हिट थीं। 90 के दशक में आशिकी फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था। आज भी आशिकी फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन महेश भट्ट साहब की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन ये गाना सांसों की जरूरत हो जैसे।

जी हाँ, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए और म्यूजिक के लिए आपको चाहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जैसे आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एंजॉय करते हैं और बहुत सारे गाने हम आपके लिए प्ले करते हैं। और आज FM टॉप 10 में हम उन्हीं गानों की बात कर रहे हैं जिनकी जो फिल्में तो नहीं चली लेकिन गाने सुपर डुपर हिट रहे। साल 2000 की बात करें, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी, फिल्म तो फ्लॉप रही, जेपी दत्ता साहब लेकर आए थे, लेकिन इसके गाने सुनने वालों को बहुत पसंद आए। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके।

आज भी लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन इनके जो गाने इतने हिट हुए थे उसको आज भी हम याद करते हैं। उसी फिल्म का एक गाना म्यूजिकल हिट थी ये, झनकार बीट्स फिल्म तू आशिकी है।

2013 में आई फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर और इलियाना थी। हालांकि फिल्म की कहानी और इन दोनों हीरो हीरोइन की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन ये गाना, जी हाँ, मैं रंग शरबतों का तो मीठे घाट का पानी।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: खड़े ठीक 5:30 हुए हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं आप FM टॉप 10 सर्वेश जायसवाल के साथ और बात कर रहा हूँ उन फ्लॉप फिल्मों की और उन फ्लॉप फिल्मों में जो म्यूजिक हिट था सुपर हिट था उन गानों को आज आप तक लेकर आया हूँ। अर्जुन रामपाल रणबीर कपूर और जैकलिन फर्नांडीज स्टारर फिल्म रॉय बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी लेकिन इसके गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे उनमें से एक चिड़िया कलाइयाँ।

जी हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म बार बार देखो, लेकिन इसको किसी ने भी नहीं देखा इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म के गानों ने कमाल कर दिया था। काला चश्मा, सुनिए गाना।

आपसे बात करते करते वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। 5:37 का वक्त हो चुका है, 6 बजे प्रोग्राम शाम में और लेकर आऊँगा और उसके बाद 7 बजे प्रोग्राम हेलो FM बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संडे का दिन है, एंजॉय करने का दिन है, वीकेंड का दिन है। अवध की शाम वैसे भी बहुत अच्छी होती है ना। 2015 में आई इम्तियाज अली साहब की फिल्म, रोमांटिक फिल्म थी और इसमें कौन थे याद है ना आपको, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। लेकिन ये भी भाई फिल्म लोगों को बहुत पसंद नहीं आई। कौन सी फिल्म, फिल्म का नाम ही था तमाशा। लेकिन ये गाना पहुंच रहा है ना आप तक, समझ गए ना, ये गाना बहुत हिट हुआ था, आज भी अच्छा लगता है।

जी हाँ, इस सिग्नेचर टीम से कुछ याद आया। बरसात मूवी सन 1995, बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की बॉलीवुड में एंट्री हो रही थी, लेकिन इस बरसात से बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। ये फिल्म बहुत नहीं चली। राजकुमार संतोषी साहब ने इसे डायरेक्ट किया, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म बहुत लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन इसके गाने क्या बात है, उसी में से गाना हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM से प्यार है।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
0: सात जन्म है सात समंदर, सात हमारा हरदम है, जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाए, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाए, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

घड़ी में 5:50 हो चुके हैं। देखा सनम, बिल्कुल आपने देखा होगा, लेकिन इस फिल्म को बहुत लोगों ने नहीं देखा। इस फिल्म के गाने बहुत सुने गए। दहेगा बर्निंग पैशन 1999 आई ये फिल्म, जिसमें अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे थी। और इसका जो कहते हैं ना कि स्टोरी लाइन थी, वो एक इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बनाया गया था, लेकिन ये जो कहानी थी ना लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन ये गाने बहुत समझ में आए। और ये गाना आज भी आप जब सुनते हैं 90s की याद दिलाता है। तो सुनते रहिए FM टॉप 10 सर्वेश के साथ। एक और गाना है जो फिल्म नहीं चली थी, लेकिन गाना बहुत चला था, बताऊंगा, लेकिन अभी का वक्त इस गाने को सुनने का है।

0: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: और घड़ी में 5:56 हो चुके हैं। जाते जाते एक और फिल्म के बारे में बताऊंगा, खामोशी, इसका नाम ही खामोशी था और बिल्कुल खामोश रही है बॉक्स ऑफिस पर। और इस फिल्म में सलमान खान, मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर, सीमा विश्वास और हेलन ने भी भूमिका निभाई थी। संजय लीला भंसाली ने निर्देशन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म नहीं चली। लेकिन ये गाना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे,

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा का लाभ देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में बेसिक शिक्षा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जब सरकार साफ नीयत स्पष्ट नीति से काम करती है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है। यही कारण है कि प्रदेश में ड्रॉपआउट रेट 18% से घटकर 3% हो गया है। उन्होंने कहा कि जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है, सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल प्राप्त कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अहमदाबाद में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी फैजान शेख

एक और फैजान सलमानी के मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह रामपुर की तहसील स्वार पहुंचे, जहां एनआईए ने फैजान और उसके दोस्त के घर में छापेमारी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान फैजान के परिवार से कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की गई। वहीं जांच टीम फैजान और उसके दोस्त मुकीम के बीच के करीबी रिश्तों को देखते हुए दोनों के कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पुराने संपर्कों को भी तलाश रही है। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य दो को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होने देने की संभावना जताई है। विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे सुना जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है।
1: बारिश में भीगता सतर आया।
0: शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
5: ओनली 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, बोरियत को करिए ऑन, क्योंकि प्रोग्राम लेकर आ चुका हूँ और प्रोग्राम हो चुका है ऑन शामी आवाद। तो भाई लखनऊ वालों, एक हफ्ते में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा और शहर में पछुआ हवाओं का जो असर है ना, गर्माहट का जो असर है वो साफ दिख रहा है। कल के टेम्परेचर की अगर बात करें तो 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश में पारा जो है ना 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तो भाई अपना पूरा ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि फिर से आप लापरवाही बरतने लगे, क्योंकि ऐसा हुआ ना मई का जो महीना शुरू हुआ और

कहने को तो जेठ का महीना शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ बारिश, आंधी और ठंडा भी लग रहा था। कभी कभी लग रहा था सावन चल रहा है, कभी कभी ये भी लग रहा था कि दिवाली से पहले का मौसम चल रहा है, लेकिन वो सब फसाना था। हकीकत यह है कि जेठ का महीना चल रहा है तो भाई अपना असर तो दिखाएगा ना। तो बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखें, अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर हाइड्रेटेड होकर निकलें, पानी की बॉटल साथ में रखें, अपने को कवर रखें और बस सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, क्योंकि आप कहते हैं ना FM रेनबो के बारे में क्या कहते हैं, चलिए हम बताते हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हेलो FM, जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
3: What is mobile number? What is your style number? What is your style number? करो क्या dial number?
4: हेलो, आप असम रेमो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।

जी हाँ, हेलो एफएम प्रोग्राम लेकर आया हूँ ठीक 7 बजे। लेकिन अभी का जो वक्त है, शाम में अवध की बात हो रही है, अवध की शाम की बात हो रही है। और जब भाई रविवार का दिन होता है ना, तो अवध की शाम और भी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि जब फुर्सत होती है तो शाम भी बड़ी अच्छी लगती है ना। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए कि लखनऊ शहर में क्या कुछ चल रहा है, इन फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि CSIR यानी कि राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान NBRI पर्यावरण संरक्षण और बागवानी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। 4 और 5 जून को कंजर्वेशन हॉर्टिकल्चर पर 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाएगा। इस बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लिए, 0522 22 0 7 9 6 3। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 0522 22 0 7 9 6 3, 0522 22 0 7 9 6 3। खूबसूरत सगाना फ्रॉम द मूवी जानशीन।

तो भाई शामिल बाद में आपको ये भी बता दूं कि शहर के ट्रैफिक के क्या हाल चाल हैं, क्योंकि संडे का दिन है और आज आईपीएल मैच भी नहीं है, तो ट्रैफिक जो है ना अमूमन बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर भी अगर आप कहीं पर आपको लगता है कि ट्रैफिक सही नहीं है और आप बाहर हैं तो आप मेल करके बता सकते हैं फिल्म आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, है ना। फिलहाल हुआ है आज पहली बार फ्रॉम द मूवी सनम रे।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
4: जी FM रेनबो सुन रहे हैं आप धड़कन लखनऊ की 6:33 का वक्त शाम में बहुत प्रोग्राम चल रहा है और आपको बता दूं कि आज से पुरुषोत्तम मास व मलमास लग गया है तो भाई 15 जून तक शादी बारात का जो माहौल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा उन पर ब्रेक लग गया है लेकिन कहते हैं ना कि बाकी कार्यक्रम चलते रहेंगे और लखनऊ की बात करें तो भाई जेठ का कहते हैं ना जेठ के मंगल जो चल रहे हैं ना बड़े धूमधाम उत्सव मनाया जाता है बड़ा अच्छा लगता है ना जब प्रसाद की आप पूड़ी और सब्जी ग्रहण करते हैं

जी हाँ, तो अपने यूपी में भी कहते ना कि वीक में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है, और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये बात आ रही है कि दो दिन वर्क फ्रॉम होम, तो बढ़िया ना। गर्मियों का मौसम चल रहा है और आप घर में बैठे हुए हैं, वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या है। फिलहाल रश के कमर।

जी हाँ, 6:41 का वक्त और शाम वक्त सुन रहे हैं, और शाम वक्त में जो अपडेट्स का सिलसिला है, जो आपको बताने का सिलसिला है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कुछ नया हो रहा है, कुछ

ऐसी अपडेट्स होती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड भी होती हैं, तो आपको बता दूं कि माध्यमिक विद्यालयों के स्टूडेंट्स के लिए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं भाई। www.ccrt.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, www.ccrt.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए अगर आप इंटर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। फिलहाल खूबसूरत सा गाना, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जी हाँ, वही वाला जो आपका दिल कहता है, कभी हमारा दिल कहता है, यही वाला, क्या दिल ने कहा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: हेलो FM,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं।
6: अरे क्या बोल भैया,
2: अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
7: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
8: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
7: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
8: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
7: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
8: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
7: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
8: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
9: धड़कन लखनऊ की
8: 100.7 FM रेनबो।
10: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
11: शाम होने को है,
10: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

6:01 का वक्त, और ये वक्त है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि 7 बजे प्रोग्राम लेकर आऊँगा हेलो एफएम। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने 30 जून तक सभी म्यूजियम में सभी के लिए एंट्री फ्री कर दी है। तो अगर आप कभी फुर्सत में हो, कोई म्यूजियम देखना चाहें, तो बिल्कुल भी आपको टिकट देना नहीं पड़ेगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आता हूँ समाचारों के उस पार। प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की दिन भर की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अनुदेशकों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सहजनवा में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद के भाव से आचरण ही भाजपा कार्यकर्ता की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और किसी भी मत तथा मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है, हमारी सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों के साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मऊ के मधुबन पदारथपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 61 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम द्वारा आज जिला अदालत और कलेक्ट्रेट के पास बने करीब 240 अवैध चैम्बर और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान वकीलों ने कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की और अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया। इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने एक जनपद एक नदी योजना के तहत 53 किलोमीटर लंबी सिरसा नदी के पुनरुद्धार के निर्देश दिए हैं। आगामी 1 जून से इस पर काम शुरू होगा। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए 2 पालियों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। दोनों पालियों को मिलाकर 4,238 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य लोग घायल हो गए। फतेहपुर में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र में 4 और शाहजहांपुर के कांट इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ओनली 100.7 FM रेनबो।

0: जी हाँ बिल्कुल, बोरियत को करिए गौन, और गौन करने के लिए आपको करना क्या होगा, 0522 22 8842 और 22 8842 नंबर्स मिलाने हैं, और जब समाचार हम पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान हमसे कोई ना कोई जुड़ जाता है, क्योंकि आपकी मोहब्बत एफ एम रेनबो के लिए, स्पेशली हेलो एफ एम के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? हेलो
1: जी सर।
0: जी अपना नाम बताएं।
1: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। और बताइए सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अपने हालचाल बताइए कैसी हैं?
1: हमारे हालचाल बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम।
0: नहीं ये तो पता चलता है क्योंकि
1: वाला नंबर नहीं चालू है, हमारे भाई अपने भाई बहनों से बता रहे हैं 2982 377।
0: ओके ऐसा, ये नंबर चालू हो गया। चलिए हमारे श्रोता इतने बढ़िया हैं कि हमको करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपडेट रहना चाहिए।
1: 77 वाले पे कॉल किया है।
0: चलिए लाइन कभी कभी डिस्टर्ब लाइन। जी जी जी जी जी, अच्छा ये बताइए आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: तेरे नाम ने किया है जीवन अपना सारा सनम, और गाना डेडिकेट करना चाहते।
0: बिल्कुल जल्दी से नाम लीजिए।
1: सबसे पहले आपको
0: क्या बात है?
1: बाबुन भाई, सिराजुद्दीन भाई, मोहम्मद अमीन भाई, बबलू यादव भाई
0: जी,
1: आसिफ भाई, गुलाब साहब की साहबान अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, महक अंसारी, और वकील अहमद भाई, सत्यम कुमार भाई, विनीत भाई, जावेद अख्तर भाई।
0: क्या बात है, और कोई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: हमने किया है जीवन अपना सारा सनम।
0: जी अगर आपने भी जीवन अपना सारा एफएम रेनबो के को समर्पित किया है, बहुत सुनना चाहते हैं और सुनते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए। और एक और नंबर हमारा चालू हो गया है 2982 377, क्योंकि हमारे लिसनर्स फ़ोन मिलाते रहते हैं और उनको पता रहता है। तो 0522 22 8842 22 8852 और 2982 377, ये नंबर मिला के आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सात बजकर 10 मिनट का वक्त हो चुका है। हेलो एफएम सुन रहे हैं आप और बराबर हमें कॉल कर रहे हैं 0522-2238-842 0522-2238-842 और 2982-3377 ये नंबर्स हैं। इन पर आप जल्दी से कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए, अपनी पसंद का गाना सुनिए और कुछ आप कहिए, कुछ हम सुने, कुछ हम कहें, कुछ आप सुनिए। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
3: सर हम बहुत अच्छे हैं और एकदम मस्त और
2: झकौआ
3: है।
2: झकौआ हुआ
3: नहीं सर,
2: टन टन हुआ है ना सब है। और बताइए क्या हाल चाल है, नाम तो बताइए सुनने वालों को।
3: हाल चाल तो सर एकदम बेकार है, क्योंकि सर कॉल लगाते लगाते हम थक जाते।
2: देखिए अब ये मत कहिए, देखिए दूसरी कॉल आपकी लगी है, मतलब आप तो खुश हो जाइए।
3: जी सर, काफी अंतराल के बाद आपसे बात हो रही, बहुत अच्छा लगा। और सर हम अपना परिचय तो देते।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, अपना नाम बताइए।
3: जी सर, वे सर की दो दीवानियाँ
2: जो हैं एफएम
3: रेनबो की तरक्की, नाम है रिंकी और पिंकी, दीवानों के शहर जिला
2: क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, एफएम रेनबो की दीवानियाँ, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं।
3: जी बिल्कुल सर, रेनबो की दीवानियाँ है, तभी तो सर हम लोगों को रेडियो का इतना भूत चढ़ा है कि सर घर पे इतनी डांट पड़ती है कि सर पूछो मत।
2: अच्छा कोई नहीं, हम नहीं पूछेंगे। गाना कौन सा सुनना चाहेंगी वो पूछेंगे।
3: जी सर, मूवी का नाम तो नहीं पता है, सॉन्ग के बोल है बरसों के बाद बांधी है आज पायल।
2: मूवी का नाम है अब इंसाफ होगा।
3: जी सर,
2: अब मूवी का नाम है अब इंसाफ होगा।
3: जी जी सर, क्योंकि सर मैं सॉन्ग अक्सर सुनती रहती हूँ, मूवी अभी इस टाइम नहीं देख पा रही, नहीं समय नहीं मिला।
2: कोई नहीं, उसके लिए एफएम रेनबो है ना, धड़कन लखनऊ की। और किसी को सुनवाना चाहेंगी?
3: सुनते रहते, रेडियो सुनने का हमें बहुत

0: और इसका क्रेडिट हमारी बड़ी वाली दीदी
1: को। क्या बात है, क्या बात है। तो आज किसी को सुनवाना चाहेंगी?
0: बहन से भी थोड़ी सी बात।
1: हाँ जल्दी से बात करिए, गाना मैंने लगा। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके?
0: सर एकदम मस्त और जबरदस्त है, आप कैसे हैं?
1: वाह, मैं भी जबरदस्त और मस्त हूँ।
0: जी सर।
1: और ये गाना आपका लग गया है, बरसों के बाद मैंने बांधी है आज पर।
0: गाना डेडिकेट कर दें।
1: जल्दी से कर दीजिए।
0: जी सर, सबसे पहले तो आपको और हमारी सबसे अच्छी दोस्त है पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी, समा परवीन, साहिब अंसारी, सुरभि सिंह और ममता दीदी और सुषमा दीदी और नीलम वर्मा है बच्चावा से, और तिवारी अंकल, हरिकेश भाई, बाकी जितने श्रोता सुन रहे सभी को, और वकील अहमद भाई हैं उनको।
1: क्या बात है।
0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते सर भाई। और सर विविध भारती पर भी कभी आया करो।
1: आपने सुना नहीं, कल हम विविध भारती पर भी थे।
0: सर आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा।
1: नहीं नहीं नहीं, हम आ जाएंगे, जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: हम 5 बजे से।
1: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: घड़ी में 7:15 का वक्त हो चुका है। कोई है जो हमसे जुड़ चुके हैं? हेलो,
1: रास्ता ये एतबार का मोड़ा तो जाएगा। रास्ता ये एतबार का मोड़ा तो जाएगा, हमको किसी मुकाम पर छोड़ा तो जाएगा। अपनों से टूट जाए या गैरों के हाथ से, अपनों से टूट जाए या गैरों के हाथ से, टूटने की चीज है तोड़ा तो जाएगा। टूटने की चीज है तोड़ा तो जाएगा।
0: लेकिन एफएम रेनबो दिल जोड़ता है। हेलो एफएम प्रोग्राम के माध्यम से अपना नाम बताएं।
1: अकबर अंसारी बोल रहे हैं, विलेज चौखंडी, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी
0: से। क्या हाल चाल है आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप सबकी दुआओं से हम बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: जितने भी सभी सुनने वाले हैं वो भी अच्छे होंगे।
0: तो सुनने वालों को आज कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं?
1: फिल्म का नाम तो हमें ध्यान में नहीं आ रहा, शायद जोश मूवी है, पता नहीं।
0: बिल्कुल,
1: जिस हारे हारे
0: जिस
1: दिल से
0: जिस जोश से आपने शायरी सुनाई उसी जोश फिल्म से गाना है। तो चला दूं ये गाना।
1: प्रोग्राम अच्छा, दिनों के बाद हमने कॉल भी की है।
0: जी जी जी,
1: कॉल करके
0: तो किसी को सुनवाना चाहेंगे? जल्दी से नाम ले लीजिए क्योंकि समाचार शुरू होने वाले हैं।
1: जी हमारे दोस्त हैं मोहम्मद तालिब, मोहम्मद आसिफ
0: जी,
1: और समा परवीन जी हैं जो अभी कॉल की हुई थी, और साहिबा जी हैं, और बाकी सभी सुनने वाले हैं, यासिर हमीद जी हैं और निशा अंसारी जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें।
2: लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमा किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे, ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
3: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा

0: राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्रप्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है, जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है।
0: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
3: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खास तौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती।
0: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल

0: में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहू और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांट कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनों में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
4: जी हाँ धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप हेलो FM सुन रहे हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ 7:31 का वक्त और जल्दी से हमें कॉल करें सीधे जुड़ जाएं नंबर से एक बार फिर से बता दूं या याद हो चुके हैं 0522 2238 845 2238 852 और 2982 3377 ये नंबर जल्दी से मिलाइए और हमसे जुड़ जाइए। फिलहाल समाचारों के दौरान किसी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो
5: हेलो नमस्ते सर, गुड इवनिंग।
4: गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? अपना नाम बताएं पहले तो।
5: हमारा बढ़िया है सर, अपना बताओ पहले।
4: आपका बढ़िया है तो हाँ, यहाँ भी सब बढ़िया बढ़िया है।
5: हम विनीत कुमार बोल रहे हैं सर।
4: तो बताएंगे तभी तो हम जानेंगे। विनीत कुमार कहाँ से बोल रहे हैं?
5: विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर।
4: जिला सीतापुर से आपने कॉल किया है और कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे?
5: ये फिल्म का है दिल का क्या करे ऐसा है हम उन्हीं के मरते हैं।
4: हाँ ये दिल का कोई कुछ नहीं कर सकता है ना।
5: सर आपने बहुत मतलब सपना दिया की बात करने की
4: जी,
5: याद करें तब फोन लगा।
4: हाँ बहुत बहुत टाइम पहले आपसे बात हुई थी और मुझे ध्यान है आपके
5: संगीत में भी भारती पर कार्यक्रम करने आए।

0: जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो
1: दोस्तों को याद करें
0: जी, बिल्कुल याद कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं
1: जी। आजाद सिमरी से हैं, हमारे रामगढ़ चीनी मिल के पास से हैं
0: जी।
1: उनको डेडिकेट रहेगा। और समा परमीन अंसारी सीतापुर से हैं, ओमकार भैया सीतापुर से हैं
0: जी,
1: मोर हरदोई को थावा से हैं, सुरभि सीतापुर से हैं, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से हैं
0: जी,
1: जी सर नवनीत है लखनऊ से, और हरिकेश है मंथरा लखनऊ से, और आपके लिए सर स्पेशल,
0: और सर्वेश जायसवाल भी लखनऊ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत भाई, ऐसे ही मोहब्बत बरकरार रखिएगा, फोन मिलाते रहिएगा। और देखिए दिल का क्या करें, साहब आ गई हैं तब्बू जी।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जी आप अपने दिल का क्या करेंगे इसका उपाय तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप अपने फोन का क्या करेंगे वो बता सकते हैं। 0522-2837-845 मिला के जल्दी से हमसे बात कर सकते हैं ना, करेंगे ना बात, तो जल्दी से फोन उठाइए ना। 7:37 का वक्त अभी भी आपके पास पूरा टाइम है हमसे बात करने का, FM रेनबो से बात करने का और लखनऊ की धड़कन से बात करने का। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: कहाँ खो गए थे साहब, अपना नाम बताएं।
1: जी जी हम खोए नहीं थे सर जी, हम इंतजार कर रहे थे और गाना एंजॉय कर रहे थे।
0: ओहो, दिल का क्या करें साहब। और आप अगला गाना कौन सा सुना? गाना बढ़िया था ना
1: जी, गाना बहुत बढ़िया।
0: आप लोग गाने बढ़िया चुनते ही हो तो मजा आ जाता है सुनने के बाद।
1: जी जैसे म्यूजिक होती है वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आज कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आप
1: जी? हम तो

0: आपका सुरूर मूवी का सुनेंगे, नाम है तेरा तेरा, हिमेश रेशमिया भाई साहब का, लेकिन उससे पहले अपना नाम हम
1: दें। बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, हम मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
1: बाराबंकी से
0: जी,
1: आप
0: और काफी देर से फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन सर जी जैसे ही फोन लगते सर जी इतना अच्छा लगता है सर जी, मजा आ जाता है।
1: मजा आ जाता है
0: जी बिल्कुल,
1: ये मजा अपने तक रखिएगा वरना अगली बार फोन नहीं लगेगा।
0: होता है सर जी, हम लोग इतनी शिद्दत से फोन लगाते हैं।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच कही आपने,
0: फोन लगता है सर जी बहुत अच्छा लगता है।
1: नहीं नहीं ये बात तो मानता हूँ आपकी बात। तो आपका सुरूर एफएम रेनबो का कितना सुरूर है आपके ऊपर?
0: जी बहुत बहुत ज्यादा है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम आकाशवाणी लखनऊ पे एक बाल जगत प्रोग्राम आता था, स्टूडेंट के लिए था, छोटे बच्चों के लिए,
1: अभी भी आता
0: है। शुरुआत की थी उसमें, पत्र भेजते थे और वो हमको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था।
1: अच्छा अब आप बड़े हो गए हो, अब
0: सन 2012 की बात है।
1: जी जी जी जी,
0: अब उसका नाम चेंज हो गया, बाल मंच के नाम।
1: जी जी जी जी, तो अब आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, आपका सुरूर से सुनना चाहेंगे और सुनवाना किनको चाहेंगे जल्दी से बताएं।
0: जी आसिफ और साबिर और अकबर।
1: ओके बस
0: जी, बस
1: बस, और कुछ नहीं?
0: और नहीं, और को नहीं सर जी, और नहीं बाकी सभी लोग जिसके वहाँ तक जहाँ तक आवाज जा रही है वो लोग सुनेंगे तो है, सभी सुनने वालों को भी है।
1: बिल्कुल सुनेंगे
0: जी। और सर जी आपने फोन उठाया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हम तो बैठे ही यहाँ पे हैं, कहते ना ड्यूटी यही कर रहे हैं कि आप फोन करें और आपका फोन जल्दी से उठा लें और आपसे बात करें, सभी सुनने वालों से बात करें जो कॉल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए आपका गाना आ गया, आपका सुरूर
0: जी। थैंक यू सर जी, नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: और देखिए साथ 7:43 का वक्त हो चुका है और कोई है जो आ चुकी है हमसे बात करने के लिए। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम रेहाना।
0: जी कैसी हैं रेहाना, कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके फोन कॉल्स ले रहा हूँ तो और अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके।
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आप सबके दुआएं हैं।
0: कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
1: हम लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से, क्या करती हैं आप?
1: हम घर पे ही वर्क करते हैं, सफाई वगैरह सिलाई है, छोटा मोटा काम।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और गाना आज कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: गाना हम सुनना चाहेंगे जब तक तुम सामने रहते हो।
0: अच्छा, FM रेनबो जब तक सामने रहता है तो मन बड़ा खुश रहता है।
1: बिल्कुल। वो क्या ना हम घर में अकेले रहते हैं, बच्चे भी हैं नहीं, तो हस्बैंड भी चले जाते तो हम पूरा दिन बस रेडियो ही सुनते रहते हैं। मेरा दूसरा साथी रेडियो
0: है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, हस्बैंड चले जाते तो समझो बच्चे तो अभी तो स्कूल बंद हो गए होंगे।
1: जी जी,
0: चलिए बहुत बढ़िया। आज गाना तो आप ये सुनना चाहती हैं, और किसी को सुनवाना चाहेंगी, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: अब डेडिकेशन तो किसी को मेरा नहीं है, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी सुन सकते हैं।
0: क्या बात है, तो सभी को डेडिकेशन होगी। जी
1: जी, अगर हम डेडिकेटिंग करेंगे भी तो सुनेंगे तो सभी, कोई सुनेंगे नहीं।
0: ये टेक्निकल पॉइंट तो मेरे आज तक दिमाग में नहीं आया।
1: अक्सर प्रोग्राम सुनती हूँ, लोग डेलीगेशन करते हैं, इतने सारे नाम लेते हैं
0: जी, जी।
1: जिसमें आधा टाइम उसी में चला जाता है। अच्छा है, सभी को बोल दो।
0: चलिए जब तक तुम सामने रहते हो ये गाना आपका आ गया। और रेहाना आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ही फोन करते रहिएगा। वेलकम जी,
1: बहुत अच्छा लगा। मैं 10 सालों से कॉल मिला रही हूँ
0: जी जी,
1: आज हेलो FM में फोन लगाए।
0: ओहो, आज का दिन आपका स्वर्णिम दिन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल पिक की।
0: ओके वेलकम जी।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: 7:48 का वक्त और वक्त धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप नंबर मिला सकते हैं 0522-2832-2832-2842-2842-2843 और 2982-377। देखें अभी लाइन पर कौन है। हेलो,
1: हाँ भाई साहब
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: नमस्कार
0: जी,
1: हम खेती बाड़ी का काम करते हैं भाई साहब।
0: बहुत अच्छा काम करते हैं आप। और अपना नाम बताएं।
1: श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव
0: से बात करना चाह रहे हैं। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? वैसे हमने गाना लगा दिया है, अपनी तो जैसे तैसे। और किसको जी जी डेडिकेट कीजिए। बहुत
1: परवीन जी है, संतोष भाई है, केश भाई है और बाबू अंसारी भाई है, नवनीत भाई है
0: जी,
1: और आप आपकी पूरी टीम को ओंकार भाई भी है
0: जी जी जी।
1: बस बस भाई साहब थैंक यू।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस भाई साहब और क्या कहा है, गाना तो आप लगा ले हमारा।
0: देखिए हमने गाने
1: पुराने गाने सुनते हैं भाई साहब।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है, आप पुराने गानों के शौकीन हैं। जी जी कितनी
1: आपके निमित्त सोचा है।
0: जी जी जी और बताएं कुछ कहना चाहेंगे या हम आपको सीधे गाने पर ले जाएं?
1: ठीक भाई साहब थैंक यू।
0: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: 22 38 852 और 29 82 377। अभी देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: हम मिंटू तिवारी, ग्राम भखरना, तहसील खारे, जिला
0: फतेहपुर से बोल रहे हैं
1: जी।
0: और बताएं क्या हाल चाल है मिंटू जी।
1: बढ़िया है सर, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे मतलब
0: जी। आपकी आवाज कुछ कट रही है, शायद लाइन में प्रॉब्लम है। हेलो।
1: हाँ हाँ हेलो
0: जी जी, अब आ रही अब आ रही। और बताएं क्या हाल चाल है, कुछ कहना चाहेंगे। गाना कौन सा
1: गाना डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को
0: जी? गाना तो बता दे कौन सा।
1: आप जमाना दीवाना का तुझसे पूछू एक सवाल, मेरे सवाल का दे तू जवाब।
0: क्या बात है, और डेडिकेट किसको करना चाहेंगे?
1: पहले तो आपको, आपकी एफएम की टीम को,
0: मुकेश
1: कुमार का सीधा के पुरवा से, और रसूलपुर गुजरात प्रभाकर तिवारी जी, राजेंद्र प्रसाद हो गए
0: जी,
1: सीतापुर से हो गए क्षमा परवीन जी,
0: उन्होंने
1: लगता वो शेर बहुत अच्छा फोन करती तो बड़ा अच्छा अनुवाद देता, और राहुल भाई उनतालस हो गए, और राजेंद्र प्रसाद हो गए वहाँ रसूलपुर गुजरात है
0: जी,
1: और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी,
0: जी
1: तिवारी, और जितने लोग सुन रहे उन सभी
0: सभी सुनने वालों को मिंटू तिवारी की तरफ से गाना सुनवाया जा रहा है ना। देखिए गाना आ गया, ये पहुंचा गाना आपके पास।

और 7:56 का वक्त, मुझे अनुमति दीजिए फिर किसी दिन किसी प्रोग्राम में बिल्कुल हाजिर होऊंगा और आपसे मुखातिब होऊंगा। अभी के लिए बस यही कहूँगा, अपना पूरा ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

सर सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया और मंत्रियों द्वारा अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अयोध्या में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अनुदेशकों को चेक वितरित किया। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सभी बीमारू कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था, लेकिन आज यूपी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है, हमारी सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल प्राप्त कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कन्नौज जनपद के सभी 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 3 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में रोगियों की निशुल्क जांच, उपचार, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। मेला में 1500 से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान आयुष्मान योजना के तहत 26 गोल्डन कार्ड बनाकर भी वितरित किए गए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना जताई है। विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी प्रदेश में कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे

0: कार्यक्रम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
0: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर, मेल मिलाप।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: Kabhi alsai dopahar ki rusvai, to kabhi dhalti hui sham ki angrai.
4: Sham hone ko hai.
3: Pyar ki barish, mohabbat ki thandak, ishq ki aahein, tanhai ka ehsaas.

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं और उसके शहर में ठहरे कि कोच कर जाए। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

तू कहीं भी रहे तेरे सर पर इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। और यकीनन ये नाम जब शामिल हो जाता है जिंदगी में तो जिंदगी वाकई में बड़ी खुशगवार हो जाती है। 8:13, 7:01, प्रोग्राम आबशार में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

अब जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। वाकई जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाती है। लेकिन अगर हम उस माजी की यादों में खो जाते हैं तो कई बातें दिल को खुश भी करती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें दिल को गमगीन भी कर जाती हैं। और मैं कहूंगा कि जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो, तुम्हें याद हो, वही यह वादा निभा का, तुम्हें याद हो, क्या याद हो, वो नए गिले, वो नए शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर बात पे रूठना, तुम्हें याद हो, क्या याद हो।

न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, और वक्त के साथ वो मुलाकात हो भी जाती है, और फिर गुजरते वक्त में जो मुलाकातें होती हैं वो हर शख्स यही चाहता है कि ता जिंदगी वो मुलाकातें कायम रहे, कभी साथ एक दूसरे का ना छूटे। और फिर अगर कोई और जिंदगी में आने की कोशिश करता है तो फिर दिल के हालात, दिल के जज्बात कुछ ऐसे हो जाते हैं जो शायद शायद जिंदगी को बेहतर नहीं लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी और के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो समाने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो तू ही है ना। आप शहर में आए।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, लखनऊ।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

0: फिल्म गजल आबशार।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्त तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है।

उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, और जिंदगी में कई सारी बातें हो जरूरी तो नहीं, मुकम्मल जिंदगी हो जरूरी तो नहीं, जो कुछ चाहा है वो मिल जाए जरूरी तो नहीं, लेकिन यकीन जानिए वो चीजें जो इंसान चाहता है उसे मिल जाती है, तो उससे कोई ज्यादा खुशकिस्मत भी नहीं होता। तमन्ना हर शख्स करता है, हासिल शायद हर किसी को नहीं होता। इसीलिए तो इस तरह से मोहब्बत की शुरुआत कीजिए कि जो पहला दिन हो वही आखिरी दिन भी हो, कुछ ऐसा ही हो मोहब्बत में।

यकीनन जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए कोई भी जगह हो, कोई भी मौका हो, कोई भी मौजू हो, आगाज हमेशा बेहतरीन होना चाहिए। और प्रोग्राम आबशार से मेरी यानी जमशेद की विदाई अहमद फराज के इस शेर के साथ कि तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तुम आए हो ना शब इंतजार गुजरी है। और थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा वक्त, और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात आपके अपने खूबसूरत से प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: से समाचार संध्या के फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन।

0: हाइड्रोजन रोड में क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत

के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

की करिए की करिए। और उसके बाद यानी हंसराज हंस के बाद सुखबीर भी कुछ कहने के लिए है बेकरार। सुखबीर कहेंगे ढेर सारी बातें, फिलहाल ढेर सारे मेल आ चुके हैं आपके हमारे पास, चलिए उनकी भी बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा गीत सुने।

और ये मेल आ चुका है मलियाबाद से। आकाश लोधी ने लिखा है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, घर में बैठे और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अगला मेल हमारे पास आया आनंद तिवारी का। आनंद तिवारी जी ने मेल किया है मल्लावा हरदोई से और कहते हैं, अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं, किस हाल में है किसको पता, ना चले दिखावे के लिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। गाने जबरदस्त आपको लग रहे हैं आज के। और साथ साथ मेल हमारे पास है अरविंद कुमार दुबे जी का, इन्होंने हमें मिर्जापुर से किया है मेल और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं, अरविंद, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, ग्राम धर्म देवा पोस्ट छठहरा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। देखिए मैंने पूरा पता आपका पढ़ दिया। और वैभव प्रकाश का भी मेल आ चुका है नागपुर महाराष्ट्र से, प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय और गाने इनको भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। और लिखते हैं कि कुछ तो बात है तुझमें कि तेरा इंतजार रहता है, गली से गुजरते हैं खुशबू, तेरे आने का एहसास होता है। चलिए चलिए, आपने कह दिया पॉप टाइम के लिए, मैंने पॉप टाइम में आपका जो लाइनें थी वो पढ़ दी। आप गंगोई सीतापुर के सभी साथियों को नमस्कार कह रहे हैं। राजकिशोर जी का मेल आ चुका है, ईमानदारी से काम करने वालों का शौक भले ही पूरा ना हो लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। और आपने

से मेल किया है? मेल कहाँ से किया आपने? नहीं लिखा, चलिए ये भी लिख दीजिएगा अगले मेल में। फिलहाल वकील अहमद का भी मेल आ चुका है। वालेकुम अस्सलाम, वकील मंसूरी कटका हतूरी ज़िला सीतापुर से, और साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी, पिंकी, महक और अंसारी और अहमन का नाम इन्होंने लिखा है। जावेद अख्तर का भी मेल आ चुका है। वालेकुम अस्सलाम, और आपने कहा है कि आपके नारियल जैसी कड़क आवाज़ सुनने के लिए कांतर अजहर से पॉप टाइम का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आप कर रहे हैं मेल। शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और शाहीन का आपने लिखा है नाम। तो चलिए अभी और भी ढेर सारे मेल हैं, एक आध और पढ़ देता हूँ जिसमें एक किसी को ये ना लगे कि अच्छा मोनू सेठ जी आपने भी मेल कर दिया है और पॉप टाइम में आपका हृदय से स्वागत बा भैया मोनू सेठ।

और ऐसा ही होता है जब दो नैना लड़ते हैं, और उसका जवाब भी कुछ आने वाला है इस गाने के साथ। और ये मुकाबले तो लगातार होते रहे हैं, होते रहेंगे। फिलहाल 9:34 साथ में कुछ सेकंड्स, मैं हूं जमशेद आपके साथ, और जो मेल है आपकी वो मैं लगातार अब तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस गाने को करते हैं एंजॉय।

गीत लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन मेल की बात करता हूं मैं। ढेर सारे मेल जो आपके हमारे पास आ चुके हैं। विनीत कुमार, ग्राम अर्धापुर पोस्ट, रामगढ़ चीनी मिल, जिला सीतापुर, और गुड इवनिंग आपने कहा है, और सुपर हिट लाजवाब गाने आपको सुनने को मिल रहे हैं, और कुछ नाम आपने लिए, सुनील गोकुलपुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, संतोष मौर्य हरदोई से, संजो गोड़वा हरदोई से, और ममता हरदोई से।

सबको गाने पसंद आ रहे हैं। मनोज विश्वकर्मा का भी मेल आ चुका है बड़ौदा बाजार ग्राम तारा शिव से छत्तीसगढ़ से। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और बोले तो गुड इवनिंग सर जी, प्रोग्राम की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ी में बोलूं तो ताबड़तोड़ है, क्या बात है। और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। सोनल सिंह का भी मेल आ चुका है हमारे पास, हरदोई जिला रायपुर से हूँ और आज बहुत दिन के बाद मेल कर पाए हैं। मुझे FM के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे पिताजी और मम्मी बहुत बड़े फैन हैं। FM रेडियो सुनना हमें बहुत पसंद है और आज गाँव आए तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो चलिए, और पिताजी का नाम आपने लिखा मलखान सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को कर रहे हैं इन्जॉय। और बाबू अंसारी जी का भी मेल आ चुका है अहमदपुर बाजार बारा बंकी से और डांस करता हुआ एक इमोजी भेजा है, क्या बात है। और पूरी तरह से गाने आप एंजॉय कर रहे हैं। अमन नवाब का भी मेल आ चुका है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाना बनाते समय डांस करते हुए मैं खाना बना रही हूं, प्रोग्राम को सुन रही हूं। और आगे की बात करूं तो पवन कुमार जी का मेल आ चुका है, आपने हमें लखनऊ से मेल किया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ इंद्रपाल मिश्रा का भी आ चुका है मेल, पूरी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। आपने अमृता सीतापुर से किया है मेल और कहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर कार्यक्रम सुनते हैं और समस्त ग्रामीण श्रोता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार जी का भी मेल आ चुका है, साथ साथ हमारे पास मेल आया है विजयपाल यादव जी का, नमस्कार, पता पढ़ दूं, चलिए, ललहुआ जिला खीरी से आपने किया है मेल, गजलें भी आपको अच्छी लगी और गाने भी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक और मेल आ चुका है अमर सिंह यादव का, और अमर सिंह यादव का जो मेल आया है उसमें लिखा हुआ है UPP गुड इवनिंग जी, बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं। ब्रजेश सिंह दीपू टहुआ कैसरगंज बहराइच से आपने किया है मेल और बिल्कुल कोशिश रहती है खूबसूरत से गीत आपको सुनने को मिले। गुड़िया लुधी फ्रॉम मलिहाबाद से किया है मेल, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको लगता है पॉप टाइम। और साथ साथ शहनू नूर अंसारी का भी मेल आ चुका है, प्रोग्राम को सभी लोग कर रहे हैं एंजॉय। मटकली जिला बरेली से आपने मेल किया है और इस गीत को सुन रहे हैं, लैला एक नोट डाउन था है ना। और ये गाने काफी मकबूल हुआ था।

और आज की रात ढेर सारे होंगे गीत खूबसूरत से रजनीगंधा में होंगे, मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें, हुस्न की बातें, और इसी तरह से ये जो दो घंटे होंगे रजनीगंधा के आज गुजरेंगे खूबसूरत बातों के साथ। फिलहाल

हैं, 9:54 साथ में है कुछ सेकंड्स और मेल है किसका किसका, चलिए एम के राज एलएमपी यानी लखीमपुर खीरी से आपने किया है मेल। मुनेश कुमार हैं भानपुर हरुआ जिला लखीमपुर खीरी से, पॉप टाइम बहुत लाजवाब लगता है, रोज लाइव सुनते हैं और कहते हैं कि आपकी आवाज का जादू दिल को छू जाता है, पॉप टाइम सुनते हैं और हर गम दूर हो जाता है, क्या बात है। चलिए रिक्वेस्ट आपने छोटी सी की है तो चलिए पूरा गाना देखिए, गाने मैं बिल्कुल नहीं काटता, गाने पूरे चलते हैं और बीच में गाना रोकना तो बेहतर नहीं होता। अनुराग गुप्ता जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, आपको मजा आ रहा है पॉप टाइम सुनकर, वैसे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट बिल्कुल है आपको पूरी तरह से, काजल गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, अंश गुप्ता, यश गुप्ता और अनुराग गुप्ता यानी मेल भेजने वाले, आपने अपना भी नाम लिख दिया है, अहमद नवाब का भी आ चुका है मेल और अगली बार आपको ब्लैंक ईमेल करूंगे क्योंकि आप सही से मेल शामिल नहीं करते। क्यों भाई, पूरा मेल तो आपका हमने पढ़ दिया और ये वाला भी मेल देखिए पूरा पढ़ दिया है, ब्लैंक नहीं है, एक प्यारा सा आपने टैडी बनाया है। और रामराज जी का भी मेल आ चुका है, पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से सुन रहे हैं रामराज, राजू, भानु, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु मिर्जा, पवन कुमार यादव और आपको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त इसी तरह से गुजरता चला जाता है और वक्त गुजरता चला जाएगा, यानी 9:56 हो चुके हैं, साथ में कुछ सेकंड्स भी चल रहे हैं, मैं यानी जमशेद लूंगा फिलहाल प्रोग्राम पॉप टाइम से इजाजत और एक छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद फिर करता हूं आपसे मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, तो आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। कन्नौज जिले में आज जनपद के सभी 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 3 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। नोडल अधिकारी आरोग्य स्वास्थ्य मेला डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण किया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में आने वाले रोगियों की निःशुल्क जाँच, उपचार, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, परिवार कल्याण, हेपेटाइटिस बी एवं सी कार्ड टेस्ट, टीबी संभावित रोगियों की जांच, नेत्र रोगियों का परीक्षण, गोल्डन कार्ड आदि सेवाएं प्रदान की गईं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ भ्रमण के दौरान मधुबन तहसील के पदारथपुर में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र का विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। लगभग 61.11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक विद्युत उपकेंद्र की कुल क्षमता 2x63 MVA यानी 126 MVA होगी, जिससे मऊ जनपद की मधुबन तहसील तथा बलिया जनपद की बेलथरा रोड तहसील के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती विद्युत मांग और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए इस नवीन विद्युत उपकरण का निर्माण अत्यंत आवश्यक था। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य आज जिला पंचायत सभागार में अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किए जाने के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री के द्वारा जन प्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित अंशकालिक अनुदेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम का जिला पंचायत सभागार प्रयागराज में सजीव प्रसारण भी किया गया। उप मुख्यमंत्री के द्वारा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मंच पर 23 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। प्रदेश सरकार की लोक जन कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत जनपद लखनऊ में निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए एक अत्यंत सुव्यवस्थित ढांचा विकसित किया गया है। वर्तमान में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों की संख्या में आश्रय स्थल संचालित हैं, जो न केवल गोवंश को सुरक्षित आवास प्रदान कर रहे हैं बल्कि उनके आहार, पेयजल और स्वास्थ्य की भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। जनपद में संचालित कान्हा उपवन जैसे विशाल केंद्रों ने निराश्रित, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को नया जीवन प्रदान किया है। 53 बीघा जैसी विस्तृत भूमि पर स्थापित ये केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां गोवंश की देखरेख के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही

0: प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: नदी का किनारा ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow Ki.
4: Dil chahta hai ki tumse ek mulaqat ho. Khamosh tarane ho aur pyari si baat ho. Aur phir us mat bhari raat mein tumhari meri baat ho. Aur tum bas mujhse yehi kaho ki tum hi meri zindagi aur tum hi meri kainat ho.

मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी किसी से कोई वादा करो तो उस वादे को पूरा जरूर करो। यकीन जाने जब वादे टूटते हैं ना तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछिए जिससे वादा किया गया हो। कुछ देर पहले मैंने आपसे वादा किया था होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा में, और उस वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर मैं यही जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ 100.7 FM।

इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। और इस पर मैं ये कहूंगा कि दुनिया भर की खुशियां मुकम्मल हों ना हों, बस बस ये मेरी दुआ कबूल हो जाए।

मेरे रिश्तों की किताब में तेरा नाम भी शामिल हो जाए। कुछ ऐसे तो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए।

छोटी सी बात पर रूठ जाना, मान जाना, हर एक खूबसूरत सा एहसास जुड़ जाता है उसके साथ जब वो जिंदगी में शामिल होता है और एक साथ ख्वाब देखते हैं।

जय राय, हम संग हैं और हमेशा साथ रहेंगे, संग रहेंगे, ये वादा एक दूसरे से जरूर होना चाहिए। बदल जाए घर बेकरारों की दुनिया, बदल जाए घर बेकरारों की दुनिया, तो मैं अपनी समझते हैं हम खेल दुनिया के गम को, हमारी खुशी है तुम्हारी खुशी से।

खामोशियों की सदाएं बुला रही है मुझे। तेरी मोहब्बत में मैं खुद को खो चुका हूं। पहले मैं खुद को जानता था, पर जब से मैं तुझसे मिला हूं मेरा हर एहसास बदल गया है।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, लखनऊ।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
5: Love you, जिंदगी।
4: सुकून से भरा दोपहर।
6: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
7: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो, 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. Dil chahta hai ki tumse ek mulaqat ho. Khamosh tarane ho aur pyari si baat ho. Aur phir us mat bhari raat mein tumhari meri baat ho. Aur tum bas mujhse yehi kaho ki tum hi meri zindagi aur tum hi meri kainat ho.

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में।

मेरे बोल कोई सुन ना ले, तेरा छू लेना किसी दुआ सा लगता है। तेरी नजरें जब मुझ पर ठहरती हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अब मैं खुद को नहीं ढूंढता क्योंकि मैंने खुद को तुझ में पा लिया है। तेरी मोहब्बत अब मेरी पहचान बन गई है, जिसे मैं कभी खुद को अलग नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरी जिंदगी बन गई।

दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है। दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है। जाने क्यों बिन तेरे मुझको हर रात हर शाम अधूरी लगती है।

कोरा कागज था ये मन मेरा, और कोई ना कोई नाम जिंदगी में लिखकर जरूर जाता है। अब समझना यह है कि जो नाम लिखकर गया है वो कितनी दूर तक आपका साथ निभाता है या कितनी देर तक आपका साथ निभाता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि तेरी मोहब्बत मेरी रूह का सुकून है, तेरे बिना भी मैं तुझमें जीता हूं, हर सांस में हर सांस के साथ तेरा नाम लेता हूं। इश्क कोई लफ्ज नहीं, ये तो एक एहसास है जो बस तुझसे जुड़कर मुकम्मल होता है, और शायद इसको ही मोहब्बत का एहसास कहते हैं।

0: घर से
1: कोई हमें बता दे, और बताएगा कौन? ये बातें तो दिल से होती हैं, ये बातें तो दिमाग से होती हैं, ये बातें तो आंखों से भी हो जाती हैं। बस नजरें मिलती हैं और नजरों नजरों में ही वो सारी बातें सब कुछ आया हो जाती है। 10:55 7 में

भी हो जाते हैं, बस नजरें मिलती हैं और नजरों नजरों में ही वो सारी बातें सब कुछ आया हो जाती है। 10:55 साथ में कुछ सेकेंड्स, ये वक्त मैंने इसलिए बताया कि प्रोग्राम रजनीगंधा का आधा वक्त खत्म होने को आया। एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी फिर से मुलाकात। और आपसे मैं यही कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ, क्योंकि हमें भूलना इतना आसान नहीं है। चलिए कुछ देर के बाद फिर खूबसूरत सी बातें और उन बातों के साथ खूबसूरत गीतों की सौगात।